0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: मैं अपने घर के आंगन से उसको कितनी ही खुश रंग तितलियां पकड़ दूं, एक रंग की कमी रहेगी वो किसको माँ कहेगी।

0: Mama?
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: मैं अपने घर के आंगन से उसको कितनी ही खुश रंग तितलियां पकड़ दूं, एक रंग की कमी रहेगी वो किसको माँ कहेगी।

0: Mama.
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

तफतन इधर से, ये जो तफतन इधर से गुल मोहर की शाख को हटाकर उभरा है उफक पे जान मेरा, इस जान का हुस्न तो वही है।

तफतन इधर से, ये जो तफतन इधर से गुलमोहर की शाख को हटाकर उभरा है उफक पे चांद मेरा, इस चांद का हुस्न तो

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। So,

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: This one's dedicated to my boy B. Brian Messi.

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: My nigga,

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज अल्लाह ताला के पाक कलाम से करते हैं।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
3: शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
2: अलिफ

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: वालेकुम शाह जी।
2: वालेकुम सलाम
1: शाह जी, क्या हाल है? ठीक हो?
2: ठीक, तुसी सुनाओ?
1: बस शाह जी अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक। मैं के मैसेज भेजे से टैक्सी वाला केड़ा सी कार वाला
2: जी।
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامع ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر اپنی ٹیم کے ساتھ حاضر ہیں۔ تمام موسم اچھا ہے، بادل بھی چھائے ہوئے ہیں اور آن دا ہول بارش بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ لگی رہتی ہے، زوردار بارشیں، چونکہ ساون کا مہینہ جو ہے وہ گس چلتی شروع ہونے والا ہے۔ تو شاہ صاحب سے ہم بہت ساری خبریں شیئر بھی کرتے رہتے ہیں، وہ بھی سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، حالات حاضرہ پر تبصرہ بھی کرتے ہیں۔ تو ہم آپ کو اپنے تھنک ٹینک سے یہ توقیر حسن بخاری شاہ صاحب کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ شاہ صاحب، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ فور صاحب، آپ کو، آپ کی ٹیم کو، آپ کے جتنے لسنر ناظرین ہیں سب کو میرے طرف سے السلام علیکم۔
1: وعلیکم السلام۔
2: موسم بہت پیارا ہے اس وقت، 18-19 ڈگری گرمی ہے اور ہلکے ہلکے بادل چھائے ہوئے ہیں اور کبھی دھوپ کبھی بادل، لیکن جو پیش ہوئی ہے کہ موسم جو ہے شام کو ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ بادل برسیں، لیکن کس وقت برسیں یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ کس وقت وہ آئیں گے، کیونکہ بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ طوفان آنے والا ہے اور جب وہ تھوڑی سی ہوا چلتی ہے لیکن طوفان نہیں آتا۔ تو یہ سب کچھ اللہ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سا اس کا دنیا اس کی ہے، کیسا موسم ہوتا ہے۔ تو راجہ صاحب، لوگ بہت انجوائے کر رہے ہیں اور اب چھٹیاں جو ہیں، کافی لوگوں کی چھٹیاں جو ہیں کل سے ختم ہو رہی ہیں، کافی بان ہیون جو ہیں وہ دوبارہ کھل رہے ہیں، تو کافی لوگ جو ہیں وہ کیونکہ لوگوں نے مختلف ٹائموں میں چھٹیاں لی ہوئی ہیں، کچھ چھٹیاں جو ہے وہ کل منڈے کو ختم ہو جائیں گی، لوگ بان ہیون میں بچے جانے شروع ہو جائیں گے، کچھ جو ہے وہ اگست کے پہلے ہفتے میں ختم ہوگی، کچھ اسکول وغیرہ جو ہیں وہ 3 یا 5 اگست تک یہ اسکول وغیرہ بھی کھل جائیں گے۔ تو اس طرح پھر جو زندگی کا ایک پیا ہے وہ دوبارہ چل پڑے گا۔ جی راجہ صاحب،
1: تو شاہ صاحب سیاسی پہیہ آج کب چلے گا؟
2: دیکھیں جی، اس وقت تو دو سیاسی پیے یہاں پہ گرم ہیں، ایک ڈینش سیاسی پیا اور دوسرا جو ہے وہ مینگو سیاسی پیا، اور جو مینگو سیاسی پیا ہے وہ تو 8 کو یہاں پہ البسلون میں دوبارہ لگنے جا رہا ہے، اور وہ 8 اگست کو، اور اس کے بعد ایک جو ہے وہ 14 اگست منائی جا رہی ہے، اور اس طریقے سے یہ سارا سلسلہ جو ہے آگے تک چلے گا۔ اور اس کے بعد
1: شاہ صاحب، سارا نام جو ہے پاکستان فیسٹیول کے نام سے آتا ہے
2: جی، یہ مینگو جو ہے یہ پاکستان فیسٹیول کے نام پہ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ پاکستان سوسائٹی 14 اگست کو منا رہی ہے، اور باقی جو ہے وہ میرا خیال میں 19 اگست کو دوبارہ جو ہے وہ ایک فیسٹیول ہونے جا رہا ہے، تو اس کا مجھے نہیں پتا کہ وہ کون کر رہے ہیں، لیکن میری نظر سے گزرا تھا کہ 19 کو بھی ایک مینگو فیسٹیول ہوگا۔
1: تو 16 اگست بھی منایا جا رہا ہے
2: جی، اب لوگ دن منائیں گے کوئی 12 کو، لیکن جو آفیشیل جن کے اناؤنسمنٹس ہو رہی ہیں، جن کا فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ آ گیا ہے، تو ان کا تو ہمیں علم ہو جاتا ہے، لیکن جو صرف ابھی اندازے لگا رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔
1: تو چلیں شاہ صاحب، آفیشیل تو 14 اگست کو پاکستان امبیسی میں ہوتا ہے، پرچم کشائی ہوتی ہے، تو وہ تو ہر سال کی طرح اسی طرح ہوگا۔ تو شاہ صاحب، اب جو سیاسی موسم ہے یہ بالکل ٹھنڈا پڑ چکا ہے، چھٹیوں پہ چلا گیا ہے، خالی سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں سیاستدان۔
2: جی، اس دفعہ سیاستدانوں کے بارے میں جو ہے وہ کافی لے دے ہو رہی ہے، صرف یہ نہیں کہ ہم ریڈیو پہ ہی ان سے بات کرتے ہیں، بلکہ اب عوام الناس جو ہے، عام لوگ جو ہیں وہ بھی بات کر رہے ہیں کہ کیا فائدہ ایسے ینگسٹرز کا، کیا فائدہ ایسے لوگوں کا جو اہل زبان ہونے کے باوجود ہمیں کچھ انفارمیشن نہیں دے رہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کافی گڑبڑ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ 11 دن کے اندر 11 दिन के अंदर यहाँ पे 7 छुरियों के हमले हुए हैं कोपेनहेगन के अंदर, और ये बहुत बड़ी बात है कि 11 दिन में 7 हमले होना, और उनके अंदर सिर्फ सारे फॉरनर्स हैं, मेजॉरिटी फॉरनर्स की है, क्योंकि यूक्रेन के हमारे यहाँ के रहने वाले दूसरे आगे पीछे बहुत सारे लोगों के नाम जो है वो पुलिस ले रही है, और ये पब्लिक प्लेसों के ऊपर जो है खुसूसी तौर पे मेन स्टेशन पे या पब्लिक प्लेस जैसे फील्ड्स होगी, सेंटर्स हो गए, इनके अंदर इस तरह की बदमाशी करने से
1: ये
2: जो
1: है जितनी जो कारोबारी ये जगह हैं या पब्लिक प्लेसेस हैं, यहाँ तो हर तरफ हर कोने खुरदरे में जो है वो कैमरे लगे होते हैं, कोई चीज तो छुप नहीं सकती शाह साहब यहाँ से।
2: जी वो छुपती नहीं, वो पकड़े जाते हैं, लेकिन जलालत ये है कि वो खुद तो अपने दिमागी या रंजस की वजह से किसी के ऊपर वार तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद बदनामी जो है वो सारे फॉरनर्स की हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात है, और ये ज्यादातर बच्चे जो हैं ये 15 साल से लेके तो 20 साल 21 साल की उम्र
1: तो
2: के हैं।
1: इन बच्चों को मसरूफ रखना चाहिए ना, स्कूलों में तरबियत होनी चाहिए, उसके बाद माँ बाप का भी तो हक बनता है वो भी तरबियत करें। कुछ बच्चे जो इंसाफ भी नहीं मिलता तो बच्चे जो हैं वो अपना जहनी तौर पर डिस्टर्ब हो जाते हैं, इंसाफ नहीं जब मिलता।
2: राजा साहब जब लुटेरे घर का सफाया कर जाएं, डाकू डाका मारने में कोई चीज ना छोड़े तो उस घर के अंदर भूख की हालत होगी। यही हाल यहाँ हमारे चीजों का है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने, मुझे कोई दो राय नहीं, जब यहाँ गवर्नमेंट ने शुरू से ही ऐसे पोलियो रखे हुए हैं, ऐसी चीजें रखी हुई हैं कि जो कल्चर के लिए जुमले में आता है, यानी कि आप अभी कोई कल्चर करना चाहते हैं, आप स्पोर्ट करना चाहते हैं, आप हॉकी खेलना चाहते हैं, क्रिकेट खेलना चाहते हैं, बैडमिंटन खेलना चाहते हैं, आप कोई भी किसी किस्म की गेम करना चाहते हैं, आप कोई बस टूर करना चाहते हैं, कोई भी, बूढ़ों से लेके बच्चों तक गवर्नमेंट ने यहाँ कम्यून ने अदारे बनाए हुए हैं, आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। आप अभी 50-60-100 बंदे की मेंबरशिप करके वहां से हेल्प ले सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं हर चीज, लेकिन ये मेरा काम नहीं बताने का, ये काम है जो यहाँ के सियासतदान है, जो यहाँ कहते हैं जी ओ जी असी तो बहुत बड़ी डैनिश जबान बोल रहे हैं जी, असी तो PhD हैं जी, असी तो बड़ी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से हम पढ़ के आए हैं, क्या वहाँ पे ये सियासत पढ़ रहे थे? अगर सियासत पढ़ रहे थे तो क्या वहाँ पे ये लॉ पढ़ रहे थे? भाई आकर सामने बताएं तो सही आप क्या कर रहे हैं, आप लोगों को तो बताएं, बाहर तो निकले अपने, ये जो क्राइम आज हो रहे हैं, अगर इन बच्चों को, इन पेरेंट्स को बराबर के हकूक मिले होते हैं जैसे डेंचो के होते हैं तो ये कभी भी क्राइम ना करते।
1: शाह साहब हकूक तो मिलते हैं, हकूक लेने का आपने जिस तरह तरीका बताया, शाह साहब मैं जरा आता हूँ महंगाई की, आपने बात की है तो शाह साहब अगर एक महीने में 5-6 मेले होते हैं तो एक फैमिली वाला अगर हर मेले में जाकर 250-400-500 करोड़ खर्च करके आ जाता है तो शाह साहब एक पेंशन वाला कैसे फिर गुजारा करेगा, बच्चों के साथ जाएगा, कोई 1000-1200 लगा के आ जाते हैं। तो शाह साहब हम इन चीज़ों को देखते नहीं हैं, हम अब गाड़ियाँ हमारे पास बड़ी बड़ी हैं, गाड़ियाँ लेते हैं, सड़क पर आप खड़े हो जाएँ तो कहीं आपको गुर्बत नज़र आती है, किसी स्टोर में चले जाएँ आपको कहीं गुर्बत नज़र आती है, किसी भी पब्लिक प्लेस पर चले जाएँ, सैर वाली जगहों पे चले जाएं, झूलों वाली जगहों पे जाएं, कहीं आपको गुर्बत शाह साहब नजर आती है? किसी मेले में चले जाएं, कोई आपको गुर्बत नजर आती है?
2: नहीं, हमें वो तो हमें माजरत के साथ एक फैशन शो नजर आता है कि हर कोई अपनी जो है, हर कोई अपने ड्रेस का या अपने पैसे का ताकत या अपनी गाड़ी या दूसरे इमारत की शो जो है वो सामने।
1: शाह साहब महंगाई का जिक्र तो नहीं होना चाहिए ना?
2: नहीं, देखे वो भी जमाना था जब हम बसों पे सफर करके काम पे जाते थे, पैदल चल के काम पे जाते थे, घोड़े घोड़े बर्फ पड़ती थी उस वक्त, उसके अंदर कई कई मील लोग पैदल चल के जाके काम करने जाते थे, साइकिलों पे जाते थे, खनेलेट होते थे, उनके अंदर 5 करोड़ का पेट्रोल डलता था तो वो पूरा हफ्ता 2 हफ्ते वो गुजारा
1: तो
2: कर लेते थे।
1: लोग स्टेट को गिला नहीं करना चाहिए ना?
2: नहीं, स्टेट को नहीं है, हमारे अपने अपने जो रवायात हैं, हमारे हमने अपनी रवायात को बदल लिया है, हमने 2 कल्चर बना लिए हैं, हमने सबसे ज्यादा बड़ा कल्चर जो है वो पाकिस्तान का कल्चर बनाया है, हम शो मारने के लिए पाकिस्तान चले जाते हैं, हम सबसे ज्यादा पैसे, पहले तो आप ये हिसाब लगाएं, आप अकेले जा रहे हैं, 2 बंदे जा रहे हैं, तो कम से कम 25-30-50 हज़ार करोड़ का खर्चा जो आप पाकिस्तान लेके जा रहे हैं। फिर यहाँ पे आपने फैमिली स्टैंडर्ड रखना है, यहाँ पे भी आपने हर चीज रखना है, गाड़ियाँ रखनी है, तो फिर आपके बच्चे जो हैं, जो बच्चों का हक है उनको आप नहीं दे रहे। अब बच्चे जो हैं अब छुट्टियों से वापस आएंगे, आप खुद निकल जाएं, आप जर्नलिस्ट टाइम बाहर निकल जाएं, जाके बच्चों से पूछें आपने बेटा कहाँ पे छुट्टियां गुजारी, तो वो कहेगा कि फलाने कजन के घर चले गए, फलाने के पास चले गए, मैंगो फेस्टिवल चले। तो जो डैनिश बच्चे हैं उनसे पूछेंगे वो कहेंगे जी हम इटली गए, हम टर्की गए, हम इजिप्ट गए, हम फलानी जगह गए, हमने फलानी जगह स्केटिंग की, हमने फलानी जगह फिशिंग की, वो ऐसी बातें आपको बताएंगे। तो उससे हमारे बच्चे जो हैं वो नफसियाती तौर पे जो हैं वो कमजोर हो जाते हैं, और जब वो कमजोर होते हैं तो फिर वो करते क्या हैं, वो फिर पैसे को हासिल करने के लिए, क्योंकि ज़हनी तौर पे आदमी कमजोर हो जाता है तो फिर वो ऐसी बातें करता है कि ये हमारा डिफरेंस क्या है, वो अपने माँ बाप से चीजें छुपाता है, वो बाहर भागता है और बाहर जाके वो क्राइम करता है। तो इन चीजों को देखें, आप हमारे ड्रामे देख लें, हमारे कल्चर देख लें, आप घर में बैठे हैं ड्रामा आपने लगाया देखा है स्वाइड वो उसके लव मैरिज, ये शादी किसी से हुई है, लव किसी से हो रहा है, ये सारा का कल्चर हमारा जो है, हम लोगों ने कभी भी इसके ऊपर प्रोटेस्ट नहीं की, खुद ही इसके ऊपर इसकी तबाही के हम जिम्मेदार हैं। यहाँ पे कितने घर हैं

0: होगी अपने गांव की, घूम फिर के बात होगी अपने इलाके की, घूम फिर के बात होगी कि मैं किस मिनिस्टर को मिसा, मेरा कजन कौन जनरल है, मेरा कजन कौन बड़े बड़े ओहदे पे बैठा हुआ है, ये बातें आप सुनेंगे। लेकिन हकीकत कुछ और होती है, हकीकत बिल्कुल बरअक्स होती
1: शाह
0: है।
1: साहब
0: तो
1: आते हैं, दोबारा
0: बात
1: वापस आते हैं शाह साहब, आपसे ये सवाल भी करते चले शाह साहब, इलेक्शन जमहूरी इलेक्शन होना, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, जमहूरी जितने इलेक्शन होंगे बेहतरी आएगी। तो शाह साहब जहाँ गुर्बत होती है, जहाँ आपको 20-20, 20-20, 40-40 लाख लगाने की जो है वो इजाज़त होती है अपने इलेक्शन कंपेन में, करोड़ों अरबों का इलेक्शन हो जाता है, जलसे जुलूस हो जाते हैं, बड़े बड़े लीडरान जाते हैं, उनकी खातर खातर तो आज़ा होती है। तो शाह साहब जब इतने अखराजात करने के बाद जमहूरियत फिर भी उस तरह की नहीं आती, गिले शिकवे शुरू हो जाते हैं, आपस में कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं, तो जो लोग बनते हैं जिन्होंने लगाया होता है फिर वो उन्होंने अपना पूरा भी करना होता है और उसके बाद गिले शिकवे शुरू कर देते हैं, जी फलां हुकूमत ने ये कर दिया, फलां मुल्क ने ये कर दिया, फलां एस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया। शाह साहब अपने करतूत हम ठीक करने के लिए तैयार नहीं है शाह साहब, इसकी क्या वजह है?
0: इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो शोबाजी के लिए या अपना अपने क्रिमिनल एलिमेंट्स को छुपाने के लिए, जो उनके जो उनका कारोबार होता है उसको छुपाने के लिए वो सियासत में आ जाते हैं, और जब वो सियासत में आते हैं तो फिर उसको ताकत देने के लिए वो ऐसी हरकतें करते हैं कि लोग जो हैं उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन ज्यादा से ज्यादा हो। अब आप ये देखें कि आपने बात की तो आपने पाकिस्तान की तरफ इशारा किया है, वहां पे एक डॉक्टर, एक बच्चे को डॉक्टरी पढ़ने के लिए जो है वो एक मामूली से मेडिकल कॉलेज के अंदर सिर्फ जो उसने डिपॉजिट कराना है वो 25 से 30 लाख रुपया है। अब वो 25 से 30 लाख रुपया कहाँ से लाएगा, उसको कौन देगा, क्या उसको कोई बैंक एसयू मिल रही है, बैंक लोन दे रहा है या क्या कर रहा है। इसी तरीके से इंजीनियर, इन्होंने एजुकेशन को इतना इतना गंभीर, इतना ज्यादा महंगा कर दिया है कि लोग जो हैं, और बस शोशा और कुछ, सबसे बड़े मुजरम हम हैं जो फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं। मैं अपने आप को भी इसमें शामिल करता हूँ क्योंकि मैं इस माशरे का एक हिस्सा हूँ। हम लोग जब वहां जाते हैं, बच्चियों की बेटों की शादियां करते हैं, 1 महीने के लिए हम जाते हैं, टोयोटा लैंड क्रूजर और बड़ी बड़ी गाड़ियां हम वहां रेंट पे ले लेते हैं और फिर वहां पे शो मारते हैं, ये है ये हमारी कोठी। तो अब उनको ये पता नहीं है, उन लोगों को ये पता नहीं कि हम यहाँ किस तरीके से मजदूरी कर रहे हैं, हम यहाँ किस तरह। ये अच्छी बात है कि अब आगे हमारी जो जनरेशन है, सेकेंड और थर्ड जनरेशन, ये अच्छे अच्छे ओहदों पे यहाँ पे लग गए हैं, लेकिन इससे पहले तो हम सब मजदूर थे। यहाँ पे कौन सा डॉक्टर था, कौन सा इंजीनियर था, कौन कुछ था,
1: लेकिन
0: यहाँ
1: शाह
0: पे
1: साहब
0: हम सब
1: आपसे
0: मजदूरी
1: जानना
0: करते थे
1: चाहेंगे,
0: सेवेंटीज
1: आपके
0: एटीज में।
1: शाह साहब आप अपने तजुर्बे की बुनियाद पर बताएं और हकायक की रोशनी को सामने रख कर रोशन करें। शाह साहब क्या यहाँ डेनमार्क में रहते हुए अपनी सियासी जमातें होनी चाहिए या डेनिश सियासी जमातों में हिस्सा लेना चाहिए?
0: देखिए जी, मैं तो प्रायोरिटी दूंगा कि यहाँ पे डेनिश सियासत जो है उसमें लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, वहाँ वो पाकिस्तानी जमातें क्यों ना हो, वहाँ वो पाकिस्तानी जमातें यहाँ रख रहे हैं, उन सबको ये हक हासिल है कि वो अपने बच्चों के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने साथियों के लिए, अपने आवाम के लिए यहाँ की सियासत में को सबसे पहले नंबर 1 समझे, यहाँ के लोगों को इनवाइट करें जो आइन को समझते हैं, जो यहाँ के तरीकाकार को समझते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि हमारे 90%, बल्कि 90% ही 99% जिस वक्त हमारे यंग काउंसलर पहली दफा इलेक्ट होते हैं, लोगों को गुस्सा तो लगेगा लेकिन मैं हकीकत बोल रहा हूँ, तो उनको ये नहीं पता कि उम्बसमैन जो होते हैं, जो लॉ मेकर्स होते हैं, जो यहाँ हमारे कम्यूनों में, यहाँ अपने मुख्तलिफ अदारों में बैठे होते हैं, वो उनको किस तरह ट्रिकल करना है, उनसे किस तरह हमने सीखना है। वो जब सीख जाते हैं तो 4 साल गुजर जाते हैं, या फिर अगली दफा 4 साल के लिए वो इलेक्ट नहीं होते बदकिस्मती से, क्योंकि उनका उनको तजर्बे थे, या फिर अगर वो दोबारा इलेक्ट हो जाते हैं तो फिर वो कुछ अरसे के बाद कहीं अच्छी नौकरी करने उनको मिल जाती है क्योंकि वो सियासत में रहे होते हैं। ये याद रखें कि हमारे लोग मेजोरिटी जो हैं वो 2 मकासद हासिल करने के लिए सियासत में आते हैं, एक अपने फैमिली, अपने इलाके में अपना नाम रोशन करना, हालांकि ये वो ही काउंसलर

0: हैं जो पाकिस्तान में काउंसिल होते हैं और वही पार्लियामेंट के मेंबर हैं जो पाकिस्तान में होते हैं, तो इनमें कोई बड़ा फर्क नहीं। असल में बात यह होती है कि आपका कद काठ तब ऊपर जाता है जब आप अवाम के लिए कुछ करते हैं। चलो पाकिस्तान में तो फिर वो नालियां सड़कें और लोगों को कुछ ना कुछ तो बताते रहते हैं, कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं। यहाँ तो ये भी नहीं होता, यहाँ पे तो एक मिनट के लिए इनके पास टाइम नहीं कि यहाँ आकर, मैं 2 साल हो गए हैं, 2 साल से मैं आपके रेडियो पे ये बिल्कुल बगैर किसी खौफ और खतरे के ये बात करता हूँ कि देखें कि पूरे डेनमार्क के अंदर बाओ सर्विस जो है वो उलेनिंग के साथ जो है वो उलेनी डॉक्टरेट के साथ वो काम करते हैं। सिर्फ जो ये हमारा वेस्टाइन है और कोपेनहेगन, यहाँ के लोगों को नेस्ट विज वहाँ उलेनी डायरेक्टोरेट में खुद जाना पड़ता है। तो ये कितना बड़ा जुल्म है, ये क्यों नहीं लोग कहते हैं कि हमारे लोगों को जो है ये सहूलत दे।
1: तो शाह साहब, इससे पता है कि फिर पाकिस्तान की सियासत ज्यादा बेहतर है बनिस्बत डैनिश की सियासत से।
0: जी एक दफा फिर कहिएगा।
1: तो शाह साहब, इससे तो फिर साबित हो रहा है कि पाकिस्तान की सियासत में ज्यादा सहूलियात है, डैनिश सियासत में सहूलियात नहीं है।
0: नहीं जी, डेनिश सियासत में सहूलियात हैं अगर आप अपना दिमाग इस्तेमाल करें, आप अपने आप को सही सियासत में देखें। सियासत जो है आप जब अवाम के लिए, दो किस्म की सियासत है, एक है क्रिमिनल सियासत जिसके अंदर आप कमाई करना चाहते हैं, आप अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, आप अपने आप का कद काठ ऊंचा करना चाहते हैं। एक सियासत होती है ईमान की जिसके पीछे आप अपने ईमान को पुख्ता करते हैं, आवाम के लिए काम करते हैं, आप अपने मुखालफिन जो हैं उनके लिए काम करते हैं। क्यों, वो उन्होंने बेशक आपको वोट दिया या नहीं वोट दिया, आपको डाउट हो सकता है कि उन्होंने मुझे वोट डाला या नहीं वोट डाला, लेकिन सब लोग जो होते हैं जो आपके एरिया में रह रहे हैं आप उनके लिए काम करते हैं। तो ये चीजें जहाँ सियासत में
1: तो
0: दो
1: शाह
0: मुख्य
1: साहब, चले
0: तत्व।
1: आते हैं ये टेक्सा की तरफ। ये गाड़ियाँ जो मैं देख रहा हूँ कि वो इक्की दुक्की गाड़ी जो है वो सड़कों पर आ चुके हैं, जो नई कंपनी आ रही है, नए ड्राइवर आ रहे हैं,
0: ये
1: तो नए मुलाजम आ रहे हैं। शाह साहब, इसमें कोई दो रोशनी डालें इस पर।
0: बिल्कुल, ये ग्रीन जो वियतनाम की टैक्सियां हैं, इन्होंने बहुत ज्यादा बंदे जो है वो एनसेट कर लिए, रख लिए हैं ड्राइवर। और देखें बेशक ये कानून की खिलाफवर्जी है कि ये 34-35 हजार जो मिनिमम, जो इन्होंने 47,000, अगर आप गूगल करें ना तो डेनमार्क ने जो दुनिया को बताया हुआ है वो ये है कि यहाँ पे कम से कम जो तनख्वाह है महीने की वो 47,000 करोड़ है। हालांकि ये बिल्कुल सरासर झूठ है, इसलिए डेनमार्क को टॉप प्रायोरिटी मिलती है। यहाँ पे 29,000 करोड़ पे जो है ये लोगों को इन्होंने एनसेट किया, लेकिन उसके साथ कुछ उन्होंने लुजमात ये रखे हैं कि आपको हम जो है थोड़ा सा बोनस वगैरह भी देंगे तो जो है। लेकिन ये जो 29,000 की जॉब है, ये इसके अंदर आपने 5-6 घंटे काम करना है उसके अंदर, क्योंकि आपको काफी पोज भी होगा, आपको फोकस पोज भी होगा आपके लिए, तो वो 7.5 घंटे की जो 7 घंटे की ड्यूटी है, क्योंकि आपने वापस जाके उनके दफ्तर में जहाँ उनका लैग है, जहाँ गाड़ी खड़ी करनी है, वहां आपने खड़ी करनी है, तो आपको 7.5 घंटे के अंदर ये सारे मरहले तय करने हैं। तो अब वो सबसे बेहतर है कि बनिस्बत के आप, जैसे कि कल मैंने ये बताया था कि एक आदमी अपना रॉस किल्डे से 552 क्राउन के अंदर जो है वो रॉस किल्डे से लुफ्तावन, कोपेनहेगन लुफ्तावन में टूर लेके गया, और वो भी म्यूर चीज के अंदर। तो इससे बड़ी ज्यादती क्या है, अगर वो वॉन मैन है तो उसको तो 100 करोड़ से भी कम पैसा जो है वो बचत हुई, क्योंकि लागत ही इतनी ज्यादा है टैक्सियों की जो आप ले रहे हैं। तो इस कंपनी के अंदर जो है ना, मैं उनका मशीर हूँ ना मैं उनकी तशरीह कर रहा हूँ, लेकिन यह है कि इसने जो है वेकअप कॉल दे दी है और अब लोगों को प्रॉब्लम नजर आ रही है। जब हम बात
1: तो शाह
0: करते थे
1: साहब,
0: कि
1: इसका
0: खुदा
1: फायदा
0: रहा
1: मालकान को होगा या पब्लिक को होगा?
0: इसका कंपनियों को फायदा है और पब्लिक को भी फायदा है। पब्लिक को यह है कि कल एक आया हुआ था पेपर में, बल्कि आज भी आया हुआ था, मैंने आपको कटिंग भेजी ताकि कोई बंदा एतराज करे तो आप उसको वो भेज सकते हैं। उसके अंदर यह है कि अब आप हेलसिंगोर के अंदर आप खुद जाके टैक्सी को वेल कर सकते हैं, कौन सी टैक्सी आपकी नजर में बहुत सस्ती है और आप उसके अंदर बैठ कर जाना चाहते हैं। आप पहली दो तीन आगे ही होता था, जो पहली गाड़ी है आप उसी को उसी में बैठ के जाएं, लेकिन अब जो टैक्सी स्टैंड पे खड़ी है, टैक्सी है स्टेशन पे खड़ी है, कहीं भी खड़ी है, तो वहां पे आप चूज कर सकते हैं, आप वैल्यू कर सकते हैं कि इस टैक्सी में। तो अब लोग अगर ये कह सकते हैं, मैं कह सकता हूँ जी, एक कहता है जी मैं 2000 में जाना चाहता हूँ, मैं पीछे से आवाज लगाता हूँ जी मैं 1500 में, मेरे पीछे कोई खड़ा वो कहता है जी मैं 1000 में, तो वो बंदा जो है वो 1000 वाले की तरफ चला जाएगा, वो लेकर टूर चला जाएगा। अब कंपनियों ने ये जो काम किया है, इसकी वजूहत क्या है? इसकी वजूहत ये है कि इस वक्त 97% पूरे डेनमार्क के अंदर 97% फॉरनर टैक्सी ड्राइवर चला रहे हैं, कैब ओनर भी फॉरनर्स हैं। आप यूलैंड में चले जाए, फ्यून में चले जाए, आपको हर जगह फॉरनर नजर आएगा। और ये जो फॉरनर्स जो है इनके इनसे क्या होगा कल को, ये सारे के सारे जब ये कंपनी जो है ये स्कूलों के बच्चों को ड्राइव करना शुरू कर देंगी, ये इन्होंने तो पैसा कमाना है, ये तो अमीर आदमी है, इनको तो परवाह नहीं, इन्होंने कहना जी ठीक है हम बच्चा ड्राइवर भेज देते हैं, ड्राइवर को क्या, उसको उसने तो वेज लेनी है, उसको तो टूर का उसकी तो उसका मसला ये नहीं कि उसको अब 500 का 1000 का टूर मिले 2000 का टूर मिले, नहीं
1: टूर का मसला नहीं है। शाह साहब हमें शायद नसीम ने भी ज्वाइन किया है, इनसे भी बात करते हैं क्योंकि ये भी इस पर बोलते रहते हैं, इस पर भी बात करते हैं, तो शायद आपको भी एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं।
2: जी अस्सलाम वालेकुम। जी राजा साहब, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ, अगर आपके पास 5-6 मिनट है। मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि राजा साहब ये होना था, अब हम इसके ऊपर तकरीरें करें, डिबेटे करें, क्योंकि हमारी कौम का ये अलमिया है जो चीज हो जाए उसके ऊपर हम जो है ना तकरीरें करते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। अभी क्या कहते हैं, शाह साहब ने फरमाया कि 97% या मैं तो बल्कि 99% कहूंगा, 99.5% यानी कि 99.5% पक्ट है इसके ऊपर फॉरनर्स जो हैं वो डेनमार्क में हो जाएं या यूरोप में हो जाएं, खासकर डेनमार्क की जो बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर डेनमार्क के जो फॉरनर्स हैं वो टैक्सियों के ऊपर हैं, कोपनहेगन से लेके पूरे यूलैंड तक, यूलैंड से लेके पूरे डेनमार्क तक। तो हम कोपनहेगन की बात करते हैं तो कोपनहेगन में भी 99% ही है, और उसके अंदर तकरीबन 76% या 75% पाकिस्तानी, बाकी दूसरे गैर मुल्की हैं। पहले गैर मुल्की और जो पाकिस्तानी थे ये भी गैर मुल्की हैं, तो दूसरी जो कौमें थी जिसमें अरबी, तुर्की, कुर्द और जो दूसरे बहुत से वो भी थे इसके अंदर, लेकिन वो फिर आहिस्ता आहिस्ता छोड़ गए इसको, बहुत से लोग छोड़ गए हैं, बहुत से यंग लोग नहीं आ रहे, बहुत से लोग जो यंग अभी आए हैं जो नए नए आए हैं टैक्सी के अंदर, बिल्कुल यंग जो डेनिश बोलते हैं वो सारे टैक्सी चला रहे हैं, वो सारे उबर चला रहे हैं, उबर ब्लैक चला रहे हैं, सबको पता है, शाह साहब को भी पता है। इसमें आप ये नहीं है कि मैं किसी को कोई टीज कर रहा हूँ या मैं किसी को बता रहा हूँ, लेकिन मैं ये इसको आप समझें कि इसका मैं मतलब क्या ले रहा हूँ। तो उसको नए जो आए हैं वो ज्यादातर जो फिर और जो यंग आ रहे हैं वो आ रहे हैं पाकिस्तानी। अब आ जाए मैं क्योंकि पूरी तमीज इसलिए बांध रहा हूँ ताकि आपको पूरी समझ आ जाए। अब आ जाए एस एम ग्रीन ने तो एक पैसा फेंका है, उन्होंने एक ये भी चे मंगवाई है जो हमारे अपने लोग हमारे जो है जिनको पता कोई से बात का नहीं है, जो बहुत से इधर बाजार में चला रहे हैं टैक्सी और ये बातें करते हैं जी वो कुछ नहीं, ये हर बात को यही लेते हैं, सीरियस नहीं लेते किसी बात को, वो कुछ नहीं होता छोड़ो पड़ा। इन्होंने उबर आई थी तब भी ये कहा था, इतना इनको इन्फॉर्मेशन से दूर है हर चीज से। अगलों ने आपके यहाँ आके जबकि आप लोग कि ये मार्केट थी, ये जो टैक्सी वॉनमन पाकिस्तानी थे सबसे ज्यादा, उसके बाद दूसरे गैर मुल्की थे, इन्होंने ना कोई अपनी फ्रेनिंग बनाई मजबूत, यानी कि कोई यूनियन मजबूत जैसे डेनिश लोग पहले होते थे उन्होंने बनाई हुई थी, उसके ऊपर पूरा उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था कि बाहर से कोई ना आ जाए। और ये बात मैं आपको 2013-14 की बता रहा हूँ, जब उबर ने पहली दफा पड़ाव रखा था डेनमार्क में, तो तब डेनिश वॉनमैनों ने जो स्टैग थी उन्होंने, जबकि तब पक्षनी भी वॉनमैन जो थे डेनिशों से ऊपर ही थे तब भी, लेकिन फिर भी डेनिश वॉनमैन काफी थे, उन्होंने ये अपनी कोशिशों के जरिए इसको यहाँ से भगा दिया और ये यहाँ से चले गया उबर। और उसके बाद यार ये बात है 10 साल फिर आ गए, 10 साल बाद वो इसलिए आए कि उन ये डेनिश लोगों की डेनिश पीछे जो सिस्टम है, डेनिश मैं यहाँ पर जिक्र नहीं भी करना चाहता, उन्होंने इसको तरीके के साथ ले आए, जहां उनको देखा कि इसके पर फॉरनरों का गलबा आ गया है और वो किसी करवट नहीं बदल रहा, और बस एक ही जगह वो चल रहे हैं, ना उनकी कोई यूनियन है ना स्टैग यूनियन, कुछ भी नहीं है। वो उनको पता था कोई चीज नहीं उन्होंने बनाई हुई, सिर्फ ये अपना अपना सोचते थे सारे ही। मैं खाली पक्षों की बात नहीं कर रहा, इसमें दूसरे भी अब आ जाते हैं, सबको ले लेता हूँ। अपना अपना सोचते थे, अपनी अपनी दिहाड़ी लगा के अपना अपना करके, तो कहते थे हमें क्या लगे। जहरी बात है, बाहर से आके किसी ने वो कहते हैं कब्जा कर लिया है, और वो उन्होंने उन्होंने वो करना था, और वो क्या कहते हैं वो आके वो बिजनेस कर रहे हैं। पहले ऊबर ने किया है, अब वैसे में आ गई है। 600 गाड़ियों का सवाल नहीं है कि 600 गाड़ियां आई हैं, वो 1000 भी लेके आ सकते हैं। और ये भी नहीं है सवाल कि वो कामयाब होते हैं कि नहीं होते, उनके पास पैसा है, उन्होंने रखा है इसके ऊपर 30,000 कर दिया। अब वो उन्होंने अपने पहले 26,000 से शुरू हुए हैं, 30,000 फर्स्ट उतना है। पहले ये छोड़ा गया मार्केट में, क्योंकि मैं तो वहां गया हूँ और भी दोस्त किए हैं, मैंने वहां जाके पूरा वो पढ़ा है, बात की है, और वाकई ऐसे ही है। 30,000 उन्होंने तनख्वाह देनी है और कस्टमर उन्होंने देना है, उनके पास अभी है या नहीं है। आपने अपने 8 घंटे या 7.5 घंटे जो आपके हैं दिन के, वो आपने लगाने हैं, उसके बाद जो है ना वो आपको 30,000 मिलेगा। और उसके पास कुछ ज्यादा काम कर रहा है या एक्स्ट्रा काम कर रहा है, वो दे उसके कहते हैं डैनिश में हो नहीं, वो बात की बात है। अभी वो 30,000 दे रहे हैं, कामयाब होते हैं या नहीं होते, ये कोई ऐसे नहीं है। लोगों वो जो बड़ी बड़ी जिन जो बड़े बड़े फंड है, ये फंड होते हैं, ये बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं, इनके पास ये पैसा नहीं सिर्फ होता, वो कई बिजनेस शुरू किए थे, बिलियनियर होते हैं डॉलरों में। और ये यहाँ एशिया में, ये एशिया से आए हैं, एशिया में ये ऑलरेडी चल रहा है, बड़ा पैसा है इनके पास। उन्होंने इधर फेंका है, यूरोप में फेंका है पैसा, यूरोप के कुछ मुल्कों में, और वो उन्होंने 100% कामयाब होना है। उन्होंने बंदे हायर किए हैं, उन्होंने डेनमार्क से क्या कहते हैं जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है जो सारी डेनिश है, वो तकरीबन सारी वो ली है। उन्होंने पूरा कानून पढ़ा है, पूरा उसका पहले सर्च किया है कैसे करना है क्या करना है, वो सारा करके होमवर्क, उसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ियां जो उनकी अपनी है वो यहाँ पर लॉन्च की हैं। और 600 गाड़ियां या 800 गाड़ियां ये कोई कोई कोई भी है, वो मैटर नहीं है, लेकिन वो उनको पता है, उन्होंने ये एक मार्जिन रखा है कि हमने ये पाया तक मील तक 6 महीने में पहुंचाना है या साल तक। वो हर हर हर हर उस क्या कहते हैं जो बड़ी कंपनी को शुरू करती है ना, उन्होंने एक मार्जिन रखा होता है, इसके अंदर हमने ये सारा कुछ करना है। और फिर वो, और ये भी कहा गया है, नहीं नहीं जी ये ऊबर उसका मुकाबला है यार, जो भी है आप। और मैं आपको ये भी बता दूं, SM ग्रीन खुद ही वॉनमैन है, ऊबर वॉनमैन नहीं है। ऊबर में आप वॉनमैन खुद बनते हो, उनका ऐप है, ऐप और छाक साफिया कंग फेमस खालब हो गई, डैन हो गई, आमा हो गई, जो भी हो गई, वो एक लैदा चीज है, ऐप एक लैदा चीज है। ऐप सब लोगों ने अपना लिया हुआ बना, लेकिन उबर ये एक इंटरनेशनल ऐप है। वो उबर ऐप जो है जिसने बनाया था, जिस आदमी ने, उसने वो ऐप बनाने के कुछ अरसे बाद, क्योंकि वो सिर्फ अमेरिका में चलती थी वो टैक्सी उबर, उसने वो बेच दिया था, उसको फिर किसी बिजनेसमैन फंड को, बिजनेस जो रन, उन्होंने रनिंग बिजनेस ये खरीद लिया, ये उबर उबर से खरीद लिया जिसने ऐप बनाया था। वो सिर्फ ऐप बनाता था, वो उसको चला नहीं सका था उस तरह पूरी दुनिया में, वो सिर्फ अमेरिका में चल रहा था, उससे खरीद लिया था उन्होंने। गालिबन 2008-09 को ये अमेरिका में आया था, 2016-17 को ये खरीद लिया गया था, उसके बाद ये फिर बाहर निकले थे पूरी दुनिया में। ये तो ऊपर की कहानी होगी मुख्तसर। अब SM ग्रीन, मैंने फिर कहा कि वो ऐसे नहीं बैठे हुए, वो सारा कुछ होमवर्क करके आए हैं, अब उन्होंने ये काम करना है। और यहाँ से आपकी जो बालादस्ती है, जिसको मैं कह दूं, मैं ये जरादारी नहीं कहूंगा, बालादस्ती जो थी हमारी वॉन मैंने की, वो आपकी इसको लें पॉइंट को मैं, और ड्राइवरों का कुछ नहीं जाएगा, वहां पर जो ड्राइवर काम करेगा वो फर्स्ट लाइन पे काम करेगा, उसको तो फायदा है। कस्टमरों की तो बात जो कहते थे शाह, वो तो है ही है, कस्टमर को फायदा है वो तो होना ही है, वो तो ऑलरेडी उनको पहुंच रहा है उबर से भी और बोल्ट से भी। अब इनका मुकाबला होगा, वो एक लेदा चीज है, ये प्राइसें कम करेंगे प्राइसें करेंगे, लेकिन ड्राइवर जो उसमें चला रहा है जाके, वो वहां पर वॉनमैन आपके खत्म हो जाएंगे,
1: खत्म हो जाएंगे शायद। जरा
2: वो वॉनमैन,
1: अच्छा मैं जाने से पहले शाह साहब अपना कह रहा हूँ, शायद ये गाड़ियां शहर में पार्क कहाँ होंगी, ट्रैफिक का निजाम कैसे चलेगा, इतनी गाड़ियां आ जाएंगी कोपेनहेगन में।
2: जी मैं ये आपको बताता चलूं कि जब शख्स नेऊन थी 2018 तक, तो अब तब वो, आपने ये बार का कहा इतनी ज्यादा गाड़ियों का, तब वो उनके कंट्रोल में थी, डैनिश उसके पीछे थे, डैनिश बड़े वॉनमैन पीछे थे, स्टैक फ्रेनिंग थी वॉनमैनों की, एक तो ये क्लियर हो गया। तब गाड़ियां आपकी होती थी 1500 से लेकर 1800 तक रोड के ऊपर, उसके मतलब था कि वो हर साल या 2 साल या साल के बाद स्टैटिस्टिक देखते थे कि कितने कस्टमरों की हमें जरूरत है। और उस वक्त शाह साहब को पता था, जब वो चलाते थे तो वो एक ग्रीन रंग का एक बिलिंग नंबर होता था, वो आपको मिलता था और क्यू में आप लगते थे। और तब ये हमारे पक्ष से नहीं, हम लोग रोते थे यार सन बिलिंग नहीं मिलता, वो पागल थे, क्यू में लगे थे, बिलिंग क्यों दें? बिलिंग इसलिए नहीं वो देते थे कि आपको जरूरत नहीं है, रोड के ऊपर गाड़ियां ज्यादा हो जाएंगी। जब आप देखें इस टाइम अभी उसकी उसको ग्रीन को छोड़ दें, वो भी 10-15-20 गाड़ियां रोड पे अभी आई हैं अभी 2-4 दिन पहले, और पहले उसको भी पीछे रखें, इस टाइम 4300 गड्डी है तुहाडी कोपनहेगन दे विच, डैन टैक्सी ऊबर और ड्राइवर और आमा और ये बोल्ट और ये सारा कुछ, ये अपना खिपना चक्सा मिला के आपकी तकरीबन 4300 गड्डी है। और हर रोज मुंशेरिंग होके आपकी 10 से 15 गाड़ियां रोड के ऊपर आ रही हैं, क्योंकि वो ओपन कर दिया हुआ है। और उसमें ज्यादातर, फिर मैं कहूंगा, ज्यादातर पाकिस्तानी यंग जनरेशन है जो आ रही है। ये किस काम पे लगा दी है? आप यार डनवारक में पढ़े लिखे लोग हैं, ये यंग है, चलो शाह साहब की समझ आती है मुझे, चलो मुझे किसी ओवर 60 साल के या 50 साल के बंदे की जो काम कर रहा है शुरू, वो भी समझ आती है। मैं ये अब तंज नहीं कर रहा, मैं ये अपनी कौम को बता रहा हूँ कि यंग जो लोग हैं कि ये कोई फ्यूचर नहीं है अब आपका, देख लिया अब आपने, ये अब ग्रीन SME आ गई है, उसके नीचे लग के आप काम करेंगे, टैक्सी चलाएंगे। जो बड़े चला रहे हैं ठीक है, उनके पास कोई वेल नहीं है, कोई पेंशनिस्ट चला रहा है कोई वेल नहीं है, लेकिन ये जो यंग हमारा तबका जो देखा है, शाह साहब ने भी देखा है, मुझे भी पता है, शाह साहब को भी पता है, आया है, मैं देख के हैरान हो गया। मैं यार ये डेनिश बोल रहा है, अच्छा भला लड़का है, 24-25 साल का, फुल काम कर रहा है, क्या हो गया इनको? उसके बरक्स यहाँ पर आपके बंगाली हैं, उसके बरक्स आपके इंडियंस हैं, यहाँ पर सिख है कम्युनिटी, श्रीलंकन है, नो वे, कोई नहीं। जो पहले थे चंद, शाह साहब को पता है, जो चला रहे हैं 20-25 साल से, वो कुछ हैं, कुछ चले गए हैं, और ये नया कोई नहीं आया। उस जो है जो जो जो जो दूसरी जो ओवरसीज हैं, जो दूसरे मुल्कों के, और उसमें बालकन के और मैकडोन, योगोस्लाविया और मैकडोन, ये बहुत ज्यादा थे चलाते, ये भी नए कोई नहीं आए, ये भी निकल गए हैं। लेकिन हमारे तो कहते हैं कि असी ना टैक्सी छटनी है, ना असी पिज्जा छटना है। यार कोई आगे बढ़ो, कोई पाकिस्तान को भी कोई नाम हो, नाम ही कोई नहीं है आपका कहीं भी, डेनमार्क में तो फिलहाल कोई नाम नहीं है किसी का।
1: लेकिन इसमें यह भी शामिल करना था, पाकिस्तानी सियासत भी नहीं छेड़नी।
2: वो तो चल एक, वो पाकिस्तानी सियासत भी नहीं छोड़नी, ये भी ठीक होगा। चलो शाह साहब को मौका दें, उनको भी
1: शाह
2: जाना
1: साहब
2: होगा।
1: आपने शायद की बातें सुनी, उसने बड़े तफसील से बातें बताई, आप करते भी रहते हैं, आप क्या कहेंगे शाह साहब?
0: जी मैं तो बिल्कुल बहुत खुश हूँ शायद की बातें सुन के, कि मेरे बात अगर कोई यहाँ पे अपनी आवाम को कोई एजुकेट कर रहा है तो वो ये बिल्कुल सही तरीके से कर रहा है। देखें अब फ्यूचर क्या हो गया, हम फ्यूचर देखेंगे। फ्यूचर ये हो गया है कि जैसे ग्रीन टैक्सी ने ड्राइवर जिन जिनको शौक है गाड़ी चलाने का, उनको फिक्स पे कर दिया है। अब जब ये फिक्स पे हो गया तो इसमें ड्राइवर को वाकई ही बहुत ज्यादा सहूलतें मिलेंगी, लेकिन जो जो फ्यूचर डार्क हुआ है वो हुआ है उनका, जिन्होंने वोन में अपने आप को वोनमैन समझते हैं लेकिन वो वोनमैन नहीं है, उनको एक चिलैल से एक इजाजतनामा मिला हुआ है। जैसे कि हमने 10,000 दफा बताया है कि जैसे आप इंश्योरेंस से चिलैल से लेते हैं कि भाई मुझे नंबर प्लेट चाहिए, मैं आपके पास इंश्योर्ड हुआ, और जिस दिन आपकी इंश्योरेंस खत्म हो जाती है तो वो पुलिस को कह देते हैं, उसी वक्त आपकी गाड़ी को रोक कर वो नंबर प्लेट उतार देते हैं, आपका ट्रायल से खत्म हो जाता है। ये जो नया उबर कानून बना था, शायद मैं आपके लिए भी आपको बात बता दूं कि मैं इस चीज के मुखालिफ था कि उबर यहाँ से बाहर जाए। मैं ये कहता था कि उबर को यहाँ रहना चाहिए, अब वो आ गए, ये अमीर आदमी है, इन्होंने सियासतदानों को भी खरीद लिया, इन्होंने मार्केट को खरीद लिया है, तो अब इनको रहने दें, इनकी मुखालफत ना करें। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी वोमेनशिप जो है, जो तो आपके पास जैसे लंदन में ब्लैक कैब चल रही है, जर्मनी में चल रही है ऐसी, तो मैंने कहा वो उसके साथ उबर भी चल रही है, दूसरी कंपनियां भी चल रही है, तो आप ऐसा करें अपनी वोमेनशिप जो है पुरानी इसको रखें, और बकायदा कम्यून जैसे ह्यूमन नेवन देती थी, ह्यूमन नेवन रहे, और वो जो है वो जो बिविलिंग्स हैं या वो चिल्हाल से जो है वो इशू करें, लेकिन इन्होंने ओपन मार्केट कर दी, हम लोग लालच में आए कि हम तो बहुत ज्यादा गाड़ियां रखेंगे, उनको बेचेंगे और इस तरह, लेकिन आगे से उल्टी जूती जो है वो हमारे चेहरे में पड़ गया। मैं 50 साल से ऊपर मैंने टैक्सी चलाई है डेनमार्क के अंदर, और मैं तो इस चीज से दुखी हूं कि उस वक्त एक वोनमैन जो था, एक कैब ऑनर जो था, उसकी बहुत बड़ी रिस्पेक्ट थी स्वाय अदालत के, उनका वो ग्रीन नंबर प्लेट कोई फ्यान नहीं कर सकता था। अब जो है ये सिर्फ जो जिस कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हैं वो जिस वक्त दिल चाहे बंद कर दें, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, ये डैनिश कानून है। तो सबसे बड़ी शायद इन्होंने ये बात की कि जब ऊबर को इन्होंने कहा कि आप ऊल ऑडिट हैं और आप यहाँ से चले जाएं, यहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया, तो उस वक्त उबर जो थी वो ड्राइवर के रंग में यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रही थी, और उसके बाद दूसरी सेल्स के भी इसी तरीके से ऐप पे काम करना शुरू कर दिया था। ये इनकी मन पर इन्होंने क्या किया कि ट्रैफिक मिनिस्ट्री ने उसी दिन जिस दिन उबर को बैन किया गया, उसका हाइब्रो प्रेस पे इन्होंने कंट्रोल जो है को बंद किया, उसका जो डायरेक्टर था वो ट्रैफिक मिनिस्ट्री में उसने जॉब ले ली, और वो उसको डायरेक्टर टिल्सियन, ट्रैफिक टिल्सियन का जो था उसको अपना डायरेक्टर बना दिया गया। उसके नीचे ये सारे लॉस वोन और ये वाव वोन और ये सारी टैक्सी सेल्स के उसके नीचे आती थी। उसने कानून ही ऐसा बनाया, फिर भी उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको 2019 से लेके 31 दिसंबर 2023 तक हम आपको ये देते हैं कि अगर आप वॉनमैनों को इस कानून के को पसंद नहीं तो आप आए हमारे साथ बात करें, हम इसको चेंज कर देंगे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमें यह कानून ज्यादा मंजूर है क्योंकि अब हर कोई आदमी जो है वो टैक्सी ले सकता है। तो उसकी वजूहत जो है वो अब सामने आ गई है, और अब बिल्कुल आपकी बात सही है, यहाँ पे मैं तो अपने जितने पुराने वॉनमैन चल रहे हैं या नए यंगस्टर, उनको ये कहूंगा कि खुदारा मत बने बोनमैन, बल्कि आपको अगर फास्ट जॉब मिलती है, जो शोफर मिलती है, तो वो आपके लिए ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि यहाँ अगर आपकी गाड़ी थोड़ी सी स्पीड अप हुई, नए कानून में आप फंस जाएंगे और वो आपकी टैक्सी भी जब्त कर लेगा। बहुत सारे बोनमैनों की यहाँ टैक्सी जब्त भी हुई है, तो वो आपको लॉस होगा, आपको इकोनॉमिकली लॉस होगा। यहाँ आपने शौक पूरा करना है, जाए फिक्स तनख्वाह ले, अगर आप ओवर टाइम करेंगे तो वो आपको बोनस भी देंगे। तो मेरा ख्याल में कि ये जो ग्रीन टैक्सी आई है, मैं इसकी हमायत तो नहीं करता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये हमारे ड्राइवरों के लिए बहुत ही महफूज है।
1: और चलें शाह साहब, आ गया मैं मियां मुनीर साहब, बड़ा तजुर्बा है, एक ब्रांच के ये दो बार जो है वो चेयरमैन रहे, सदर रहे, और उनको वसी तजुर्बा है पिछले कितने दहाइयों से। मियाँ साहब, आपको अदर आपकी आवाज़ पर एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं, क्योंकि आप यंग सियासतदान भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, और इस फील्ड को बहुत अच्छी तरह समझते भी हैं।
3: जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया रहा साहब, सबको बहुत बहुत सलाम,
0: वालेकुम सलाम को,
3: सुनने वालों को। मेरे मोहतरम शाह साहब, मैं पिछले कोई आधा मिनट सुन रहा हूँ इनकी गुफ्तगू, आपका मौजू में समझ गया हूँ स्टार्ट में, तो बहरहाल आप सबको बहुत बहुत सलाम, अल्लाह ताला सबको खुश रखे।
1: शुक्रिया मियां साहब, आपका बड़ा वसी तजुर्बा इस फील्ड में, नई एक आ गई है टैक्सी, इसका फायदा होगा, नुकसान होगा, ड्राइवर को फायदा होगा, पब्लिक को फायदा होगा, शहर में ये गाड़ियां आ जाएंगी, पार्किंग के मसाइल होंगे, क्या ये जो जॉब मिलेंगे ये पक्के जॉब होंगे, ये ना हो दो दिन किया तीसरे दिन निकाल दिया। तो मियां साहब, ये जब चीज़ें आती हैं, ड्राइवर अपनी टैक्सी छोड़कर मुलाजमत इख्तियार करता है, तो बहुत सारे हकूक भी होते हैं और बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। जी मियां साहब, आप बताएं हमारे सामने नाज़रीन को।
3: जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें ट्रांसपोर्ट, टैक्सी, बसेस, जो भी पुराने ज़माने की चीज़ें, एक टांगा से लेकर और अब जो चीज़ों में तब्दीली आई है, इतना मॉडर्न ज़माना, हमने खुद टैक्सी फील्ड में जो देखा शाह साहब ने, मैंने, कि किस तरह की गाड़ियां थी, कौन से उसमें सिस्टम थे, रेडियो सिस्टम था, डिजिटल सारा कुछ है, आईटी, कंप्यूटर, सारी चीजें, आप अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत सारी सहूलतें भी हम इंसानों के लिए। अब टैक्सी की जो बात कर रहे हैं, टैक्सी एक जरूरत है और चलती आ रही है, और चलती रहनी है, इसमें वो दूसरी कोई बात ही नहीं है। ट्रांसपोर्ट, इंसान एक दूसरे के बहुत नजदीक हो चुका है। कभी भी इतनी टैक्सी नहीं इस्तेमाल होती थी जितनी अब होती है। कभी भी इतना क्या कहते हैं आप, ट्रेवलिंग नहीं होती थी जितनी आज। अगर आप देखें फिगर जो आप पढ़े किसी भी एयरपोर्ट के, कोपनहेगन एयरपोर्ट के, तो एक एवरी मंथ एवरी ईयर आपको उसमें बहुत बड़ा इजाफा मिल रहा है, इसी तरह टैक्सी इस्तेमाल करने वालों में। डेनमार्क में मैं बिल्कुल इस फील्ड में बहुत पुराना हूँ। शाह साहब मेरे उस्ताद भी हैं और मेरे बुजुर्ग भी हैं। मैंने पहले दिन से इनके साथ टैक्सी शुरू की थी। और टैक्सी में यानी कि जैसे मैंने पहले अर्ज की कि कितनी तब्दीलियां आई। बहरहाल इन जो फिगर की हम बात करेंगे, नया जैसे एक ग्रुप आया उसकी बात करेंगे, तो फिर इस तरह ही है कि कोपनहेगन में किसी जमाने में 1800 और कभी 2100, फिर 1800, फिर 1850, इस फिगर में बहुत अरसा टैक्सीज रही। वो जरूरत थी, वो कंट्रोल था, वो निजाम था। ये 13 कमूनों जो है इनका। फिर वक्त के साथ साथ कुछ तब्दीली आई। आज से कोई 5-7 साल पहले यहाँ ऊबर आई, या 4-5 साल पहले। डेनमार्क का एक टैक्सी सिस्टम है, एक कानून है, पहले भी इस पर बात हुई है और आज भी है। अब आज भी EU से हटकर, बाकी लोगों से या मुल्कों से हटकर, डेनमार्क का एक अपना टैक्सी लॉ है। जो उसे फॉलो करे उसमें तब्दीलियां आई हैं। जो उसे फॉलो करेगा वही यहाँ टैक्सी चला सकता है, और उसमें कुछ बिल्कुल कंडीशंस हैं। लेकिन जो हुआ ये है, मैं अनफॉर्चुनेट कहूंगा, बदकिस्मती से उसमें जो तब्दीली आई उसमें ये मसलन ऊबर यहाँ आ गई, बोल्ट यहाँ आ गई। अब ये नई जो कंपनी आई इसकी हम बात करेंगे। इसकी वजह से अब हम देख रहे हैं, मैं कल की बात करता हूँ। मैंने कल मैं यानी के कल शाम को टैक्सी से मैंने चलाई है। मैंने देखा है कि रोड पर जब इंसान हो उस फील्ड का हो, तो फिर वो देखता कि क्या हो रहा, यानी कि सर्विस किस तरह दी जा रही है। और शाह साहब आप देखें कि हु वॉक्स गेट उसे कहते हैं, कफी भिक्षा, उसके सामने मैं हूं, गुजर रहा हूं, तो ये दो तुर्की खड़े हैं एक लाइन में। जनाब इस तरह हो गई, निकल गई मुंह से बात, कोई भी हो सकता था। उन्होंने मुझे रोका, तो एक बंदा जो उनके साथ जाना चाहता था वो मुझे कहते हैं कद्द से आप ले जाओ, इसलिए कि वो छोटा टूर था। इस तरह नहीं होता था पहले। ये जो चीजें मैंने इसलिए मिसाल दी कि अब वो लोग जो ना सर्विस माइंड थे, ना उन्हें वो उस कानून या उस निजाम को समझते हैं या समझना चाहते हैं, अब वो फील्ड में आ गए हैं। अफरा तफरी फैल गई है। जिन लोगों ने इसे एज ए एक बिजनेस, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की थी, एक अच्छा निजाम बनाया था इस मुल्क के अंदर, उन चीजों को वायलेशन भी की जा रही है। उनमें बहुत सारा अपना भी वो नुकसान कर रहे हैं और दूसरों का भी नुकसान कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। ये यहाँ के पॉलिटिशियन ने, आप बिल्कुल बात करते रहे, मैं सुनता रहा, मैं भी जानता था, मेरे पर एक जिम्मेदारी भी रही। हमने देखा कि यानी कि यहाँ जिस तरीके से ये दूसरी कंपनीज आई है उनके लिए क्या कंडीशंस हैं। वो पेपरों पर तो वो पूरी कर रहे हैं जो यहाँ का वो हमारा टैक्सी लॉ है, जिसके लिए ड्राइवर के लिए कंडीशंस हैं और वॉमेन बनने के लिए। लेकिन इन साइड मैं जानता हूँ कि उसमें बहुत सारी दो नंबरी हो रही है, वायलेशन हो रही है, गलत हो रहा। ड्राइवर सर्विस माइंड नहीं है मोस्ट ऑफ देम, मैं कहूंगा थोड़े नहीं बहुत सारे। अभी हमने देखा रॉस्किल फेस्टिवल था, मैं भी फील्ड में था, कि आप देखें कि मिसाल के तौर पर, फिर मैं मिसाल अपनी देता हूं, कि एक बंदा मेरे पास आया मुझसे 11 लोगों से पहले जाकर, थोड़ा सा अपाहिज था, स्टिक के साथ चलता था, पहले 11 लोगों ने उसे बैठाया नहीं गाड़ी के अंदर, अपनी टैक्सी के अंदर, इसलिए कि उसने वहां से रॉस्किल स्टेशन पर जाना था जो less than 100 crore का टूर था। सो ये चीजें जो है, ये है वो कि जो बेतरतीबा اور بغیر کوئی یعنی کہ سسٹم کو صحیح مینو میں وہ آرگنائز کرنے کی یا بنانے کی کوشش یا ایک سلسلہ تھا, اس سے ہٹ کر چیزیں چلیں گی.
1: میاں صاحب اس کا حل بتائیں.
3: اس کا حل یہ ہے کہ اس ان چیزوں میں یعنی کہ ہم تو اپنے کمپنی کے اندر بھی بات کر رہے ہیں, ٹیکس آف یہ فیمس ہاؤس جو ہے اس کی تو ایک کنڈیشن ہے ابھی تک. ڈرائیور جو ہے ایک تو اتھارٹی کی طرف سے آپ کو لائسنس جو لینا ہے, پھر وہ جو ہمارا فیو اکارڈ ہوتا ہے, اس کے بعد شاہ صاحب بھی جانتے ہیں, سب جانتے ہیں, ہم خود ٹاکسا کے اندر ایک ٹیسٹ لیتے ہیں جس میں ہر ڈرائیور کو اور ڈرائیور ہی پہلے بنتا ہے کوئی, یا وانمین بننے سے پہلے بھی سیم کنڈیشن ہے کہ وہ یعنی کہ پہلے ٹیسٹ لیتا ہے جس میں زبان کا ہوتا ہے, کمیونیکیشن ضروری ہے, ہم ڈینمارک میں رہتے ہیں, ڈینش آنی چاہیے, اور دوسرا جو ہے وہ اسے کورس کروایا جاتا ہے جسے کہ آپ نے کس طرح ہینڈل کرنا ہے, سروس دینی ہے. یہ تو تھی وہ, اور میں بھی اپنی کمپنی کی کوئی مشہوری کے لیے بات نہیں کر رہا, میں ڈینمارک کی بات کر رہا ہوں کہ سسٹم یہاں. اب میں جو تھوڑا سا سنا آدھا منٹ وہ تھا شاہ صاحب وہ گرین ایم ایس جو ہے ٹیکسی, اس کے بارے میں بات کر رہے تھے, اس کا بڑا چرچا ہو رہا ہے, ایک نئی چیز ہے وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت گاڑیاں آ چکی ہیں روڈ میں. میں پچھلے دن بھی کہا تھا میری ورک شاپ کی سیکنڈ گلی میں ان کی گاڑیاں تقریباً 250-300 گاڑی پارک ہے, فلی طور پر تیار ہے, ابھی انہیں ڈرائیوروں کی کمی ہے. ڈرائیور وہ اب پائپ لائن میں ہوں گے تو پھر ہی وہ آئیں گے نا جو مطلب گاڑی چلائیں گے ان کی, پر وہ کافی کوشش میں آ جائیں گی, کوشش ان کی بہت ساری ہے کہ, اور انہوں نے تنخواہ وغیرہ فکس اور وہ اچھی اماؤنٹ ہے, میں بالکل سمجھتا ہوں سارا سسٹم, لیکن اوور آل یہ کیا ہوگا. اوبر کا کسی کو پتا تھا آج سے 20 سال پہلے اوبر شروع ہوئی امریکہ میں, وہ یورپ میں آ گئی, انگلینڈ میں اس نے یورپ میں سب سے پہلے آئے, آہستہ آہستہ پھر آج یعنی کہ تقریباً آلموسٹ ہر ملک میں چل رہی ہے. اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا امیر آدمی, ایک بہت بڑا گروپ ہے, انہوں نے سسٹم کو مارکیٹ کو کیچر کر لیا. آہستہ آہستہ یعنی کہ ہوگا یہی کہ وہ ساری سسٹم کو کیچر کر لیں گے, پھر وہ سروس جو میں نے کہہ دی ہے پہلے جو اس وقت چل رہی ہیں, اور پھر یعنی کہ وہ مارکیٹ کو کیچر کر کے پھر نہ وہ ڈسکاؤنٹ رہے گا نہ وہ سروس رہے گی, صرف ایک ہی چیز رہے گی کہ کتنی گاڑیاں ہیں اور کتنی پرسنٹیج وہ لیں گے. جو آج وہ لیٹس ہے 15% لے رہے ہیں, کل کو وہی 25% لیں گے جو کسی اور نے نہیں پے کرنی, میں نے اور آپ نے ایز اے کسٹمر پے کرنی ہے. اسی طرح ایک بندہ جو ویتنام کا ہے جو بہت بڑا امیر آدمی ہے, ایسے دنیا میں لوگ ہیں جن کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے انہیں پتہ نہیں کہ کہاں کیا, اسے کسی نے آئیڈیا دیا ہے, اس نے جا کر ایک کمپنی سے ایک کورین کار خریدی ہے جو ڈینمارک کی ٹیکسی کا مطلب ہے کہ کار سائز جو کنڈیشن ہے وہ بھی ضروری ہے وہ پوری کرتی ہے. وہاں سے اس نے بہت بڑا فیئر لیا, پھر وہ سب سے پہلے اس نے شروع ہی دنیا میں کہیں اور نہیں ہے یہ گرین ٹیکسی, اس نے ایک آئیڈیا اپنا بنایا کہ یورپ جو ہے اس کے اندر میں نے جانا, کیونکہ یورپ کا ایک سسٹم ہے, یہاں ایک جس طرح کیا کہتے ہیں ایک نظام چلتا ہے, نظام زندگی چلتا ہے جس کی ضروریات ہے, اس مارکیٹ میں اس نے جانا. وہ ہالینڈ پہلے گیا, وہاں کے قانون جو ہے اسے اجازت نہیں ملی, تو اس نے ظاہر پروفیشنل طریقے سے اس نے پڑھا کہ یہ ڈینمارک کی چیزیں جو ہے نا پوری کر سکتا ہوں, یہاں ضرورت بھی شاید ہے, تو اس نے ڈینمارک آ کر اپلائی کیا, اسے اجازت مل گئی ہے. اب وہ ٹیکسی جو یہاں 600 ٹیکسی کی تیاری میں فی الحال جہاں تک مجھے پتا ہے 400-350 گاڑی جو ہے وہ تیار کھڑی ہے, جن میں سے ابھی تو چند ایک ہی چل رہی ہے, ہمیں پتا آ جائیں گی وہ بھی روڈ پر.
1: لیکن میاں صاحب یہ کوپن ایگر میں ہوگی, پارک کہاں کریں گے؟
3: پارک جو ٹیکسی پارک ہوگی روڈ پر نہیں چلے گی, وہ تو بہت بڑا گھاٹا ہوگا, نقصان ہوگا, انہوں نے چلنا ہے. ٹیکسیاں تو مطلب پارک تو پھر یعنی کہ تھوڑی دیر کے لیے وہ گھومے پھر رہے ہیں جیسے ہم گھومے پھر رہے ہیں, ٹیکسی اسٹینڈ ہے, बुकिंग हो रही है, होता ही है राय साहब। मैं आपकी बात समझ गया हूँ, चले आज आराम से बात कर लेते हैं। कोपनहेगन टैक्सा की जो हमारी गाड़ी है ना, मसल 800 है, वो 800 पार्क नहीं होती, उनमें से लेट्स से 200 गाड़ी पार्क होती है मुख्तलिफ घरों में, जैसे मेरी बार खड़ी है, बाकी जो है वो रोड पर होती हैं, जिनमें से लेट्स से के 60% जो है जो चलती हैं वो बिजी होती हैं, कस्टमर के साथ है। सो गाड़ी याद रखें, गाड़ी गाड़ी जहाज और वकील, वकील का कैलेंडर बिजी रहे, जहाज जो है ग्राउंड पर ना हो, और टैक्सी जो है वो कस्टमर के बगैर अगर खाली चलती हो तो नुकसान ही नुकसान है। मैं इसकी मिसाल आपको इस तरह दे सकता हूँ।
1: मियाँ साहब ये तो कारोबारी बात होगी ना, लेकिन उसने दाएं बाएं मुड़ना भी है तो बाकी ट्रैफिक भी होगी, ट्रैफिक के मसाइल कैसे होंगे?
3: देखें ट्रैफिक के मसाइल तो फिर जिसे हम कहते थे कि कोपनहेगन एक बहुत खूबसूरत शहर है, इसमें वो लंदन पेरिस की तरह बाकी मुल्कों की तरह ट्रैफिक नहीं होती यहाँ, यानी कि बड़ा एक सिस्टम बड़ा मतलब इजी चल रहा है, माहौलियात सारी चीजें बड़ा कंट्रोल है, तो वो तो चीजें फिर जाहिर है ट्रैफिक में नहीं रहेंगी, बिजी आवर में तो बहुत ज्यादा आप भी हम महसूस करते हैं। तो बहरहाल मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो ये चीज
1: चलिए मियाँ साहब आपका वर्जन आ गया, शायद आपने बातें सुनी मियाँ साहब की, शाह साहब की भी, शाह साहब की भी तरह चलेंगे, क्लोज करेंगे बाद में वो, तो शायद आप किस तरह देख रहे हैं मियाँ साहब की बातों को, कोई और क्या इजाफा करेंगे आप?
2: राजा साहब, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि आपका मुझे सवाल एक समझ आया थोड़ा सा मेरी भी जेन में, कि आपने क्या पार्किंग कहाँ होगी, वो छोड़ो मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ। एवेदो हॉलमन में जहाँ पर मियाँ साहब का दफ्तर है उसके करीब ही कैनल हॉलमन है, उधर है इनका बहुत बड़ा, जहाँ पर इनकी 600, 400 या 350 गाड़ियां खड़ी हैं, इससे ज्यादा भी खड़ी हो सकती हैं। और उसके बाद जो इन्होंने जो प्राइवेट पार्किंग जो उनकी अपनी है वो ही उधर भी 200-300 गाड़ी खड़ी हो सकती है प्राइवेट, अंदर टैक्सी है, और जैसे ग्रिल के अंदर जो फोर्ट बना हुआ है, जैसे फोर्ट खुलता है उसके बाद टैक्सी उनकी पार्क है, उधर पार्क करनी है आपने टैक्सी, जब मैंने इन्फॉर्मेशन ली थी जिस ड्राइवर ने काम खत्म करना है गाड़ी उधर पार्क करनी है, और उसके बाद अपनी गाड़ी वहां से लाया होगा चला के ले जानी है। और स्टार्ट में ये भी है कि इफ द आउच है, अगर उनके पास ड्राइवर नहीं है अभी गाड़ियों में, तो वो गाड़ी अपने घर लेके जा सकता है, वो उसका पहले उसे पूछना होगा घर किधर है, किस नवयत का है, और वो उसकी जिम्मेदारी लेता है। ये सारी बातें उन्होंने की थी, और स्टार्ट में जो एक गाड़ी के ऊपर एक शोफेर है तो वो फिर गाड़ी घर लेके जा सकता है और गाड़ी को जो है ना उसकी देखभाल कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि आपने बात की कि मियाँ साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, और उनकी बातों से मैं मुतफिक हूँ, जहरी बात है वो इस ब्रांच से 40-45 सालों से मुंसलिक है, लेकिन ये जो चीजें हुई हैं ये आपकी मैं फिर बताऊंगा 66 ने उनके खत्म होने के बाद हुई हैं, या इसको खत्म करवाया गया है जैसे भी करवाया गया है, अगर वो खत्म ना होती तो आज इसका रिजल्ट कुछ और होता। और उस वक्त मुझे याद है मेरे वाले साहब भी बताते थे, हम छोटे होते थे बताते थे कि यार वॉनमैन थे वो भी, तो वो बताते थे कि 1600 गाड़ियां हैं, 1800 गाड़ियां हैं, 1700 हैं, कभी ज्यादा से ज्यादा 2100 हुई, तो तब और उनके कंट्रोल में इसीलिए था कि आपकी 13 कमूने थी कि इस तरह का जो है जो जो वो गंद ना मच जाए। छोटा सा शहर है, छोटा सा मुल्क है, और आज देख लें 4000 के करीब गाड़ियां हैं इस वक्त, और उसमें और गाड़ियां भी होने जा रही हैं, और ये सारा खुद कुछ बाकायदा मंसूबे के तहत किया गया है। कैसे किया है ये अभी शाह साहब ने भी बताया कि उन्होंने शुरू से ही ये तैयार कर लिया था, जो बंदे थे इसके अंदर डेनिश पुश इन्वॉल्व, जैसे बताया कि हर मुल्क में हर चीज होती है, यहाँ पर जो है मिल बैठ के प्यार मोहब्बत से गायसा करा के दो दो पांच पांच लाख के गायसे भी होते हैं, वो गायसे इस तरह के करवा के प्यार मोहब्बत के अंदर सारे काम लिए जाते हैं, और ऊबर ने ऐसे ही पैसा फेंका है। मेरी बात को आप जरा कहते हैं फॉलो कर जाएं, और इसी तरह जो दूसरी आई है ये भी ऐसी कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत के साथ आप बड़ी चीजें करवा लेते हैं, उसमें ये हमारे मुल्कों की तरह थोड़ा होता है कि वो डायरेक्ट ही हो जाए हर चीज में, तो वो फिर आपको जो है सब कुछ सामने आ जाता है। तो इसमें प्यार मोहब्बत के साथ जब चीजें होती हैं तो वो प्यार मोहब्बत के साथ उन्होंने करना था, और उन्होंने ये मोनोपोली खत्म कर ली थी। डेनिश कुछ लोग थे, कुछ लोग इसके पीछे हैं, वो ये चाहते थे कि ये वोन मैन की जो है ना فارنروں کے ہاتھ سے ختم کی جائے. اس میں ہم مانیں وہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے یہ کروا کے, ورنہ ان کو کیا ضرورت تھی کہ باہر سے گاڑیاں لے کے آئیں, کبھی اوبر آ گئی کبھی آ گئی. اس کی تو ہم اچھا بھلا چل رہا تھا, اس کی متحمل نہیں تھے. انہوں نے دیکھا یار اتنے 97% 98% فارنر ہو گئے ہیں, 80-90% وومن سارے فارنر ہیں, اور یہ پیسہ سارا ان کو جا رہا ہے. اس کی تکلیف تھی ڈنمارک میں, خاص کر میں نے یہ دیکھا ہے. دوسرے یورپ کے ملکوں کی بنسبت میری یہ رائے ہے, ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے, یہاں پر وہ ایک لمٹ تک کسی فارنر کو امیر ہونے کی اجازت دیتے ہیں, اور یہ ان کا سسٹم ہے. وہ پھر سسٹم حرکت میں آ جاتا ہے, وہ اس کے مطابق وہ پھر وہ سسٹم جو ہے نا اس کو کرتا ہے فالو, کیونکہ یہ آپ کو آگے
1: تو شاید کیا یہ آپ لوگوں کے سسٹم میں بھی کوئی میر جعفر میر صادق تھے؟
2: یہ تو میاں صاحب بتائیں گے بڑے ہیں.
4: میں رائے صاحب مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے برخوردار شاہد بھی ہمارے ساتھ ہیں. میں شاہ صاحب کی میں تو ابھی اٹھا ہی ہوں, جو سچی بات ہے یہ ساتھ میں گرم پانی پی رہا ہوں, آپ نے میسج لکھا تو ہم حاضر ہو گئے. شاہد آپ کو بہت بہت سلام.
2: جی
4: میں آپ کو سنتا رہتا ہوں, آپ کا تجزیہ, آپ کے جذبات, آپ کی سوچ میں بہت زیادہ اس کی قدر کرتا ہوں. آپ ایک دلیر انسان ہو, ہمیشہ دلیری کے ساتھ بات کرتے ہو, لوجک اور پڑھے لکھے انسان ہو. میرے تو آپ بیٹے بھی ہو.
1: ہمارے شاہ صاحب اس دل ہیں؟
4: نہیں نہیں نہیں شاہ صاحب تو ہمارے بڑے ہیں, ایسے نہ کریں. یہ جو نا یہ جو سکھ ساک آپ نہ کیا کریں. میں اس برخردار کی شاہ صاحب کے ہاتھوں میں جوان ہوا ہوں, وہ کہتے بھی ہوتے ہیں
2: راجا صاحب میاں صاحب, میاں صاحب کی جو گود نہیں ہے اس کے اوپر میں, انہوں نے مجھے کھلایا ہوا ہے. پوچھ لیں
4: یہ مجھے فخر ہے, اس وقت میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. شاید ملتے تو ہم اپنی جگہ ہیں, لیکن مجھے اس بات پر فخر ہے کہ شاہد جو ہے یہ میرے ہاتھوں میں بڑا ہوا ہے, یہ میری گود میں یہ کھیلا ہے. گلیر سکس وائے میرے انکل اور ان کے والد, اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی دے. میرے وہ بڑے بھی ہیں اور ہم نے اکٹھے اس فیلڈ میں کام کیا. شاہ صاحب بھی جانتے ہیں.
1: مجھے پتا چلا یہ اتنا سمجھدار کیوں ہے.
4: بس مجھے وہ پیروں سے, میرے پیر ہیں شاہ صاحب, ان سے یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ملا سارا کچھ. شاہد سب سے پہلے تو اس کے ماں باپ جو اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی دے, اور اس کے بعد ایسے ہی ہوتا ہے. اور ہم جیسے جو درمیان میں آپ جیسوں کے ساتھ لڑکے رہے تو پھر پیچھے رہ گئے, تو بات تو کچھ اس طرح ہی ہے. شاہد آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے, اور راجا صاحب نے دو تین دفعہ پارک کی بات کی ہے. اب راجا صاحب شارٹ یہ کرتا ہوں کہ جو ڈین ٹیکسی ہے یہ گرین والی, ان کی تقریباً 1600 گاڑی ہو چکی ہے ڈینمارک میں اس وقت, پلس اس سے بھی پلس ہے میرے خیال میں, میں آخری فکر نہیں جانتا. لیکن آپ نے دیکھا ان کی پارکنگ کی پرابلم نہیں ہے, بات پارکنگ کی نہیں ہے, بات ٹیکسی سسٹم کی ہے. ٹیکسی ایک ضرورت ہے, ٹرانسپورٹ کے لیے ضرورت ہے. اس کے اندر جو بزنس ہو رہا تھا, جو نظام چل رہا تھا, جو سروس دی جا رہی تھی, جس کے لیے کچھ کنڈیشن تھی, ان کو کس طرح وائلیشن اس پر ہمیں ہوئی ہے, اور باہر سے آ کر کمپنیاں انہوں نے اس سسٹم کو, اس بزنس کو کیسے کر لیا ہے. پہلے ایک اوبر تھا, پھر ایک بولٹ تھا, اب ایک تیسرا فار ایسٹ سے آ کر ایک کمپنی جو ہے اس نے یہاں ڈیرے ڈالی. یہ ہے ہم لوکلز کے لیے, ہمارے لیے ایک پرابلم. اور شاید بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی ہے. اب میں کل کچھ لوگوں کے درمیان تھا جو جن کا 3-4 کا کیوسک کے ساتھ تعلق تھا. آپ کو پتا کیا حال ہے ان کا؟ یعنی کہ بہت برا حال ہے. کیوں کہ یہ ساری ٹھیک ہے اوپن. میں کہتا ہوں شاید کہ جو چیز پبلک کے لیے ایزی ہو, پبلک کے لیے اچھی ہو, وہی ہونی چاہیے. لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ لوگوں پر کنڈیشن لگا دیں, دوسروں کو آپ ریلیف دے دیں, یا نظام اس طرح بنا دیں کہ وہ ان کا سارا کچھ جو ہے وہ جاتا رہے اور دوسرے سارا کچھ لوٹ کر لے جائیں. میں یہ سوچ ہے. جی
1: میاں صاحب آپ نے بات کی, شاہ صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں. شاہ صاحب, میاں صاحب آپ کی سرپرستی میں آپ کی گود سے نکلے, میاں صاحب کی سرپرستی میں شاید گود سے نکلے, تو یہ چیزیں تو بڑی اچھی ہیں. یہ 40-35 سال کا جو تجربہ یہ بڑی چیز ہوتی ہے. ظاہر ہے جب کسی انسان کے پاس تجربہ ہوتا ہے اس نے 30-40 سال پہلے کی جو چیزیں ہیں وہ دیکھی ہوتی ہیں, نئے آنے والوں نے تو پھر وہ 30-40 سال لگائیں گے تو وہ دیکھیں گے. تو شاہ صاحب ان ساری چیزوں کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟
0: देखिए जी, सबसे पहले तो मैं एक आपको सच्ची इंफॉर्मेशन दूं कि जब मियां मुनीर डेनमार्क में आया था, ये बच्चा था और इसने अपने बचपन में डेनमार्क की सियासत को बड़ी गहरी नजर से देखा और बड़े इस सामफोन को इसने समझना और सुनने के लिए इसने हर आदमी जहां पे भी ये एक्टिव हुआ, सोसाइटी हो या डैनिश प्रोग्राम हो, वहां इसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो ये इसकी अपनी काबिलियत है और इसे सीखा है और ये सीखने से आज ये लोगों को अवेयरनेस दे रहा है। अब मैं शायद को एक बात बताना चाहता हूँ। शायद देखे, जब मैंने काम शुरू किया था तो उस वक्त 70s के अंदर यह था कि डैनिश लॉ यह था कि तुम वो एक है मेदर इन वन मैन स्केल, एक है मेदर टू विविंग ना। अच्छा, ये पूरे डेनमार्क का कानून था जिसके अंदर खाई ओल्सन ने उस वक्त सिग्नेचर किए हुए थे और ये लॉ जो था ये ट्रैफिक मिनिस्ट्री की तरफ से था। लेकिन पूरे डेनमार्क के अंदर आप यूलैंड में चले जाए, वहां पे भी दो दो वनमैनों के पास गाड़ियां थी, लेकिन कोपेनहेगन के अंदर जो थी, मियां मुनीर साहब भी पता है कि यहाँ पे टाक्सा मोटर में, दूसरी जगह कोडन में, आगे पीछे एक एक वनमैन के पास 50-50 गाड़ियां भी थी, 40-40, 30-30 गाड़ियां भी थी। तो यहाँ पे मोनोपोली थी और ये चीज वो वाजिया कर रही है कि यहाँ पे क्रिमिनलिटी जो है वो जैसे आपने कहा कि राइजे राइजे ये सब कुछ यहाँ पे होता है। अब मसला क्या है? मसला ये है कि जैसे आप यंग हैं, मियां मुनीर हैं, ऐसे हो चंद एक दोस्त मिलके इन सारी चीजों को, मैं आपको सबूत देने को तैयार हूं, आप लोग आगे जाके एक्टिव हो तो आज भी ये कानून जो है कोपेनहेगन टाक्सा जो इस वक्त बची हुई संस्केप है इस उग्र और दूसरों से, आप लोग आज भी ये मसला पुट अप कर सकते हैं कि ये जो लॉज आपने बनाए हैं, ये लॉ फोर्सलेस जो है, इसको डिमोलिश किया जाए और आइन के मुताबिक जो है वो आप यहाँ पे वापस टैक्सी जो ह्यूमन नेवन है उसको लेके आए, ताकि यहाँ पे जो आने वाला जो फ्यूचर है जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग जो है वो आबस लूस होंगे, जो आजकल टैक्सी चला रहे हैं और ये जो एनसेट कर रहे हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे ये जो क्राइम चल रहा है ये इसको रोकने के लिए आज अगर आप इकट्ठे ना हुए तो मुझे ये नजर आ रहा है कि उबर भी अनसेट करेगी, बोल्ट भी अनसेट करेगी और ये जो ऑलरेडी है या कोई एक और कंपनी आ जाएगी, तो फिर यहाँ पे ये हो जाएगा कि 200 करोड़ का टूर कोपेनहेगन उर्बन गॉन या कहीं से भी 200 का टूर जो है म्यूनिख चीज के अंदर आप लेके लुफ्थावन जाएंगे और ड्राइवर बेचारे का क्या असर हो रहा है। तो ये चीजें जो है, एक ड्राइवर जो है वो 30,000 में से टैक्स दे के हर एक चीज दे के तो वो 20-22,000 या 20,000 करोड़ में वो सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि उसको उसके अखराज पूरे नहीं होंगे, उसने फैमिली लेके चलना है। तो इसके ऊपर ये बेहतर है कि आप लोग स्ट्राइक तो नहीं कर सकते, नए कानून के मुताबिक आप लोग जो है वो बाहर निकल के किसी किस्म की हड़ताल या स्ट्राइक नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग इकट्ठे होके कहीं समलिंग करके कहीं आप इकट्ठे हो जाएं, वहां पे आप जो है एक सिग्नेचर लेके आप फलके सिंह के जो उम्बसमैन है उनको और फलके सिंह की जो उद्वेल है आप उनको लिख सकते हैं कि ये जो कानून है जो हम एक्टिव टैक्सी शोफेर है या वोनमैन है, हमें क्या तकलीफ आता है और इसमें टैक्स पेयर के जो साथ ज्यादा हो रही है डेनमार्क में उसकी वजूहत क्या है। तो इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं, लेकिन क्या हम इकट्ठे हो सकते हैं?
1: पेंशन वाला 8,500 पे गुजारा कर सकता है तो ये 30,000 पे गुजारा नहीं होगा?
0: देखिए जी, जब पेंशन वाला ना उसको 8,000 के साथ उसको बोली यूज से मिलता है, उसको बड़ा कुछ मिलता है अगर वो सही तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज करे। तो यहाँ पे पेंशन वाला जो है वो 3-4,000 करोड़ जो उसकी फ्रॉड है उसके ऊपर वो खर्चा कर सकता है, रह सकता है। मैं खुद रह रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर मैं मियां साहब या कहीं मेरे भाइयों के पास मैं बैठता हूँ तो इनको पता है कि शाह साहब की जेब में इतने पैसे नहीं है, ये पेंशनर है, ये मेरी रिस्पेक्ट करते हैं और मैं इनके लिए दुआ को हूँ कि ये मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अगर मैं चोरी चुकारी करना शुरू कर दूं, इससे असरात जो है वो दूसरे मेरे भाइयों पर बच्चों पर पड़ेंगे जो यहाँ डेनमार्क के अंदर रह रहे हैं। तो लिहाजा बजाय आप बुरा काम करें, आप अच्छाई से रहें और सच बोलें, तो इस सच बोलने से आपको ज्यादा फायदा है।
1: जी शाह साहब, प्रोग्राम यहाँ सब ख़त्म करने से पहले आखिरी जवाब शायद भी दें और आप भी दें, तो चूंकि एक आखिरी सवाल भी कर लें। एक तो मैंगो फेस्टिवल बड़े धूमधाम से जो है वो मार्केट में मौजूद हैं, आ रहे हैं, एक आज कल में काफ़ी प्रोग्राम होंगे, उसके बाद 14 अगस्त
0: भी आ रहे हैं,
1: इस पर भी बात करेंगे, नए जनरल्स बने, 4 स्टार बने, कुछ सुपर सीट, उस पर भी बात करेंगे, कश्मीर पर भी बात करेंगे, आप थोड़ी सी सियासत भी जो है वो जमहूरियत की तरफ भी, दूसरी जमहूरियत की तरफ बढ़ेंगे। जी मियां साहब,
5: मैं असल में जो सच्ची बात है, आप मैं फजर पढ़ के लेटा था तो मैंने ना अभी उठा, आपका मैसेज आया।
1: तो मियां साहब आप क्यों परेशानी में लेटे हैं, अब आप काम सदर नहीं रहे इसलिए?
5: नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने ना 2 बजे ईसा मस्जिद में हमारी मीटिंग है तो जोर के फौरन बाद, तो मैंने वहां पहुंचना है, अभी कोई तैयारी नहीं, अभी तो मैंने नाश्ता नहीं किया, अभी नाश्ता टेबल पर आया तो मैंने, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने मैसेज किया, फिर शाह साहब और शाहिद की बातें सुनकर दिल खुश हुआ। मैं बड़ा शॉर्ट सा, मैं माजरत के साथ, उसके बाद बात हो सकती है, लेकिन ये जो शाह साहब ने अभी, शाहिद ने भी काफी बात कर दी, मैंने भी कर दी, ये सिलसिला इस तरह चलना। वो शाहिद की एक बात जो बिल्कुल मैं सेकंड करता हूँ कि ये ह्यूमंस न्यून का जो कंट्रोल था, जरूरत के मुताबिक जो टैक्सी सिस्टम था और सर्विस देने का जो उनका एक पैमाना उन्होंने रखा था, ड्राइवर को चेक कर करने का, बैलेंस रखने का, वो अब टूट चुका है, वो खत्म हो चुका है, अब 2 नंबरी हो रही है, वायलेशन हो रही है, तरह तरह का तरीकाकार अपना लिया गया, जुबान आती नहीं है, आगे पीछे से लोग इम्पोर्ट हो गए हैं और मार्केट जो है वो ओवर उसमें, यानी के तादाद से टैक्सीज आ गई हैं। ये है शॉर्ट इसका जवाब। बाकी आपने मैंगो फेस्टिवल की कही, मैं 2-3 में मैं गया हूँ और 6 जो अब तक हो चुके हैं और 2-3 अभी और होने जा रहे हैं, अल्लाह ताला इन मैंगो की तादाद बढ़ाता जाए और होम पाकिस्तान में, यानी के बहुत बड़ी, ये मेरे तो इलाका जो है सर्दन पंजाब से मेरा तलक है, वहाँ के मैंगो जो है सारी दुनिया में मशहूर है, तो बड़ा अच्छा लगा कि इतने सारे लोग जो है हर मैंगो फेस्टिवल में आते हैं, जिधर भी हुआ, ब्रॉनबी हो या अर्बसनोड हो, बेलरोप हो, बहुत अच्छा लगा, अच्छी बात है। मैं भी उन लोगों में हूँ कि इंटरटेनमेंट हो, सोशल गैदरिंग हो, प्यार मोहब्बत से एक दूसरे से मिला जाए, एक्सचेंज की जाए अपनी अपनी क्या कहते हैं मसरूफियात, हालात, बात हो, तो ये एक अच्छा साइन है। तो बाकी इंशाल्लाह कश्मीर की जो बात आपने की है, देखें कश्मीर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की शाहराग है और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और उस सिलसिला में जो है अपनी अपनी जगह
1: हुकूमत बनाने जा रही है।
5: देखें वो मैं अब इलेक्शन की बात तो नहीं कर रहा, मैं तो कश्मीरियों की बात कर रहा हूँ जो सफर कर रहे हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर, जिनके साथ जुल्म और ज्यादती हुई है पिछले 77 साल से, और जो सफर कर रहे हैं हर जगह, जो मुश्किल में है, मैं तो उनकी आवाज उठाता आया हूँ पिछले 40-45 साल से, वो ही उठाता रहूंगा। अब 5 अगस्त आ रही है, आपको भी पता, आप इन्वाइट भी होंगे, वो इंशाल्लाह हम तरीके कश्मीर जो है वो दिन मनाने जा रहे हैं। ये आपको पता कि इस दिन स्टेटस जो है हिंदुस्तान ने 370 जो है वो चेंज कर दिया, तो उस सिलसिले में इंशाल्लाह कल फाइनल होगा कि किस जगह, वो मेरी वर्कशॉप में होगा या कहीं किसी और जगह जो है वो इंशाल्लाह एक हम अपने अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ जगेती और हिंदुस्तान की जो करतूतें हरकतें जो दुनिया के सामने आ चुकी हैं उन पर बात करने के लिए और अपना मैसेज देने के लिए इंशाल्लाह एक गैदरिंग होगी। उसके अलावा तो आपको पता ही है, बाकी चीजें अगर इजाजत है तो मैं ये कहूँगा कि 14 अगस्त इंशाल्लाह यौम आजादी का दिन है, बहुत सारे प्रोग्राम हो गए, एम्बेसी में प्रोग्राम होगा मुझे पता है, और उसके बाद इवनिंग में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम पाकिस्तान सोसाइटी कर रही है, स्कॉलोन जो मीटअप हुआ है 9 से 13 जो जगह है उसे, वहां हम बहुत बड़ी गैदरिंग जिसमें इंशाल्लाह पाकिस्तान से मेहमान आ रहे हैं, जिसमें इंटरटेनमेंट भी होगी, जिसमें इंशाल्लाह आप सब होंगे, तो हम मिलकर अपने प्यारे वतन का जो जश्न आजादी का दिन है वो इंशाल्लाह हम मनाएंगे। पाकिस्तान सोसाइटी ने आपको पता हमेशा अपना मरकजी किरदार अदा किया है, तो हम तैयारी उसकी सारी हो चुकी है। अब मेहमान जो है वो पाकिस्तान में वो भी तैयारी में है, और यहाँ हम आपकी दुआओं से आपके
1: हॉल में मनाएंगे या खुली जगह?
5: नहीं जी, हमने इस वक्त जो है यानी कि हमने डिसाइड कर लिया है, क्योंकि वेदर और सारी चीजें जो है वो, और उस वहाँ कुछ कंडीशंस भी हैं, हम हॉल में मनाने जा रहे हैं। वो हॉल जो है वो तकरीबन 1200 बंदे का हॉल है, और वो हमने भी बुक करवाया हुआ था। तो अब हमने हमारी मीटिंग थी, हमारे सदर साहब पाकिस्तान से तशरीफ ले आए हफ्ता पहले, कल हमारी फाइनल मीटिंग थी। तो हमने ये डिसाइड किया है कि हम स्कॉटलैंड में जो हाल है

0: तरह का भी, यानी कि एक टेबल की शक्ल में अगर आप बैठना चाहते हैं फैमिली के साथ, क्योंकि जगह काफी है, तो इंशाल्लाह शाह साहब ये
1: हम
0: आपकी
1: ऐसा
0: दुआओं
1: स्टॉल
0: से।
1: भी लगाएंगे?
0: नहीं जी, स्टॉल जो है वो हम नहीं लगाने जा रहे हैं, क्योंकि स्टॉलों का जो स्टाइल है वो और है, वो 6-7 पहले हो चुके हैं, 2-3 और होंगे। अभी मुझे पता है कि अरबुसनून में ये हमारे चौधरी लियाकत साहब और इनका एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम हो रहा है 8 अगस्त को, तो ये सारे प्रोग्राम तो हमारे हैं ना अपने, ये एक और तरह के हैं। पाकिस्तान सोसाइटी जो है वो, मैं क्या कहता हूँ, मैं वो नहीं कहूंगा शाह साहब ने कल सुना था इस तरह, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, हम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, इस मुआशरे में जिसके अंदर रहते हैं, यहाँ की सूरत हाल
1: तो
0: से
1: मियाँ
0: देखते
1: साहब
0: हैं। हम जो
1: मेहमान खसूसी जो डिसाइड हुए या नहीं?
0: जी बिल्कुल हो गया, मेहमान खुसूसी डिसाइड है, आपको पता चल जाएगा अभी हम सोशल मीडिया पर, तो वो तो शाह साहब ने कह दिया, आपने हमेशा तावन किया, आपने मुझे थोड़ा सा मौका दे दिया, मेरे अपने जहन में नहीं था अभी, तो अभी टाइम तो बहुत है, हम सारी डिटेल जो है सोशल मीडिया पर भी
1: मियाँ
0: आएंगे
1: साहब आपको तो मौका मिलता है, आप हमारे नौजवान सियासतदान हैं।
0: जी। आपने हमेशा मौका दिया और हम इसका भरपूर शुक्रिया भी अदा करते हैं, अपना हक भी समझते हैं, और आप, हम सब मिलकर एक दूसरे का हिस्सा है, और इसी तरह पाकिस्तान हो, कश्मीर हो, डेनमार्क हो, यहाँ का मुआशरा हो, अभी हमने टैक्सी पर आप इतना टाइम दिया है,
1: मियाँ
0: मतलब
1: साहब
0: बसों
1: आपने एक
0: पर आप।
1: बात की है यौम यकजहती कश्मीर की, तो वो आपके दफ्तर में होगा या किसी बार पब्लिक प्लेस पे या एम्बेसी के सामने?
0: देखें 5 तारीख को शाम को 5 बजे प्रोग्राम होगा, अब मैं क्योंकि हम तरीके में हमारे सदर साहब जो है अदील आसी साहब वो ठीक नहीं है, उनका एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, तो इसलिए ये चीजें थोड़ी सी डिले हुई हैं। अभी आपको पता हाल लेने गर्मियों की छुट्टियां थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह बंदोबस्त हो जाएगा, और ये भी
1: चले मियाँ
0: डिटेल
1: साहब
0: भी
1: आपका बहुत शुक्रिया, शायद आप इसमें क्या इजाफा करेंगे?
0: मैं इजाजत चाहता हूँ अब, सॉरी मैं सुनूंगा आपको, लेकिन मैं अब बात नहीं करूंगा, अभी
1: चलें
0: मैं
1: चलें
0: अपना
1: ठीक है
0: बैठकर
1: मियाँ साहब,
0: नाश्ता
1: बड़े
0: करूंगा।
1: आपका मौकफ आ गया मियाँ साहब।
0: थैंक यू सर, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, शाहिद शाह
1: आमीन
0: साहब और आपको और
2: आमीन।
0: सब इसको बहुत
1: शायद आखिरी
0: बहुत
1: बात करें फिर शाह साहब, आप शुक्रिया अदा करें, प्रोग्राम क्लोज करें।
2: जी। अपना राजा साहब, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं कोई?
1: जी जी
2: जी क्या सवाल था आपका, मेरे जहन से निकल गया।
1: इसका मतलब आप थक गए हैं।
2: नहीं, मैं थका नहीं, मैं मियाँ साहब की बातें सुन के मजबूज हो रहा था, तो सारी बात बड़े हैं मेरे से, तो फिर उनकी जब बातों में मैं मजबूज हो गया, इतना ज्यादा मैं अंदर चले गया, फिर आप अब सवाल करें मुझसे।
1: आखिर में आप क्या कहेंगे, जो कुछ ये कुछ बातें हुई हमने सब चीज़ों को कवर करने की कोशिश की, इसको किस तरह देखते हैं?
2: मैं आखिर में सबसे पहले तो ये कहूंगा कि उधर से शुरू करते हैं जहाँ से बात शुरू हुई थी, जो हमारा मेन जो पर्पस था आज का, वो ये था चाकसा वॉनमैन और नई जो है दुल्हन जो आके बैठ गई है,
1: हबस
2: तो
1: मार्केट
2: इसे
1: की
2: मार्केट की दुल्हन जो है वो सजा से जो कि उन्होंने बैठा दी है, और उसके लिए वो दूल्हे ढूंढ रहे हैं, तो वो मैं उसके लिए यही कहूंगा कि इसमें फिर यही कहूंगा कि हमारा अपना कसूर है कहते हैं फॉरनर्स का, कि हम इसके ऊपर बकायदा होमवर्क नहीं कर सके, जबकि मार्केट में के अंदर हमारा होल्ड था एज ए वोनमैन, फिर उसके बाद ड्राइवर आ जाते हैं, सबसे ज्यादा
1: शायद
2: फॉरनर थे।
1: शायद दूल्हे ढूंढे नहीं, दूल्हों के दूल्हा बनने के लिए बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं।
2: ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है, और ये बिल्कुल मैंने इसको खुद देखा है, इसमें कोई शक नहीं है, मैं खुद देख के आया हूँ। जो लोग इस चीज के खिलाफ थे, बार बातें कर रहे थे, वो उधर पहले पहुंचे हुए थे, और उन्होंने लाइनों में लग के कहा, ठीक है ये उनका अपना अपना अपनी सोच है, या किसी को आप बात तो नहीं कर सकते, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ। अब शाह साहब ने भी कहा कि आपकी टैक्सी ब्रांच इसलिए खराब हुई है कि हम कहीं के भी नहीं है, यानी कि हर तरफ हम भागते हैं, हम किसी के नहीं है सगे, तो आपने अपनी ही छाछा ने उनको तबाह किया, खुद ही अपने पैरों से लड़ा मारकर वोन मनी के चक्रों में, और वोन मनी जो अभिशाह साहब ने बताया कि डेनिश लोग, उन्होंने इसको बनाया हुआ था कानून बहुत पुराना, 60 साल पहले, कि 2 से ज्यादा या 1 से ज्यादा, 2 से ज्यादा नहीं बन सकते, जब फॉरनर आने शुरू हो गए, तो उसमें आपने देखा कि सबसे ज्यादा जो बड़े जो वोनमन थे, जो तकाय से लेके नैरो पोर्ट तक उस से

0: वेस्टरपोर्ट तक, ये सारे, और यहाँ उधर क्या कहते हैं पोवा के से लेके, ये सब याद है, ये सब पता है शाह साहब को, और ये सारे वोमेन डैनिश थे जिनकी 40-40 गाड़ियां, 30-30 गाड़ियां, और टैक्सो मोटर होती थी उसके अंदर भी, अलेवन मुझे नाम बोल गया इस वोमेन का डैनिश का, उसकी भी 60-65 गाड़ियां होती थी और उस जमाने में। तो ये फिर उसके बाद हमें चांस मिला, हमने, मैं यही बताऊंगा, मेरी बात को फॉलो नहीं कर रहे, हमने कोई स्टैक यानी कि जो ताकतवर, हमने कोई ऐसी फाइनिंग नहीं बनाई जिसमें हम ये आगे जाके, जिसमें वकील होता है आपका, जिसमें आपका, आपने बेचारे पैसे देते हैं, और वो जो काम जब आप करें तो फिर वो यहाँ पर आपने काम कानून के साथ करना होता है, और ये लोग भी कानून के साथ करते हैं, इनके, इनको पता है हर चीज, ये कानून के अंदर ही, जो इनके ये लॉज है ना, लॉज उनके अंदर ही, जैसे कहते हैं स्कैट होल, इनके अंदर ही क्या कहते हैं होल है, उनके अंदर से आप ढूंढते हैं चीजें ऐसी जो आपको फिर आपको मिल जाती है, और वो वकील ढूंढता है। तो वो मैं कह रहा हूँ कि हमने कोई 70-90% इसमें फॉरनर वोमेन मिल के नहीं कोई बनाई हमने, इसमें हम दूर दूर रहे हैं, तो ये फिर इसको आपको हमें आज भुगतना पड़ा है। और आप देखें, आपने खुद ही बताया कि दूल्हे भाग रहे हैं उधर जाने के लिए, कोई ऊबर चला रहा है, ऊबर में भी राम नहीं है, ऊबर चलाते हुए उधर भाग रहे हैं कि यहाँ पर हम आ जाएं, ये अपने, मैं फॉरनर्स की बात कर रहा हूँ, इसमें मैं सारे अपने मरे भी आ जाते हैं, पक्ष नहीं दूसरे भी आ जाते हैं। तो बाकी रह गई कश्मीर की बात आपने की, कश्मीर से पहले कश्मीर तो है, आप देखें पाकिस्तान के हालात, मुआशी देख लें पूरे पाकिस्तान के, किधर हैं, किधर चले गए हैं इस 4 सालों में या 78 सालों में, कहीं नहीं बढ़े, हम पूरी दुनिया से उधार मांग रहे हैं, ये तो बात टकी छुपी नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, ये तो आपके सामने है, आपने खुद ही देखा है मीडिया पर, तो मीडिया में ये बातें चल रही हैं, आपको भी पता है, आप भी कहते हैं मीडिया के अंदर है, तो उधार के साथ आप कितनी देर तक चलेंगे, या किसी के आगे हाथ जोड़ के कितनी देर तक चलेंगे, 28 करोड़ की वाम है, एक गयूर वाम है, आपके सूबे हैं, आपकी 7-8 लाख की फौज है, तो हमें किस काम में लगा दिया है, हमारे इदारों को किस काम में लगा दिया इन सियासतदानों ने, जिसकी वजह से उनको वायलेशन करनी पड़ी है इन इन क्या कहते हैं बदबख्तों की वजह से। अब अभी आपने एक सवाल किया, मैं उसका सवाल का जवाब दे देता हूँ, आपने कहा कि कश्मीर के अंदर नवाज शरीफ को वोट मिलेगा या वो, यार भाई एक बंदा 45 साल से लगा हुआ है करने, अभी तक यार 80 साल का हो गया, तो उसको तो भाई छोड़ देना चाहिए शर्म के मारे कि भाई मेरे से नहीं हो सकता, मैंने 45 साल से, अब वो यही कहे आके बार बार के मुझे एक मौका और दे दिया जाए, मैं पाकिस्तान को पेरिस बना दूंगा, हर 4-5 साल बाद, अभी भाई साहब उनके हैं वो वजीर आजम है पिछले 3-4 साल से, तो पाकिस्तान की हालत देख लें, पाकिस्तान के अंदर महंगाई देख लें, पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमत देख लें, ये यूरोप से भी ज्यादा है, एशिया से भी ज्यादा है, आप जाके देख लें, आपको सारी फिगर मिल जाएंगे अब गूगल में, एशिया की, एशिया में पहले तो जंग का बहाना था, ये नहीं जंग का बहाना है, जंग 3-4 माह पहले शुरू हुई, जंग से पहले भी आपके तेल के यही हालात थे, आप तेल से लेके आप डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तान रुपये की कदर देख लें, सारा कुछ ही देख लें, इसको महंगाई कहते हैं, पाकिस्तान में जाए जाके रह के जाके देखेंगे आप, यहाँ से करोन लेके जाएंगे आपका 1,000 करोन जो है वो कैसे खत्म होता है, जो रुपए में है 40-50 हज़ार या 60 हज़ार वो एक दिन में या 2 दिन में खत्म आपका हो जाएगा, इतनी सख्त महंगाई है और लोग वहां पर कैसे गुजारा कर रहे हैं ये तो वही जानता है, आपकी क्या कहते हैं मार्केट जो है हर किस्म की स्टॉक है, आपकी क्या कहते हैं ये मकान बिजनेस जो जिसके कहते हैं ये कारोबारी जो जिसमें ये दुकानें बेचने वाले, मकान बेचने वाले, कोठियां बेचने वाले, ये स्टॉक है, बिल्कुल हर चीज वहां पर स्टॉक हो गई हुई है। हाँ ये है कि सर नीचे करके अगर कोई कौम बेशर्मों की तरह चल रही है वो फिर उनका लिया फर्ज है, वो सर नीचे नीचे करके झुका के तो कह रहे हैं जी सी एन ए जी खुश हैं, फिर उस कौम का जो है ना अल्लाह अल्लाह
1: आपको मौकूफ आ गया। शाह साहब शायद ने कह दिया कि जब के पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम है, अब जो है यूरोप भी तारीफ करता है, रशिया भी तारीफ करता है, अमेरिका भी तारीफ करता है, ईरान भी तारीफ करता है, तो दुनिया में नाम तो है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो कजी खामियां तो रहती रहती हैं, आते रहते हैं, हालात तब्दील होते रहते हैं, लेकिन हर बहुत जो बात जो है वो गौर तलब है। शाह साहब आखिर में अपना कमेंट्स भी दें और प्रोग्राम को क्लोज भी करें।
2: जी बिल्कुल, दुनिया सब जानती है कि जो करप्शन पाकिस्तान में है उसके वारिस हम यूरोप में भी बन गए हैं, दुनिया के जिस मुल्क में भी रहते हैं वहां पे हम ये काम दिखाते हैं। मैं अपने अल्फाज में ये कहूंगा कि पाकिस्तान जो है दुनिया के चंद चंद उन ममालिक में शामिल है जो कि एशिया में तो सेकंड नंबर पे रिचेस्ट कंट्री है। अगर कोई मेरी बात से मुतफिक नहीं तो ये उसका अपना जहन है। अभी रिसेंटली मेरे मोहल्ले में एक बंदे ने मकान खरीदा है 4.5 करोड़ का, और उसने वो मोहल्ले के अंदर मकान जो खरीदा है वो 4.5 करोड़ उसने कैश पैसे दिए हैं। क्या डेनमार्क के अंदर हम लोग जो रह रहे हैं, क्या हमारे कोई ये साबित कर दे, कोई साबित कर दे कि उसने जिस वक्त का वो डेनमार्क आया अब तक उसने अपना मकान जो है वो बैंक में किसी सूरत में रहन नहीं रखा। भाई हम किस्तें पे कर रहे हैं, फ्लैटों की किस्तें पे कर रहे हैं, गाड़ियां लेते हैं वो किस्तों पे लेते हैं। डेनमार्क के अंदर मेरा ख्याल में 8-9% लोग ऐसे होंगे जिनको अबाई मकान मिले हुए हैं या जिन्होंने अपने कैश लेके। यहाँ तो जो मिलियार्ड के 10-12-12-20-20-40-40 मिलियन करोड़ के जो मकान लेते हैं वो भी बैंक से लोन लेते हैं। तो पाकिस्तान को गरीब बनाया है लोगों ने, हमारे सियासी लोगों ने। इसी तरीके से यहाँ के डेनमार्क के हालात को जो चेंज किया गया है और हम लोगों पे जो अब मुसीबत आई है ये टैक्सी ब्रांच में और ये जो खियोस्क ब्रांच के अंदर और दूसरी जगह, ये हमारे सियासतदानों की नाहेली की वजह से आया। अगर ये बताते कम्यूनों को, मैं बताते कि यहाँ पे कितने फॉरनर्स हैं, वो कौन कौन सी जॉब करते हैं, उसके ऊपर डिबेट कराते तो ये इस तरीके के पचाल कभी भी यहाँ पे ना आते। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब हम डेनमार्क में आए थे तो यहाँ पे 52,000 बंदा जो था, मेरे पास प्रूफ है, 1970 में 52,000 के करीब आदमी जो था वो आबेसलूस था डेनमार्क के अंदर। इन्होंने हमें क्यों बुलाया, इसकी एक रेजा रीजन है क्योंकि बीबीए भी सुनती है, वो मैं नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पे हमें इन्होंने बुलाया तो हम लोग आए, हमने यहाँ पे अपनी उस वक्त जो भी इन्वेस्टमेंट की, लेकिन हमने मेहनत की दिन रात 20-20 घंटे 22-22 घंटे इधर काम किया, फैक्ट्रियों में सोए और इस मुल्क को तरक्की में इसका हाथ बटाया। सबसे बड़ी हमारे से ये नलायकी हुई कि हम डिपेंड करना शुरू कर दिए अपने यंगस्टर्स पे जिन्होंने स्कूल में बेहतरीन डेनिश जबान सीख ली लेकिन उनको कानून का नहीं पता था। हमने उनको पाकिस्तानी सियासत सिखला दी कि ये फलाना जन्म का, ये फलाना गुजरात का, ये फलाना पिंडी का, इसकी मदद नहीं, ये करनी है वो करनी है। उससे पहले तो हम सब भाई भाई थे। मुझे 100% याद है अपना कि जब हम स्टेशन पे अपनी पोस्ट लेने जाते थे खत पढ़ने के लिए सैटरडे संडे, तो वहां पे पोस्ट ऑफिस रहते थे तो वहां लोग कहते थे यार ये खत पढ़ दो और इसके साथ एक लिख भी दो ताकि यहीं से, तो इतनी मोहब्बत थी। आज हम एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे से बात करने मिलेंगे वक्ती तौर पर भाई भाई, उसके बाद एक दूसरे से बिल्कुल देखना भी पसंद नहीं करना, उनका नाम सुनना पसंद नहीं करते। ये चीजें जो है ये हमने यहाँ, हमें सियासतदानों को चाहिए था जो सियासत करते हैं कि अवेयरनेस दें। मैं आज भी ये हल्फन ये बात कहता हूँ कि आज भी अगर हम 400-500 इतने हजार टैक्सी ड्राइवर हैं, अगर 400-500 टैक्सी ड्राइवर आज भी इकट्ठे हो जाए और ये सिग्नेचर कर दे तो आज भी जो है बगैर डेमोन्स्ट्रेशन किए, बगैर किसी चीज के बोलने वाले बच्चे हमसे कानून सीखे, यहाँ का जो आईन है उसकी खिलाफ वर्दी हो रही है और ये जो है टैक्सी का कानून दोबारा चेंज करने पे मजबूर कर सकते हैं गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट करेगी क्यों कि सबसे पहले मैं शायद सुन रहा है, मियां साहब भी सुन रहे हैं, आपको ये बता दूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऊपर को बैन किया तो फिर किस तरीके से सांसददान सुप्रीम कोर्ट को लॉ को वायोलेशन कर रहे हैं, ये चीजें हमने हाईलाइट करनी है। इन चीजों को सामने लेके आएंगे तो ये खुद बहुत जो है ये मजबूर हो जाएंगे क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास भविष्य होनी चाहिए जब तक आपके पास भविष्य नहीं आप बात नहीं कर सकते। तो मैं ये चाहता हूँ कि यंगस्टर्स आए हमसे बात करें, हम उनको भविष्य देते हैं, उनको इस बात पे कायल करते हैं कि ये देखें ये आइन है और ये लॉ फौसले है और ये फौसले है, आप लॉ फौसले को आज भी खत्म कर सकते हैं। लेकिन जब मेरे पीछे 10 बंदे नहीं खड़े हो सकते तो मैं कैसे जाके अकेला जो है इस कानून के ऊपर लड़ाई करूं। ये तो चाहिए इन लोगों को जिनको अब मसला है। अब मियां साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि लोगों को मसाइल आ रहे हैं, ड्राइवरों के मसाइल। अब एक आदमी को टूर नहीं मिलता तो वो तो अपनी गाड़ी छोड़ के वो कहेगा मैं तो ये जाके जो 30,000 वाली है जब फिक्स हो जाता हूँ तो मुझे तो 30,000-32,000 यहाँ से मिलेगा, तो चलो मैं अपनी फैमिली को तो सपोर्ट कर रहा हूँ। तो ये सबसे बड़ी चीज जो है आपको एक चीज जेनशिन करनी है कि अगर हमने इस मुल्क के अंदर रहना है तो हमें इस मुल्क की जो कानूनी होल्स हैं जो यहाँ के उसको हमें सीखना पड़ेगा। मैं आपको ये बता दूं, वकीलों की बात हो रही है, वकील सारे हर कानून को नहीं समझते। आपको वो जो है वो इनके जो पार्लियामेंट के जो फलके थिंग के लॉज हैं उसको पढ़ते हैं, वो आइन को नहीं पढ़ते। और जब तक आप आइन को नहीं पढ़ेंगे आप लॉ के ऊपर बात नहीं कर सकते। तो लिहाजा हमें ये जो गैदरिंग है ये मस्ट करनी पड़ेगी। अगर आप जो है टैक्सियों को बचाना पड़ेगा, नहीं तो कल को मैं देख रहा हूँ कि ये गर्मियों की छुट्टियों के बाद क्या होगा जब ये 600 नई टैक्सी सड़क पे आ जाएगी। हशर क्या होगा कि वोनमैन अपना 30,000-35,000-40,000 का खर्चा जो है गाड़ी का वो नहीं दे सकेंगे और वो कहाँ से कवर करेंगे। बैंक उनको लोन नहीं देगा, दूसरी चीजों पर उनको प्रॉब्लम होगी तो वो क्या करेंगे, वो तो बैंकरप्ट होंगे। मैंने खुद कहा अगले दिन कि मैंने 1,00,000 करोड़ फियर गांस्यू को दे के, क्योंकि मैं बीमार हो गया था तो मैंने अपनी सेल्स केयर को, मेरे वकील ने कहा था बैंकरप्ट हो जाओ 5 साल तक कोई, मैंने कहा मैं नहीं होना चाहता बैंकरप्ट, मैं आज तक नहीं बैंकरप्ट हुआ, मैं अब क्यों। तो मैंने 1,00,000 उनको कैश दे के बैंक के थ्रू से तो मैंने अपने आप को फ्री किया। 62,000 मुझे गाड़ी का घाटा नुकसान हुआ, मैंने वो भी पे किया। बात असल में ये है कि जब लोगों को गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी लोगों की, लोग कहाँ से इनकम लाएंगे। इस मसले के ऊपर बात होनी चाहिए, इनको ये बताना चाहिए कि आज आप 5-5-6 लाख की 1-1 मिलियन की इलेक्ट्रिक गाड़ी के अंदर आप भाग रहे हैं, खुदा ना हादसा कल को आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है।
1: बात आपकी बात में माजत के साथ बोल रहा हूँ शाह साहब, कभी खिलाड़ी भी फेल हुआ, खिलाड़ी कभी एक क्लब में बिक जाता है कभी दूसरी क्लब में बिक जाता है, खेलने वाला खिलाड़ी कभी नुकसान में नहीं जाता।
2: जी वो आपकी बात सही है, पर ये खिलाड़ी नहीं है, हम लोग जो टैक्सी वॉनमैन है या टैक्सी ड्राइवर है हम लालच की बेस पे काम करते हैं कि हमें टूर मिले, हम काम करें, हमें ज्यादा से पैसा मिले, हमने पाकिस्तान का भी कल्चर रखना है, हमने यहाँ का भी कल्चर रखना है, हमने बच्चों की शादियां करानी है, उनको इतने इतने लाखों के जहेज देने हैं। तो ये सारा लालच जो हमारे अंदर भरा है इसके ऊपर हम दिन रात मेहनत करते हैं और उस मेहनत से जो है जो कमाई है उसका अब अजाब हमारे पे आ रहा है तो हम क्या करेंगे। जिन्होंने वेले लिए हुए हैं, रायका हाउस लिए हुए हैं, सब कुछ देखे कितने लोग, ये शायद तुमको पता है कितने लोग मूव हो गए हैं स्वीडन के अंदर, कितने लोग चले गए हैं जर्मनी के अंदर। मैं क्यों अपने बच्चों को यहाँ लेके आऊँ, मुझे नहीं रोका इन्होंने क्योंकि मैं कानून को जानता हूँ, मैं कानून के लॉज होल्स को जानता हूँ। ये चीजें जो है जब हम इनको कहते हैं कि आओ बैठो बात करो, ये कहते हैं नहीं जी हमारे बच्चे बहुत पढ़ गए हैं, और जी मेरे बच्चे भी PhD कर गए, मेरे बच्चे भी बड़े पढ़े हुए हैं, लेकिन मुझे जब मैं उनसे कोई मदद मांगता हूँ तो वो कहते हैं फा लवे हमें, हमारे पास टाइम नहीं है। तो वो हमें क्या बताएंगे जब उनको खुद उन्होंने कानून नहीं पढ़ा, उनको पता ही नहीं है कानून एक अलग चीज है और आयन एक अलग चीज है। यहाँ का रिटर्न आयन है वो आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, शायद को भी उतनी प्रोटेक्शन है, मियां मनीर साहब को भी उतनी प्रोटेक्शन है, मुझे भी उतनी प्रोटेक्शन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी उतनी प्रोटेक्शन है, हमारे यहाँ के किंग को भी उतनी प्रोटेक्शन है, कोई फोर्स केस पेंडिंग नहीं। लेकिन जो आइन है, जो लॉ है, जो इन्होंने कानून बनाए हैं उसमें फोर्स केस पेंडिंग है, ये कैसा आइन रखा हुआ इन्होंने, या ये आइन को खत्म कर दे और सारे लॉ फोर्स रहे इंग्लैंड की तरह ले आए कि जो पार्लियामेंट विल चेक करती है हम उसको मानेंगे, तो फिर आयन रखने की जरूरत नहीं है। तो इस चीज को हमने चैलेंज करना है कि क्या आप अपने आयन के को मुकद्दस समझते हैं या आप जो लॉ फोर्स बना रहे हैं इसको मुकद्दस समझते हैं। इसके लिए बहुत बड़ी डिबेट होनी चाहिए। जैसे आपको पता है कि जब पार्लियामेंट के अंदर यहाँ पे इन्होंने पोलराइजेशन पे बात की थी तो मैंने कैसे इनका मसाले दे दे के इनका मुंह बंद किया था और वो पोलराइजेशन उधर ही खत्म हो गई थी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर आप डिबेट कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, आपके बात में वजन होना चाहिए। राजा साहब,
0: शाह साहब मैं एक बात ऐड कर दूं अगर इजाजत हो आपकी।
2: जी जी जी जी बिल्कुल।
0: शाह साहब आपने बड़ी अच्छी बातें की, लेकिन आप भी हमारे बुजुर्ग हैं जिसे कहते हैं ना अपने स्टाइल में ये हमारे सियालकोट के कि जी असि भी भोले बादशाह। शाह साहब ये एक सोची समझी स्कीम, मैं इसको साजिश नहीं कहूंगा, साजिश एक सख्त हो जाएगा लफज। मैं हालांकि
2: मैं
0: साजिश ही कहना चाहता था, लेकिन मैं प्रोग्राम के अंदर हूँ, मैं एक वो कहूंगा कि सोची समझी स्कीम के तहत ये सारा करवाया गया है आप लोगों को, हमें वोन मनों को खत्म करने के लिए इस मार्केट से, बिल्कुल ये अपने कंट्रोल करने के लिए। डैनिश खुद कंट्रोल नहीं थे कर सकते क्योंकि वो टैक्सी से निकल गए थे, उनके यंग बच्चा कोई टैक्सी में नहीं आ रहा था, वो चलाना नहीं चाहता था, वो आया ही नहीं है। अगर वो आता तो उन्होंने उसके जरिए फिर खुद ही करना था कंट्रोल डैनिश टैक्सी, लेकिन उन्होंने बाहर से फर्मे ला के ये इतनी नफरत करते हैं आपसे, ये आपको समझ नहीं अब आ रही, आपको सब कुछ समझ आ गई है। हमारी यंग जनरेशन को भी ये समझ आ जानी चाहिए, जो तीसरी चौथी है ये आपसे प्यार नहीं करते, हालांकि आपने इसको कबूल किया है इनको, हम यहाँ पर रहते हैं, हमने यहाँ टैक्स दिया है 60 सालों से, लेकिन इनको ये आनी चाहिए कि टैक्स दे के कारोबार का उतना ही मौके फराहम करने चाहिए जितने आप डैनिश जो एक थे डैनिश उनको करते हैं। हमें आप डैनिश भी कहते हैं लेकिन हमारे साथ आप ज्यादती करते हैं।
1: शायद अपने खिलाड़ी जब किसी क्लबों में बिक जाते हैं तो फिर हालात ऐसे ही होते हैं ना।
0: आपके आपका कहने का मतलब है कि मीर जाफर तो राजा साहब हमेशा हमारे सफों के अंदर पाए गए हैं, ये तो उसमें कोई दो राय नहीं है, जिसकी वजह से हम हमेशा से नुकसान उठा रहे हैं हर जगह से, हर महाज पर, खाली सियासी नहीं है, दूसरे ये जो महाज अभी इसका जिक्र कर रहे हैं, ये जो एक कारोबार है ना, एक आपका काम का अड्डा है, इधर भी आप मार खा गए हैं।
2: और शायद आपको मैं एक आपकी बात में से बात कर रहा हूँ, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि जो आपने बात की है ये बिल्कुल सही है। मैं आपको एक बात बताऊं कि 87 के अंदर हमारे एक वॉनमैन थे, तो उनके बेटे ने इतनी तेजी से मर्सिडीज गाड़ी को जाके तो कांग्रेस वाले के जो बीच में चौक था ना उसके अंदर जाके गाड़ी मारी, तो उन्होंने उसको पूछा तो वो कहने लगा मैं तो गिमनेजियम में पढ़ता हूँ, तो उन्होंने कहा ये गाड़ी कहता मेरे बाप की है, वो फोरमैन अपना वो वॉनमैन है। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो जब उन्होंने बाप को कहा कि भाई तुमने ये मर्सिडीज कैसे रख ली है, तो फिर उन्होंने देखा कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं और इनके बाप की इतनी इनकम भी नहीं है, ये शो भी नहीं इतनी टैक्स में कर रहे, तो उन्होंने ये सख्तियां वहां से शुरू की। फिर कुछ हमारे अपने लोग भी थे, मैं नाम लेता हूँ, हमारी ये अपना इसी प्रोग्राम के अंदर उसने खुद एक्सेप्ट किया था, यहाँ पे हमारी एक लुबना लाही हमारी काउंसलर होती थी, उसने जाके ये बकायदा ह्यूमन नेमर के अंदर मेरे पास प्रूफ है, उसने कहा कि इनकी वॉनमैनशिप बंद करे, ये सबसे ज्यादा क्राइम कर रहे, ये सबसे ज्यादा पैसा खा रहे, तो वहां पे तो चार आदमियों ने,
1: अगर प्रूफ है तो बात करें, अगर प्रूफ नहीं है चूंकि वो मौजूद नहीं,
2: बिल्कुल प्रूफ है, मैंने आपके सामने लुबना ने ये कहा था कि ये मैंने ह्यूमन नेमर में ये बात की थी कि इसको खत्म करना चाहिए, तो मैंने उसको कहा था कि तुम अकेली नहीं थी, उस वक्त चार आदमी थे, तो उसने कहा कि प्रूफ, मैंने कहा मेरे पास है, वो टाइमिंग है मेरे पास, तो वो खामोश होगी। तो ये आपके पास रिकॉर्डेड प्रोग्राम है और मैं कभी ऐसी बात नहीं करता जिसका मेरे पास सबूत ना हो, और ये हकीकत है, और ये चीजें जो हुई इसकी वजूहात जो थी वो सबके सामने आ रही है।
1: तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलते हैं।
3: आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामने नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। अदनान अमीन अली और सैयद तुकीर असर बुखारी शाह साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, दोनों को खुश आमदीद कहते हैं। शाह साहब, मौसम तो बड़ा अच्छा है, धूप निकली हुई है और बादल भी तो नहीं, आज जो तो साफ मौसम है, हवा भी चल रही है, और आप क्या कहेंगे मौसमियात बीमारियों के मुतालिक, मौसमी बीमारियां?
2: बिल्कुल आपने सही बात फरमाई है कि मौसम आज गर्म है, आज और आज 28 के करीब गर्मी है, और कल भी जो है वो फोक थी वाम, जिसको हम कहते हैं ना पड़ास वाली, पंजाबी में पड़ास वाली वो पड़ रही है, और इसके साथ आपने देखा होगा कि बाहर वो जो कीड़े होते हैं उनको भी पर लगे हैं, तो ये उसी वक्त निकलते हैं जब बारिश का मौसम हो या फोकती हिल बहुत ज्यादा हो या जिसको हम कहते हैं पड़ास का मौसम।
1: किस कीड़ों की बात करते हैं, सियासी कीड़ों की बात करें या नॉर्मल कीड़ों की?
2: ये नॉर्मल कीड़ों की, सियासी कीड़े तो सारे सोए हुए हैं, तो ये नॉर्मल कीड़े जो है उनको पर लगे हैं और वो बेचारे को एक या ज्यादा से ज्यादा दो दिन उनकी जिंदगी होती है और वो फिर चले जाते हैं।
1: अदनान, आपने शाह साहब की बात सुनी, आप क्या कहेंगे? शाह साहब जरा पूछिएगा अदनान के, क्या सियासी खबरें हैं, क्या हो रहा है शहर में?
2: देखिए जी, मैं सवाल रखता हूँ अदनान के सामने कि अदनान, ये जो इस वक्त वारदात हो रही है, क्रिमिनल वारदात हो रही है, और इसके अंदर सबसे ज्यादा जो है अगर कोई मुसलमान करता है तो वो इस्लामिस्ट और मुसलमान का नाम लिखा जाता है, लेकिन अगर कोई यूक्रेन का या कोई बाहर के यूरोपियन ममालिक का बंदा क्राइम करता है तो उसके नाम के साथ कुछ नहीं लिखा जाता। तो आजकल ये जो हमारे बच्चे हैं जो 20 से 18, 19, 20, 21 साल के, इनको आप क्या समझाएंगे कि वो किस तरीके से अपने आप को सेफ करें, ताकि ये जो इन्होंने अब पार्लियामेंट के अंदर जो बहस जारी है जिसके ऊपर वो कह रहे हैं कि इन क्रिमिनल्स को जो है और इनकी फैमिलीज को मुल्क बदर करने का कानून बनाया जाए, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे?
3: शाह साहब, इस कानून के बाद मैं यही कहूंगा कि इंसान को ये देखना चाहिए कि बैकग्राउंड क्या होता है। एग्जाम्पल, जैसे आपको पता होगा कि 90s के अंदर, 90s के अंदर भी एक कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी डेनमार्क के अंदर, जो यूरोपों की चल रही थी, जिसके अंदर आप देखते हैं कि पता नहीं क्या क्या मारा गया था उस वक्त भी। तो इन चीजों को मिक्स ऑफ नहीं करना चाहिए। अब ये डिबेट चली है जो बर्लिन में हुआ है, जर्मनी में हुआ है इंसिडेंट वीकेंड में, उससे आप एक बात देखें कि कुछ दिन पहले ही, 2-4 दिन पहले ही एक इंसिडेंट हुआ था नॉर्वे के अंदर, टोमटम पछली पे, तो वो भी तो एक गोरा था ना, तो उसके लिए मसला ये पड़ा है कि कुछ लोगों ने ना उस दोनों चीजों के बारे में बात की है कि देखें आप बहुत जल्दी डिबेट ले जाते हैं इस्लाम के बारे में और इस्लामिस्ट के बारे में, मगर ये पहले देखा करें कि किस वजह से उसने ये किया है और उसने क्यों ये अटैक किया है। ये जो जर्मनी में हुआ तो गलत है, मगर हर चीज को मिक्स ऑफ नहीं करना चाहिए, हर चीज को एक पॉइंट से देखना चाहिए और एक वेरिए से देखना चाहिए। जो हमारे यंगस्टर यहाँ आगे आ रहे हैं और जो प्रॉपर्टी सियासत में आएंगे, उनको ये स्टडी करना चाहिए कि कौन कौन सी कॉन्फ्लिक्ट्स पहले रही हुई हैं। 80s में भी आप देखें रॉको की लड़ाई थी, जिसके अंदर बैंडिटर्स कहते हैं बुल स्ट्रीट और टेंडर्स की लड़ाई हुई थी, फिर 90s में लड़ाई हुई थी जिसके अंदर क्या कहते हैं वंस अगेन हुई थी रॉको की लड़ाई, टेंडर्स और बैंडिटर्स की, उसमें भी एक ही बंदा शामिल था जिसका नाम था जिनके, जिसने 1984 में भी एक बंदा मारा था, और 90s की कॉन्फ्लिक्ट में भी बोल था। तो आज एक बंदे ने उसके बारे में आर्टिकल भी लिखा है और क्या कहते हैं उस पे कॉमर्स भी आ रहे हैं कि बंदा हर चीज को मिक्स कर देता है और बंदे को चीज मिक्स नहीं करनी चाहिए। ऑब्वियसली مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب یانگسٹر کرائم کرتے ہیں اور یانگسٹر یہ چیزیں کرتے ہیں تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو کمیونٹیز ہیں نا ان کو اس کو کنڈیم تو کرنا چاہیے مگر اس کے اوپر ویک اپ بھی کرنا چاہیے کہ اس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ اس چیز کو ہم بہتر کر سکتے ہیں.
2: عدنان سوال یہ ہے کہ ہماری کمیونٹی کے جو لیڈران ہیں, ہماری کمیونٹی کے جو اگزامپل کلچرل سینٹرز میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ان یانگسٹر کو سیدھے رستے پہ دکھلانا ہے, وہ تو اس پہ بات نہیں کرتے. وہ تو کوئی ایسے تجربہ کار افارنگ لوگوں کو سامنے بلا کر تو اس کے اوپر وہ بات نہیں کرتے. وہ لوگوں کو یہ نہیں سمجھاتے کہ آپ نے کس طریقے سے یہاں کے قانون سے بچنا ہے, کس طریقے سے آپ نے بات کرنی ہے. یعنی کہ ہمارے اندر وال جو ہے وہ بہت زیادہ آ گیا, بہت زیادہ غصہ ہمیں آ گیا ہے. اس کی وجوہات جو ہیں اس کی بیک گراؤنڈ میں سمجھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ بھائی لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ اتنا شدید غصہ کیوں ہو جاتا ہے کہ یہ گھروں سے چھری اور چاقو اٹھا کر چلے جاتے ہیں لڑائی کرنے کے لیے, اور پھر جاتے بھی اس جگہ پہ ہیں جہاں پہ عام پبلک ہوتی ہے.
3: شاہ صاحب دیکھیں, میں سب سے پہلے کہوں گا مجھے پتا ہے اس بات پہ لوگوں کو پسند نہیں آتا. ہم نے ایک کانفرنس میں تھے کچھ دیر پہلے, کیونکہ میں خود دو تین دنوں سے بیمار تھا اور آج بھی مجھے ایک قبضہ لگا ہوا ہے, چیک اپ ہو رہا ہے, تو اس لیے میں نے اتنا یہ کیا کہتے ہیں انفارچونیٹلی بیلین کا نہیں دیکھ سکا. مگر میں نے یہ دیکھا ہے کہ پرابلم اس میں دو بھی ہیں کہ ہم لوگ, میں اس جیسے آپ کو بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں ونس اگین, میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہتا اور کسی کو کہنا نہیں چاہتا, اور کوئی انسان غصہ نہ کرے اس بات کا. اس کے اندر دو پہلو, ایک تو یہ پہلو ہے کہ کچھ والدین جو ہوتے ہیں وہ بچوں کو روکتے نہیں ہیں, جب بچوں کو کمپلینٹ بھی آئیں بچوں کو بتایا بھی جائے وہ اس ڈائریکشن پہ ہیں تو وہ مانتے نہیں ہیں. میں آپ کو ایک دو منٹ آپ مجھے دینا, میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. ایک ہمارا ہی ہے, یہ ایپیسوڈ میں ہی تھا, ڈنمارک میں واقعہ تھا. وہ بچہ آج ریلیزڈ ہو گیا ہوگا ڈنمارک سے, اس کو باہر نکال دیا گیا ہوگا. میں آپ کو بات بتاؤں, میرے سامنے وہ گاڑی لے کے چوری کر کے رہتے تھے, وہ اس علاقے میں گاڑی لے کے چوری کر کے آ گیا. ایک بندے نے اس کی امی کو فون کر کے کہا کہ تمہارا بچہ گاڑی چوری کر کے لے آیا ہے. آپ امیجن نہیں کر سکتی, اس کی امی اس کے گھر لڑنے چلی گئیں اس صرف کہ وہ اپنے بچے کو روک. اس کے کانسیکوینسز کیا ہوئے, کچھ سالوں کے بعد اس نے بہت بڑا واقعہ کر دیا. کیا ہوا, وہ الوسٹ ہو گیا. آج وہ اس کی امی کہتی ہیں کہ میں اس وقت بات سن لیتی تو میرا بچہ الوسٹ نہ ہوتا. تو میں نے اس سے یہی اس نے آنٹی کو کہا, میں نے کہا جب ہم لوگ آپ کو سمجھاتے تھے تو آپ بات نہیں تھے سنتے. آپ جب بات نہیں سنیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کانسیکوینسز کیا ہیں, تو بچے نے تو باہر ہی جانا ہے. آپ یہ آپ کو پتا ہوگا کہ ٹاسٹوپ میں جنوری میں ایک کیس ہوئے تھے جہاں پہ بچوں نے ایک دوسرے کو مارا تھا, نیچے ہوا تھا. وہ 16 سال کا لڑکا ہے, اس کو بھی ریلیز کر دیا ہوا. اور اس کے والدین کی جو ایڈوائزر تھے اور جو وہ ایڈوائزنگ ٹیم تھی ان کا مجھے پتا تھا. اس نے کہا ہم ماں باپ کو جا کے جب بتاتے تھے کہ ہماری ہیلپ کرو اپنے بچے کو کنٹرول کرنے میں یہ کرنے میں, کہتا ہے وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتی تھی. تو اس کے اندر یہ بنتا ہے کہ جب کوئی بندہ آپ کے پاس آتا ہے آپ کو کرائم کرانے کی چیز بتاتا ہے تو آپ کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے. اب ہمیں دلنا پتا ہے کہ چوستوں بھول کر ہمیں کیا ہو رہا ہے, لوگوں کو بھی پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, مگر پرابلم یہ ہے کہ جن کی کچھ لوگوں کے جو انوالومنٹ ہے وہ اس کو وہ سیریس لے ہی نہیں رہے. جب ان نے سیریس نہیں لیا تو آپ دیکھیں کہ چوستوں بھول کر ہمیں رات کو جانا ہو تو بندے کو دیکھ کے جانا پڑتا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے, وہاں کیا ہو رہا ہے, یہاں کیا نہیں ہو رہا, وہاں کیا ہو رہا ہے, کیونکہ ایک ماحول وہ غلط بن گیا. اور جب وہ ماحول ہی غلط بن جائے تو بندہ اس کو,
1: تو پھر حالات ٹھیک نہیں ہوتے, قانون حرکت میں ہوتا ہے. کوئی نوجوانوں کے بارے میں کوئی لیڈر بھی تو نہیں بولتا نا کہ نوجوانوں کو سمجھائے, نوجوانوں کے بارے میں بات کرے. خاموشی سے باتیں ہوتی ہیں. ہمیں مجیب الرحمان قریشی صاحب, جن کا تعلق ایس ایف سے ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈنمارک کے صدر بھی ہیں, مجیب صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں.
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم رایا صاحب اور میرے بڑے پیارے بھائی توقیر شاہ صاحب اور برخوردار عدنان صاحب اور تمام سننے والوں کو السلام علیکم. میں نے 10 منٹ پہلے آپ کو جوائن کیا ہے, آپ کو فون جب آیا تو میں تھوڑا راستے میں تھا, تو مجھے ڈیبیٹ میں سن رہا ہوں. ماشاءاللہ شاہ صاحب بھی اچھی انفارمیشن دے رہے ہیں, عدنان بھی اچھی انفارمیشن دے رہے ہیں, تو یہ چیزیں ہمیں پتہ چلنی چاہیے. میں تو ایک نقطے پہ خالی صرف چیز کہوں گا کہ جہاں پہ بندہ نے رہنا ہوتا ہے, جیسے ہم ڈنمارک میں رہ رہے ہیں, تو ہمیں ڈنمارک کے قوانین کی جو احترام کرنا چاہیے, اور کیونکہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں اور قوانین پہ اگر قوانین کا احترام کریں گے تو میرا خیال ہے جتنی بھی ہماری پریشانیاں ہیں وہ کم ہوں گی. تو سب سے ضروری ہے کہ ہم بوڑھے سینئر کیا, جو جوان ہے وہ کیا, جو لکھپن والے ہیں وہ کیا, سب کو قانون کا احترام کرنا چاہیے, سب سے ضروری چیز ہے. باقی یہ ہے کہ جیسے محترم شاہ صاحب اور عدنان جو ہیں وہ انہوں نے نظر رکھی ہوتی ہے ہر چیز پہ, کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے, تو وہ تو آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے ہر ممالک میں ایسی چیزیں چلتی رہتی ہیں, لیکن ہمارے ینگسٹر شکر الحمدللہ پڑھے لکھے ہیں اور سمجھدار ہیں, تو اگر اگر آپ اس میں 100% میں سے اگر کوئی 5-10% اگر ہو جاتا ہے تو ہمیں ان کو بھی پیار سے, جیسے عدنان نے کبھی ایگزامپل دی کہ اس بچے کو ویز کر دیا گیا, تو اگر ہم بڑے سمجھائیں بتائیں اور یہ بس ذہن میں ڈالیں کہ آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کے قانون کا احترام کرنا ہے, ہم مسلمان ہیں, اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے. تو میں تو یہی کہوں گا جو میں ڈبیٹ سن رہا ہوں, جو جتنی میری چیز میں نے سنی ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ جہاں پہ بھی رہنا ہو انسان نے اس ملک کے قانون کا احترام کرے.
1: شاہ صاحب اگر میں بات کو تھوڑا سا دوسری طرف لے کر جاتا ہوں, ریڈیکیل وینسٹا کی جو منسٹر ہیں, وزیر ہیں جو ہیں وہ اپنا سمیرا نوا, ان کی میں بیان دیکھ رہا تھا, وہ فرما رہی تھی جو موسم گرما کی شاندار خبروں میں ان کا ذکر ہے کہ ڈنمارک کی لیبر موومنٹ کی بزنس کونسل کا آج تجزیہ پڑھنا کتنا اچھا لگا, جس کی سرخی سے خیر مغربی پس منظر رکھنے والے زیادہ سے زیادہ نوجوان تعلیم حاصل کر رہے ہیں. شاہ جی یہ تو بھی تو خبر ہی ہے نا, یہ تو ریڈیکیل ونسٹا کی طرف سے کہا جا رہا ہے.
2: یہ بالکل صحیح بات ہے, لیکن جو اصل سبجیکٹ ہے جس پہ عدنان نے ابھی روشنی ڈالی ہے, یہ میں سوال مجیب قریشی صاحب سے بھی پوچھوں گا اور عدنان سے بھی. اصل میں بات یہ ہے کہ جو ینگسٹرز ہیں جو جنہوں نے پہلے کرائم کیے تھے تو ان کو اویس کر دیا جاتا تھا یا ان کے فیملی پہ کچھ نہیں آتا تھا, لیکن اب جو انہوں نے 2024 میں جو قانون بنایا جو 1 جنوری 2026 سے لاگو ہوا ہے, اس کے مطابق یہ ہے کہ اب بولی سیلس کے جو ہیں یہ اگر کوئی بچہ بار بار منع کرنے یا پولیس انمیلٹ ہوتا ہے یا اس کے زیادہ جرائم ہو جاتے ہیں تو وہ بولی سیلس کے جو ہے اس کو بغیر نوٹس دیے 15 دن کے واسطے سے گھر سے نکال سکتے ہیں اور پولیس کی مدد لے سکتے ہیں. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فیملیز جو اپنے بچوں کو اس وقت کنٹرول نہیں کر رہی, وہ کس کمیون میں جائیں گی, کون ان کو ایکسیپٹ کرے گا, ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ میں مجیب قریشی صاحب سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں اور اطلاعات سے بھی.
4: محترم شاہ صاحب ایسے ہے کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر جو نا جو کیونکہ میں ہم جو تجزیہ کرتے ہیں یا ہم جو دیکھتے ہیں خبریں, ہمارے لوگوں کی تعداد شکر الحمدللہ بہت کم ہے, بہت کم ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن آپ کی بات درست ہے کہ اگر قانون بن گیا تو قانون کوئی پاکستانیوں کے لیے تو نہیں بنا نا, وہ تو سب کے لیے. وہ تو ڈینش کمیونٹی کے لیے بھی یہ اگر میرے پاس ڈینش پاسپورٹ ہے, اگر میرے گھر میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے یہ تو نہیں کہیں گے کہ جی آپ ڈینش ہیں آپ کو ہم کچھ نہیں کریں گے. یہ قانون تو پورے ملک کے لیے, تو پورے ملک میں اگر قانون ہے تو میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمیں قانون کا احترام کرنا چاہیے, ہمیں قانون کی چیزوں کو سوچنا چاہیے, دیکھنا چاہیے, پرکھنا چاہیے, اور ہمیں اس میں اس کے اندر رہ کے اس ملک میں رہنا چاہیے تاکہ ہم اپنی چیزیں بہتر کر سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں زیادہ فکر نہیں کرنی چاہیے, لیکن ہمیں اصلاح کرنی, اپنی بھی اصلاح کریں, اپنے بچوں کی بھی اصلاح کریں, اور جو ہمارے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں ان کی بھی ہم دیکھیں, ان کی بھی اصلاح کریں. اصلاح کرنے سے قانون میں بھی بہتری آتی ہے اور لوگوں میں بھی بہتری آتی ہے.
2: عدنان سوال یہ ہے کہ اگر ہم ریڈیو پہ بیٹھ کے یہ قانون کی باتیں نہیں کریں گے تو عام آدمی کو جو گھروں میں بیٹھا ہے یا کام کر کے اپنے گھر میں چلا جاتا ہے یا گاڑی میں بیٹھا ہوا کام کر رہا ہے یا ٹرک میں بیٹھا ہوا ہے, تو اس کو کس طرح سمجھ آئے گی؟ اس کے پاس تو ٹائم نہیں کہ وہ قانون کو کنگالے یا اس چیز کو سمجھے. تو کیا یہ اچھی بات نہیں کہ ہم لوگ اس کو اس طرح کے قوانین جو بن رہے ہیں ان کو ڈسکس کریں اور پبلک کے سامنے لے کے آئیں تاکہ وہ محتاط رہے؟ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟
5: آپ کی بات کریکٹ ہے. میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ یہ جو پورا قانون بنا تھا نا 2024 میں, اور یہ جو جب بنایا گیا تھا تو یہ قانون جب بنایا گیا تھا نا یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہے. اس کے قانون کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ وارننگ دیں گے और वो वार्निंग को सीरियस बंदा नहीं लेगा तो फिर बंदा घर से बाहर निकल सकता है। और ये कानून इसलिए बना था कि ये जो क्या कहते हैं ना कंट्रोल, क्राइम को कंट्रोल करने के लिए बना हुआ है, मगर उसके अंदर अभी भी मसला ये है कि ये कानून जो है ना, इस कानून को चैलेंज किया गया हुआ है। और दो केसेस हैं जो मेरे ख्याल से सलेंस घाट के बाद हॉयस्ट घाट में है, और जब ये हॉयस्ट घाट में वो फैसला आएगा तो फिर पता चलेगा, क्योंकि दो बंदे इस कानून को चैलेंज कर चुके होंगे, क्योंकि ये कानून किसी ह्यूमन राइट्स और किसी के अगेंस्ट भी जाता है। तो अब देखते हैं इस कानून के साथ क्या है, मगर बात वही है जैसा मेरे बुजुर्ग ने भी कहा है कि जिस मुल्क में हम रहते हैं वी हैव टू रिस्पेक्ट द लॉ, क्योंकि हम रिस्पेक्ट लॉ करेंगे और हम उस चीज में रहते हैं तो हमें उस मुल्क को देख के चलना होता है। जिस मर्जी कानून हो हमें उस चीज को फॉलो करना होता है, और हम कोई इंफॉर्मेशन दे सकते हैं तो हम इंफॉर्मेशन हमें देनी चाहिए। हमें इस मुल्क में रह के हमें आइन और कानून जो होते हैं ना वो ही फॉलो करने होते हैं, और लोगों को बहुत सारे कानूनों का पता भी होता है और लोगों को अंदाजा भी होता है कि कानून कैसे हैं। तो ये कानून तो हमारे लिए नहीं बने, ये सबके लिए कानून बने हैं। मैं रिसेंटली 10 दिन पहले एयरपोर्ट पे गया हुआ था और वहां पे मैं देख रहा था कि फॉरनों को इतनी प्रॉब्लम नहीं थी पड़ी, क्या कहते हैं चेकिंग में, जितनी गौरों को प्रॉब्लम पड़ी हुई थी, क्योंकि गौरे जो हैं वो पुराने कानून से जा रहे थे तो उनको भी नहीं था पता। सो एवरीबॉडी हैव टू रिस्पेक्ट द लॉ, और यहाँ पे ये फर्क नहीं करते कि गौरा कौन है, राचिट्टा कौन है, रखोन है, ये देखते हैं लॉ को सबसे पहले।
1: अज़ान, आप कानून कायदे की बात कर रहे हैं, शाह साहब आपके लिए भी ये सवाल है, मजीब साहब के लिए भी सवाल है, आप तीनों सियासतदान भी हैं और गहरी नज़र भी रखते हैं कि कम्यून के इलेक्शन के बाद जब सारे मामलात सारे सेट हो गए तो अगर पिछले 3-4 महीने की या 2-3 महीने की एक्टिविटीज़ देखी जाए तो शाह साहब जो हमारे गैर मुल्कियों की क्या एक्टिविटीज़ हैं, स्पेशली आप अपने ग्रुप्स की बात करें तो हम जो जिस तरफ लगे हुए हमें तो पता ही नहीं है यहाँ क्या हो रहा है।
2: ये बिल्कुल बिल्कुल खामोशी छाई हुई है और इस तरह लग रहा है पुरसराज किस्म की खामोशी है, जबकि दुनिया भर के हालात जो हैं वो बड़े टेंस में है। डेनमार्क के हालात बड़े टेंस में है, यहाँ आप देखेंगे दुकानों पे जो बड़ी बड़ी सुपर मार्केट है उनके ऊपर खाने की चीजों की कमी है, उनके अंदर काफी चीजें जो है वो पेट्रोल महंगा हो चुका है, लेकिन आवाम क्योंकि छुट्टियों पे चले गए डेनिश और कुछ लोग जो है इस दफा छुट्टियां नहीं मना सके क्योंकि महंगाई की वजह से भी, तो हमारे लोगों को जो इंफॉर्मेशन होती हैं वो इंफॉर्मेशन देनी चाहिए लोगों को। ये इलेक्ट इसलिए होते हैं कि ये इन्फॉर्म करते हैं बंदों को। अगर आप ये कहें कि डेनिश सियासतदान, तो डेनिश सियासतदान जो है वो चैट कर रहे होते हैं आपके साथ फेसबुक के सोशल मीडिया पे भरी हुई है, आप देखेंगे इनको चाय नहीं है ना इंगा सोएब को ना मॉडर्न मास्टर स्प्रिट को ना हमारी वजीर आजम जो है उनको ना दूसरों को, ये डेली 3-4 जो है वो लॉज के ऊपर डिबेट कर रहे हैं, ये बकायदा फलके थिंग के जो डिबेट्स उलनी के बारे में वो पेश कर रहे हैं, जो फौसले नंबर 9 है उसको पेश कर रहे हैं कि किस तरीके से इनकी जो है उलेडिंग्स को जो नेशनलिटी दी जाती है उसको अच्छा कंट्रोल करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, इसका इसका मुहावर क्या है, इसका असल बात ये है कि हम लोग इन्फॉर्म करते हैं, हम लोग इन्फॉर्मर हैं, हम इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन असल काम ये है ये इंफॉर्मेशन देने का, ये काउंसलर्स का है, वो आकर बताए कि भाई देखे कि आपने अगर कोई फेस्टिवल लगाना है या आपने कोई किसी ने कोई मेडिसिन हेल्प लेनी है, आपने कोई आपको कोई बीमारी पे है, आपने छुट्टियों में सडनली पाकिस्तान जाना है या किसी और मुल्क में जाना है, तो आप किस तरीके से कौन से पैराग्राफ पे आप छुट्टियां ले सकते हैं, किस तरह आप अप्लाई करेंगे, ये काम बताने का हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हम क्यों बताएं जब
1: शाह साहब आप क्या फरमा रहे हैं। मुजीब साहब देखे ना, आपने शाह साहब ने जिक्र किया कानून कायदे की, तो देखे ना कानून कायदा समझने के लिए आप देखे ना कि 8-9 फंक्शन हो चुके हैं पिछले चंद दिनों में या हफ्तों में कह सकते हैं, और आगे भी फंक्शन होंगे, तो हमारी जो तरजियात का हमें पता चलता है कि हमारी एक्टिविटीज क्या है, हमारी सोच क्या है, थिंक टैंक शाह साहब आप लोग इसी तरह एनालाइज करते हैं। मुजीब साहब आपने सुना,
5: मैंने एक मिनट राजा साहब, मुझे एक मिनट बाहर जाना पड़ेगा टेलीफोन से, मैं आपको फिर।
1: चले ठीक है, ठीक है, ध्यान आप करें। जी मुजीब साहब,
4: मैं ये कह रहा हूँ कि देखें जितनी इन्फॉर्मेशन आती है बड़ी अच्छी बात है, कानून के बंदों को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, जैसे मोहतरम शाह साहब नजर रखते हैं हर रोज, इन्होंने सारी अखबार को देखना होता है। मुजीब
1: साहब, अगर वो नहीं देना चाहते तो वो जाहिर है कुछ ना कुछ तो करती होगी, हम लोग क्या कर सकते हैं, पुलिस में तो नहीं है।
4: हम तो कह ही सकते हैं ना जी, अगर वो नहीं देंगे तो नेक्स्ट टाइम तो मैं आपको ना, मेरे ख्याल आज से 3-4 महीने पहले आप वक्त कह चुका हूँ, नेक्स्ट इलेक्शन जो होगा वो कारकर्दगी पे होगा। अगर किसी की कोई कारकर्दगी नहीं हुई तो उन्होंने अपने सर पैर पे खुद इलेक्शन लड़ना है, तो फिर देखेंगे वो कैसे वो कामयाब होते हैं। लेकिन अगर कुछ बताएंगे कुछ करेंगे तो मेरा ख्याल है वो कामयाब ही कामयाब है। तो मेरा ख्याल है इस पे हमें ज्यादा, अभी छुट्टियां हैं खत्म होने दें, तो इनशाला इसके ऊपर हम बात करेंगे, उनको भी पकड़ेंगे, उनसे भी पूछेंगे, हमने वोट दिए हुए हैं, हमने मेहनत की हुई है, हमने पार्टियों को जिताया हुआ है। आज अगर 8-10 बंदे बैठे हुए हैं तो वो खुद तो नहीं बन गए, उनको हमने बनवाया हुआ है और हमारी वजह से वो बने हुए हैं। तो अगर उनको अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देनी तो नेक्स्ट टाइम के लिए वो भूल जाए। मैं तो एलानिया रेडियो पे कह रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम उनकी कोई सपोर्ट नहीं करेगा, मैं नहीं, कोई भी उनकी सपोर्ट नहीं करेगा। तो उनको चाहिए कि एक साल तो गुजर गया है, तो बाकी जो टाइम रह गया उसको अपने आप को सामने लेके आए और जो छोटा मोटा काम हो रहा है, जो भी उनकी चीज है, उसको उजागर करें। आपका प्लेटफॉर्म हाजिर है और मीडिया है, जिसपे मर्जी आए आके अपनी कारकर्दगी दिखाएं, अपने एरिए में लोगों को बताएं कि भाई हम ये काम कर रहे हैं, आपके लिए ये काम कर रहे हैं, बल्कि हमारे लिए नहीं, जिस कम्युनिटी से वो मुंतखब हुए पूरी कम्युनिटी के लिए हम क्या कर रहे हैं। ताकि ये तो नहीं कि खाली हम लंदन जा रहे हैं या हम पेरिस जा रहे हैं या हम बोसनिया जा रहे हैं या हम स्पेन जा रहे हैं, शहरों पर लग जाए, ऐसा काम नहीं चलता। आप काम वो वाले खत्म हो गए, यंगस्टर माशाल्लाह सब सियासत को समझते हैं, और जो नेक्स्ट यंगस्टर आएंगे हो सकता है फिर जो भी यंगस्टर है उनको फिर वो छुट्टी करा दे। तो इनको चाहिए कि अपने काम की तरफ तवज्जो दे और जो है ना उसके ऊपर तवज्जो दे। राज साहब ऐसे है कि मैं भी थोड़ी देर टेलीफोन से निकलूंगा, आप मुझे इजाजत दे दें तो इंशाल्लाह आप बात करें, मैं आपको रेडियो सुनूंगा जरूर, लेकिन मैं एक बिल्कुल दरवाजे के ऊपर बंदा खड़ा है उसको मिलने जा रहा हूँ, तो मैं इंशाल्लाह आपका रेडियो
1: सुनूंगा। चलें, अपना अदनान भी आ रहा है तो अपना शाह साहब आपने बात सुनी, शाह साहब हमारी तरजीहात क्या है,
4: जल्दी फारग हो गया तो मैं अंदर आ जाऊँ। ठीक है,
1: ठीक है,
4: ओके जी, खुदा हाफिज़।
1: शाह साहब हमारी तरजीहात क्या है
6: जी,
1: हमारी तरजीहात क्या है?
6: हमारी तरजीहात जो है वो गबियत करनी, शो ऑफ करनी, माजरत के साथ। मसाइल इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि कोई भी डिस्कस नहीं करता। जब भी किसी भी पार्टी का कोई भी प्रोग्राम हो, किसी भी सियासी पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म पे आप चले जाएं तो वहाँ पाकिस्तान के मसाइल जो हैं वो डिस्कस हो रहे हैं। अगर आप किसी दोस्त को मिल जाते हैं तो पाकिस्तान के मसाइल हल हो रहे हैं, यहाँ के मसाइल के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। यहाँ पे जो मसले मसाइल है ये कह देना कि देखो जी मैं तो, मेरे पे तो ये बात नहीं फिक्स हो रही, लेकिन दूसरे पे, लेकिन ये देखें कि जब एक कानून बनता है तो वो ये नहीं देखता कि ये बंदा सही काम कर रहा है या ये बंदा सही काम नहीं कर रहा, वो तो सब के लिए है। और हादसा किसको कहते हैं, हादसा वो होता है जो सडनली होता है। ये शोर बहुत हो रहा है अदनान के रेडियो में,
1: अदनान गाड़ी का या माइक बंद करें, माइक आवाज आती है, डबल होती है।
6: और मसला ये है कि हमने जो चीजें हाईलाइट करनी है, अब आप ये देखें कि जिस पे चीज पे हम बहुत ज्यादा बात कर रहे थे, वो मैं आज एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि ये जो नई टैक्सी आई है यहाँ पे, ग्रीन टैक्सी, ये अब
1: ड्राइवर भी मिल रहे हैं अभी
6: जी? नहीं नहीं, ड्राइवरों को काफी मिल रहे हैं। वो देखे, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये ड्राइवर्स का मुस्तकबिल इससे जुड़ा हुआ है। अब नुकसानात में जो दूसरे जाएंगे, देखिए एक मैं अगर इस कंपनी में ज्वाइन करता हूँ, अब मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो मुझे तो फिक्स रेट मिल रहा है, मुझे तो ये परवाह नहीं कि सवारी बैठती है नहीं बैठती, पैसे देती है नहीं देती, मुझे मेरी तनख्वाह मिल रही है। ये चीज जो है ये वन ऑफ द बेस्ट है। और फिर ये है कि अगर मैं जाता हूँ और मेरे मुझे कोई ऐसा टूर मिल जाता है, ऐसी सवारी मिल जाती है, दे देती है कंपनी, जो कि टाइम ओवर हो जाता है, तो उसको मुझे बोनस मिलेगा कि भाई तुमने ये काम जो है ओवर टाइम लगाया, उसका मुझे पैसा मिलेगा। तो ये ज्यादा ज्यादा जो है बेहतर है। और ये आगे, और अब एक नई बहस चली शुरू हो गई है कि जो टेस्ला और ये दूसरे जो कंपनियां हैं ऊबर वगैरह, अगर ये बगैर ड्राइवर के गाड़ियां जो है ये सोच रहे हैं कि इस क्रिसमस में या न्यू ईयर के बाद यहाँ पे फेंक देते हैं, सड़कों पे ले आते हैं, तो फिर ये हमारे वॉनमैन हजरात क्या करेंगे? देखे एक वॉनमैन का कम से कम जो है 30 से लेके 40 हजार करोड़ जो है सिर्फ गाड़ी का खर्चा है, और अगर उसकी गाड़ी का इतना खर्चा है तो वो कम से कम 70-80 हजार करोड़ कमाएगा तो उसको वो पैसे मिलेंगे, और अगर उसको 2-3 दिन घंटे के बाद 200-300 करोड़ का 250 करोड़ का टोल मिलता है तो वो तो खत्म होकर रह गया। और कौन इतनी महंगी गाड़ियों को बुलाएगा जब मार्केट में आपको जो है एल्बर्ट से एयरपोर्ट जाने के लिए 300 करोड़ में अगर आपको बिजी आर में गाड़ी मिल जाती है तो किसी का दिमाग खराब है कि वो इस तरह की सेल्सकेप जो नॉर्मल प्राइस पे जा रही है उसको कौन बनाएगा? तो इस तरीके से आबसलू से बढ़ेगी, क्रिमिनलिटी बढ़ेगी, लोगों में जो असाइनमेंट बढ़ेगी, और ये चीजें जो है ये कम्यूनों पे बड़ा असर डालेंगी। और कम्यूनों को अभी चाहिए कि ये जो काउंसलर्स हैं इनको चाहिए कि कम्यूनों पे इस पे बात उठाएं, जो ऑर्गेनाइजेशन हैं यहाँ पे ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन हैं आबस रिलेटेड जो है उनको चाहिए कि अभी से ये बैठ के बात करना शुरू कर दे कि अगर यहाँ पे या तो सबके लिए एक फिक्स कर दे। अब मिसाल के तौर पर खुदा ना करे कि एक वॉनमैन फंस जाता है, वो कहते हैं जी कि काम ही कोई नहीं, अब उसने गाड़ी को गाड़ी से कैसे जान छुड़ानी है, इतने लाखों की उसने गाड़ी ली हुई है, पीछे उसके उसका सरमाया उसने देना है, फिर उसका वो किस तरीके से उसे।
1: शाह साहब आप गाड़ी की बात कर रहे हैं, शाह साहब एक आप कंपनियों के हाथ में सारी गेम चली गई है। आप देखे ना अगर आपकी गाड़ी पंक्चर हो जाती है आप वाई एल को फोन करते हैं, वो बंदा आता है वो आपके टायर पे सुराख खड़ी गाड़ी पे टायर पे सुराख करके कहता है जब अपना वर्कशॉप में ले जाओ बाकी जो ठीक कर लो। जब आप वर्कशॉपों में जाते हैं तो फिर आपको कहा जाता है कि ये जी पंचर नहीं लगता, ये आपका टायर 2-2.5 हजार का है तो फिर ये आपको पंचर नहीं। शाह साहब ये पहले होता था, आते थे वो पंच टायर उतारते थे, खोल के देखते थे, पंच लगा के फिट करके वो चले जाते थे। तो शाह साहब ये जो खेल चल रहा है ना सारा, ये खेल अब बड़ा लंबा खेल है जो हमारी लोगों की समझ से नहीं, आप क्या कहेंगे?
6: कि मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि लोगों को होश के नाखून लेने चाहिए, जो अक्लमंद है वो अभी से ये सोच ले कि अगर मुझे इसमें प्रॉफिट है कि अगर मैं 30 हजार तनख्वाह मैं अपने मुश्किल से अपनी गाड़ी में निकाल रहा हूँ तो कई दफा मैं 30 हजार भी नहीं मुझे आ रहा, तो फिर तो 30 हजार की जो नौकरी है वो उसके लिए बेहतर है कि उसमें से टैक्स दे के तो वो अपनी जान छुड़ा सकता है, ना उसको पेंशन गाड़ी के पैसे देने पड़ेंगे, ना उसको वर्कशॉप का खर्चा, ना कुछ। यहाँ पे तो जो मुलाजमत है मुलाजमत के अंदर तो जो मर्जी हो जाए वो तो कंपनी का सरमाया लग रहा है।
1: चलिए अदनान से ऐसा पूछते हैं, अदनान से चूंकि अदनान भी काफी स्टडी करते रहते हैं, मार्केट को देखते हैं। अदनान ये नई कंपनी आ रही है, हमारी जो सियासत है आपको पता है हमारी क्या सोच है, हम किस तरह सोचते हैं, हम टोटल अपना मफाद देखते हैं, बाकी जितने मर्जी कानून सख्त हो जाए हमें उसकी कोई परवाह नहीं है, मेरी जात को कितना फ़ायदा होता है। जब नई ब्रांच आ गई है, इनका काम शुरू हो गया, इनकी 300-400 टैक्सियाँ खड़ी भी, इनकी पार्किंग प्लेस भी है, वर्कशॉप भी इनका अपना, सफाई भी ये खुद करके देते हैं, सहूलियात तो अदनान आ रही है, आप क्या कहेंगे?
7: साहब ये तो आ रही है और ये मैं आपको यही कहूंगा कि ये चीजें जैसे ये पता नहीं अब इनको आने तो दो पहले मार्केट में और देखते हैं कि ये क्या कहते हैं इनका सीधा क्या होता है, क्योंकि ये मुझे तो लग रहा है कि ये हाल ऐसे ही होना है जैसे हम लोगों ने देखा था, जैसे ये फॉस्टेनमार्क बंद हुआ था तो पत्तों का बिरार कोई थी, तो इस तरह काफी कंपनियों की वजह से आने से काफी चीजों की क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स पड़ेंगी, और ये तो फिर गवर्नमेंट को और सियासी बंदों को देखना चाहिए कि किस किस को परमिशन दे रहे हैं। आपका पहला जो सवाल था कि हमारे जो काउंसलर हैं वो क्या कर रहे हैं, होपफुली वो अपनी क्या कहते हैं तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि ये जो कमिंग मंथ है इसमें तो उन्हें काफी बिजी होना है क्योंकि बजट का फैसले होने हैं हर कमून के, और होपफुली वो पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। और मैं तो यही चाहता हूँ कि जब वो काउंसलर बने हैं तो बाहर निकल के अपनी कम्युनिटियों को भी बताएं कि कौन कौन सी क्या कहते हैं कमियां हैं, क्या क्या होना है क्या नहीं होना। जैसे शाह साहब मैं बैठे हुए हैं ये हमिसन कमून के अंदर, हमारा तो अगले 2-3 साल बंदा कह ले कि हमें वो जो स्टेज पूल मिलते हैं वो ना मिले तो बजट अभी नहीं पूरे होने, क्योंकि 2031 के अंदर जाके करीबन جب یہ سارے ہمارے مکان وغیرہ سب کچھ بن جائے گا, انفراسٹرکچر بن جائے گا, تو پھر 100% بجٹ ہمارا بنتا ہے. تو اسی طرح باقی کے کمونوں میں مسائل ہیں, برونبی میں بھی ہوں گے ریفنری کچھ مسائل ہیں, وہاں پہ بھی کیا کہتے ہیں ایک پون پستانہ ہم وہ جس کو وہ پورا کمپلیٹ چینج کر رہے ہیں کیونکہ ادھر بھی مسئلہ مسائل تھے. تو اس طرح کی چیزیں باہر نکل کے ہمارے کونسلر کو بتانے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے 14 دن پہلے اور دیکھا ہے کہ جتنے مینگو فیسٹیول پہ اور جدھر جدھر ہم لوگ گئے ہیں جن جنوں کو پتا ہے وہ ڈیفینیٹلی سوال پوچھتے ہیں, اور کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھے. میں نے کہا دیکھیں ہر سوال کا جواب تو میں نہیں دے سکتا کیونکہ میری بھی کیا کہتے ہیں چھاؤ سے سپلٹ ہوتی ہے, مگر جو انفارمیشن میرے پاس لیگلی ہوتی ہے اور مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں بتا سکتا ہوں وہ میں آپ لوگوں کو بتا سکتا ہوں. اور میں نے جیسے ابھی بھی کہا ہے کہ میرے پاس کافی ہماری جو وسٹرن کی کمونوں میں مین بندے بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں کچھ تلاویں ہیں, پھر وہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہم ان کو بتا سکتے ہیں اور کیا ہے, کیونکہ کافی کیا کہتے ہیں چیزوں میں تبدیلی آئے گی, کافی چیزوں میں پیوچھیٹ بدلے گی. جیسے اب آپ دیکھیں بڑے لوگوں کو, ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں, گلوس تو سوئمے ہے, ایگزامپل میں آپ

0: जो उनने आजादी का प्रोग्राम के साथ मैंगो रख दिए। तो दो मैंगो फेस्टिवल रह गए हैं, उसके बाद तो मैंगो का सीजन ही खत्म हो जाना है, तो फिर क्या कहते हैं मैंगो के इतने नहीं रहने हैं, तो इसलिए
1: अदनान, ये जो जो स्टॉल वगैरह लगाए जाते हैं, तो क्या ये जो सेहत वाले होते हैं, महकमा होता है सेहत वाला, तो जिस तरह के तरीकेकार होते हैं, तो क्या ये अलाउ होती हैं सारी चीज़ें लीगली?
0: इसके लिए एप्लीकेशन देनी पड़ती है कमून के अंदर कि आप क्या कर सकते हैं, और फिर वो आपकी एप्लीकेशन प्रूव कर दें तो फिर कोई मसाल नहीं होता। और ऑब्वियसली वो 100% ज्यादातर अप्रूव कर देते हैं, क्योंकि उनको अभी तक तो ये उन पहले तो पता नहीं किस तरह से है, मगर आगे वो देख रहे हैं इस चीज को किसका क्या कहते हैं लॉ की इवनिंग बदलनी है कि नहीं। तो मैं आप लोगों से इजाजत लूंगा क्योंकि
1: मैं
0: मैंने एक
1: शाह
0: मीटिंग में
1: साहब, आप
0: पहुंचना है,
1: प्रोग्राम को क्लोज करें और मेहमानों से
0: तो
1: इजाजत
0: मैं
1: भी
0: फिर
1: लें।
0: इंशाल्लाह ताला आपसे बात होगी।
1: जी
0: मेरी
1: जी
0: तरफ से सबको अल्लाह
1: थैंक
0: हाफिज।
1: यू थैंक यू।
2: ये राजा साहब, लास्ट में मैं ये कहूंगा कि लोगों का शुक्रिया कि वो हमें बर्दाश्त कर रहे हैं इस गर्मी के मौसम में, लेकिन इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। ये काउंसलर्स हजरात का काम है कि वो आकर बताएं कि जो पेंशनर्स हैं या बिफोर टर्म जिन्होंने पेंशन ली हुई है, या वो फैमिली वाले जिनके लो इनकम है इस डेनमार्क के अंदर, और वो जो लेवेस्ट इनकम के यानी कि सबसे कमतर इनकम के अंदर गुजारा कर रहे हैं, उनको किस तरीके से कम्युनिटी सपोर्ट कर सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर कोई भी काउंसलर बात नहीं करता, कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। फिर जितनी नई बोलियां बन रही हैं वो इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव और इतनी ज्यादा छोटी और कम और तंग कमरों वाली बना दी इन्होंने कि अगर किसी को मजबूरन वो कमरे ले लेता है तो पहले तो वो वहां पे उनको सोने के कमरे में ही बेड डबल बेड भी रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, और फिर जो उसका रेंट है वो इतना ज्यादा है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते और उनका गुजारा जो है बहुत मुश्किल। और
1: तो शाह
2: बच्चों
1: साहब,
0: वाले
1: ये
0: लोग
1: कानून नहीं बन
2: जो
1: सकता किराया, हर आदमी हर कंपनी अपनी मर्जी से किराया रखती है।
2: जी, इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस जो है ये 85-86 में हमने कोपेनहेगन में इसके ऊपर डिबेट की थी, लेकिन वहां पे फिर वही बात हो गई थी कि जो डिप्लोमेट्स थे, जो बड़े बड़े उम्बसमैन थे, वो कम्यून को चकरा गए थे और चक्कर दे के तो एक्साइट भी हो गए थे, तो सियासतदानों को जो काउंसलर्स थे उनको इतनी ज्यादा समझ नहीं थी। तो ये डिबेट्स जो है ये होनी चाहिए और ये बताना चाहिए कि हर कम्यून के अंदर जो पेंशनर्स हैं और जो फैमिलीज वाले हैं जिनकी इतनी हायर इनकम नहीं जिस तरह अगर डेनमार्क गवर्नमेंट क्लेम कर रही है, तो उनको सस्ते जो है वो फ्लैट जो है वो देने चाहिए और मुहैया करने चाहिए, ताकि वो बच्चे जो है वो बजाय डोमेस्टिक वायलेशन या क्राइम की तरफ जाए या तरसे कि हमें बाहर गर्म मौसम है, हमें आइस नहीं मिल रही, फलानी चीज नहीं मिल रही। तो राजा साहब ये चीजें जो है ये डिस्कस करने के लिए हमें चाहिए, और मैं ये चाहता हूँ कि किसी वक्त आप बुखारी साहब को भी लाएं, किसी काउंसलर को लेके आए जो बड़े ठंडे दिमाग से हमारी बातों का जवाब दे और हमें अच्छे तरीके से ये बताए कि कौन सी कम्यून में वो काम कर रहे हैं और क्या उनकी कम्यून में ये फैसिलिटीज हैं या नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम क्राइम रेट को
1: शाह साहब,
2: रोकने के
1: ये आप
2: लिए।
1: वोटर सपोर्टर को भी ये पूछना चाहिए ना कि हमने आप लोगों को वोट दी, जिस तरह मुजीब साहब फरमा रहे थे कि हमने वोटें दी हैं, तो वोटर सपोर्टर को भी चाहिए ना भी, आपको वोटें हमने किस लिए दी थी? आपको मेंबर बनाने के लिए दी थी? आपका कैरियर, आपके जॉब बड़े अच्छे हैं, आपका कैरियर बनाने के लिए हमें आपकी वोटें दी थी?
2: वो आगे से क्या दे दी अंकल जी, अगली दफा मत दीजिएगा वोट, आपने दे दिया आपका शुक्रिया, अगली दफा ना दीजिएगा, हमने आपको समोसे चाय खिलाई थी, बस शुक्रिया आपने इस दफा वोट डाल दिया, अगली दफा बेशक आप ना दे। तो बात में असल में ये होती है कि अगर ये लोग आके लोगों को ये बताते हैं इन्फॉर्मेशन, तो इससे इससे सहूलियात जो है वो बढ़ जाती है। मैं आपको ये बता दूं कि 85% या 86% लॉज जो बनते हैं यहाँ पे कम्यूनों के अंदर उनका किसी को भी इलम नहीं, और लोग बाहर आके बात नहीं करते क्योंकि लोग उसके अंदर बैठते नहीं है, बताते नहीं कि कौन सी डिबेट हुई है। आप यकीनन किसी से भी टेलीफोन पर कोई कह दे कि आए मुझे ये बताएं कि आज आप इस हफ्ते आपकी किस चीज पे डिबेट हुई है, तो वो आपको गुड़ गुड़ बात करके तो भाग जाएंगे, वो नहीं बताएंगे। तो ये जो सबसे बड़ी हमारे

0: ये प्रॉब्लम है, हमें ये बात करनी चाहिए, बताना चाहिए कि भाई आपने हमें अलग किया है, हम इस कम्यून में गए हैं, इस कम्यून का मंशूर ये है। अब जिस तरीके से कोपनहेगन कम्यून को आप ले लें, वहां आपको जो इलेक्ट हुए हैं उनको चाहिए था कि आपके जरिए या दूसरे मीडिया के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए अवाम को बताते कि हमारे कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं अवाम के लिए, सड़कों के लिए, पार्किंग के लिए, हाउसेस के लिए, बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए, हम क्या क्या करने जा रहे हैं। वो पूरा साल वो प्रोजेक्ट पे बैठे, पूरा साल वो उनके चलता रहे, लेकिन मेजर चीजें उनको बतानी चाहिए थी, बताना चाहिए था कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत है आप किस तरीके से अमल कर सकते हैं, अगर खुदा ना खास्ता आप बीमार है किस तरह आपने रायजे लेना है, किस तरह आपने करना है, ये इन चीजों पे वो तो बात ही नहीं कर रहे। जब तक लोगों को ये चीजें इलम नहीं होगी, उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन है। देखिए फॉरेन मिनिस्ट्री ने, हर मिनिस्ट्री ने बहुत सर्विस बनाई हुई है, ये वायद कोपनहेगन की पावर सर्विस है या वेस्टर्न की पावर सर्विस है, जिसके अंदर सिर्फ तीन चीजें आप जाके उनसे हल करवा सकते हैं, बाकी का उनसे कोई रिलेशन नहीं है। तो आपने अगर कार्ड बनवाना है, पासपोर्ट बनवाना है या कम्यून से किसी के, तो वो बाकी है उनके लिए कोई रिलेटेड, ऐसा नहीं कि कोई आप उनसे इंफॉर्मेशन ले सके, वो नहीं ले सकते। और आपको इवन आप एल्बर्सोन बॉमिस्टर को टेलीफोन करें ना, तो उसका उसका नंबर ही कोई नहीं है। तो ये कैसी कम्यून है जिसके अंदर कोई बॉम्बेस्टर से आप डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, आप कहीं जाकर टाइम नहीं ले सकते, आप किसी काउंसलर से नहीं मिल सकते, आप पूछे कम्यून से पूछे कि कोपनहेगन ये अपना एल्बर्सोन कम्यून के अंदर कौन कौन से काउंसलर हैं, उनके टेलीफोन नंबर हमें दे, हम उनसे बात करना चाहते हैं, उनका कौन सा ऑफिस है, हम उनको मिलना चाहते हैं। तो ये चीजें जो है, ये अवेयरनेस जो है, ये आवाम को मिलनी चाहिए। जी राजा साहब,
1: मैं मजीब साहब की तरफ पढ़ते हैं। मजीब साहब, आप चूंकि ये सारी चीज़ें देखते रहते हैं, आपके घर से भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं डिप्लोमेसी डिप्लोमेट जो मिलती रहती हैं, लेकिन हम किसी काम की तरफ नहीं जाते मासवाय तनकीद के अलावा।
2: आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है जी। माशाल्लाह आप देखें ना, मुकरम शाह साहब बहुत से तजिया करते हैं, लेकिन हम कह कह के अपनी जुबानें भी थका ली हैं, अपने गले भी खुश कर लिए हैं, लेकिन मुझे लगता है असर नहीं ना, इस चीज का कोई असर नहीं हो रहा। और इसका एक ही इलाज है, मैं जो समझ रहा हूँ कि बेहतर जो इसकी दवाई है कि नेक्स्ट इलेक्शन में हमें सोच समझ के अपना कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल बात दुरुस्त है कि अगर कमून के अंदर कोई भी काम हो रहा, कमून के देखें जो अपने हमारे कैंडिडेट मुंतखब, उनके प्राइवेट नंबर भी हैं, ऐसी बात नहीं कि उनको ऑफिस वाला नंबर ही हमें चाहिए, वो भी नहीं उठाते। लोग कहते हैं जी आपकी खातर वोटें दी थी तो बंदे किधर है, तो हम कहते हैं जी फिर आप इस सफर तो आपने हमारी खातर दे दी है, तो नेक्स्ट टाइम आप कारकर्दगी पे दें, जो बंदा कारकर्दगी दिखाए उसको आप वोट जरूर दें, और जो बंदा नहीं दिखाए आप उसको बिल्कुल वोट ना दें। और बेशक मैं आ जाऊं, बेशक आपके पास शाह साहब आ जाए, बेशक आपके पास राजा गफूर साहब आ जाए, आपने वोट नहीं देनी, आपने वोट उसी बंदे को देनी है। और यही देख लें, आज माशाल्लाह अब अगस्त शुरू होने वाला है, तो अभी नवंबर तक तो एक साल हो जाएगा, तो अभी एक साल में कोई चीज मुझे किसी कमों से, मेरे पास कोई ऐसी कोई ऐसी खबर नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं कि किसी काउंसलर ने या रीजन के बंदे ने या कोई ऐसा कोई स्टेप उठाया है कम्युनिटी के लिए, या कोई काम हो रहा है, या कोई ऐसी चीजें जो कि पाइपलाइन में है किसी का, वो सोच रहे हैं, वो कह रहे हैं, तो ऐसी बातें तो कुछ भी नजर नहीं आ रही। तो मैं समझता हूँ कि ये यंगस्टर जो है, जो हमारे नए काउंसलर बने थे, उनको चाहिए कि वो अपनी फील्ड को और मजबूत करने के लिए मैदान में आए और अपने मीडिया पे आकर लोगों को बताएं कि भाई ये काम हो रहे हैं, ये काम पाइपलाइन में, ये काम नंबर की है।
1: मुजीब साहब, ये बात तो जज्बे की होती है, बेचारे मेहनत तो करते हो गए हैं, फिर वो कहते हैं हमारे बच्चे भी हैं, हमारी फैमिली भी है, तो लेकिन अगर ये सारी चीजें हैं तो इनको पहले कहा जाता है सियासत में बंदे के पास टाइम नहीं, तो उसे सियासत में आना ही नहीं चाहिए।
2: देखिए जी, फैमिली के लिए टाइम जरूरी है, अपने काम के लिए टाइम जरूरी है, अपने दोस्तों के लिए टाइम जरूरी है, लेकिन अगर आपने सियासत में हिस्सा ले लिया है और एक बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ आपका तल्लक है, तो फिर आपको उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा, आपको उसके लिए टाइम निकालना है। आप अपना एक एक प्रोग्राम बनाए, एक प्लान बनाए, हफ्ते के 7 दिन होते हैं, आप उसमें से कह दें जी बस हमने 3 दिन जो है ना वो सियासत पे काम करना है, 4 दिन हमारे जो है ना फैमिली दोस्त है हमने उनके साथ गुजारे, तो फाइन, लेकिन 3 दिन जो है उसके अंदर कम से कम इन्फॉर्मेशन दें, लोगों को बताएं कि जी हम ये काम कर रहे हैं।
1: तो शाह साहब से पूछते हैं, शाह साहब ये मीटिंगों में जाते हैं, ये मुफ्त जाते हैं, अपनी जेब से पैसे लगाते हैं?
0: नहीं जी, मैं अपना मजीब कुरैशी साहब से भी एक सवाल करूंगा और आपको जवाब भी दूंगा। देखिए, उडनसे में आज उसमें यूलैंड में इनसम बनी हुई है जमातें, जहां जैसे यहां पर 70s 80s में कोपेनहेगन में होती थी इनसम, यानी कि आप अकेले हैं, आप अकेले महसूस कर रहे हैं, आप जाके इकट्ठे बैठे और आपने जैसे लोगों से जो है वो बैठ के तो आप बात करें, खाना खाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके अंदर कम्यूने जो है वो सपोर्ट करती थी। तो यहाँ पे ना वेस्टाइन में कोई ऐसी चीजें हैं, ना कोपेनहेगन में ऐसी चीज है। वो पैसे कहाँ गए, कहाँ गए वो बोलिए। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं था, क्या नाम है, वेंसा की तरफ से मैं इलेक्टेड था, इसके अंदर इंट्रोगेशन हुआ कोपेनहेगन के अंदर, तो वहां पे कुरैशी साहब के बड़े भाई भी थे, तो हमारे सामने बजट आता था कि कौन कौन सी तंजीमात हैं, किन किन को ये पैसे जो है वो मिलते हैं, और ये सारा कुछ जो था वो हमारे थ्रू हमारे से बहस करके तो वो लेके जाते थे। तो अब मसला ये है कि ये जो चीजें हैं ये हम लोगों ने देखना है कि ये चीजें कहाँ गई, ये पैसा सरमाया कहाँ लग रहा है, आखिर कोई ना कोई इसको उद्म्यूट कर रहा है, कोई ना कोई इससे फायदा ला रहा है, ले रहा है, लेकिन वो बात नहीं कर रहे। तो अब ये है कि मैंने ये सोच रखा है कि छुट्टियों के बाद मैं इनको लेटर लिखूंगा और मैं ये जो है फलकतिंग का उम्बसमैन और जो कोपेनहेगन कम्यून है उससे मैं ये इंफॉर्मेशन मांगूंगा कि मुझे ये ऑफरली बताया जाए कि यहाँ पे कौन कौन से रजिस्टर जमाते हैं और कौन कौन से कल्चर सोसाइटीज हैं जो किसी ना किसी बहाने में जो है वो फॉरनर्स के लिए कल्चर सिस्टम के लिए पैसा लेते हैं। तो इनको इनको जरा मुझे ये बताएं, और ये मेरा राइट है सांसददान यहाँ पे, तो वो बताएंगे इंशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं, और ये मैं लूंगा, क्योंकि ये पैसा कहाँ जा रहा है, इनके पास पोली होता है। मैं आपको बताऊं कि 1997-98 में तकरीबन 24-25 मिलियन करोड़ जो था सिर्फ ठिंगबिया के लिए गिना गया था। अब ये हिसाब लगा ले कि ठिंगबिया जो है उसके अंदर 63% जो है वो फॉरनर्स हैं और 37% जो है वो डेनिश हैं। तो इतनी ज्यादा वहां पे पब्लिक रहती है, वहां पे जो पैसा जो गवर्नमेंट लगाती है। शाह साहब,
1: बेसिक बात तो यही है ना कि जो कम्यूना में काउंसलर हजरात बैठे होते हैं, कमेटियों में बैठे होते हैं, वो जो फैसले करते हैं वही माने जाते हैं ना।
0: अगर वो वहां डिबेट लेते हो, जैसे हम डिबेट कर रहे हैं, मजीब साहब बात कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, इदलान कर रहा है, आप सवाल कर रहे हैं, अगर ये हिस्सा लेते हो, जब इनका इंटरेस्ट ही नहीं है, इनका इंटरेस्ट ही नहीं है कि हमारे साथ आके बात करें, हम इनसे सवाल करें कि भाई वो फलानी फलानी थी बात, वो उसके ऊपर आप हमें कोई इंफॉर्मेशन दे, हम एक कल्चर फ्रेमिंग बनाना चाहते हैं, हम कहाँ अप्लाई करें, कौन से कितना हमें जो है वो बजट मिलेगा, किस तरीके से हम उसकी एक हिस्से और दूसरी चीजें बनाएंगे। तो ये चीजें जो है ये आपको कम्यून वालों ने देनी है, और अगर वो जो काउंसलर्स जिनको हम इलेक्ट करते हैं वो अपने अपने दोस्तों अहबाब में और अपनी फैमिलीज में ही वो ये सब कुछ अगर लेके चल रहे हैं, तो ये चीजें सामने आनी चाहिए, ये सामने आनी चाहिए कि ये पैसे जाते कहाँ हैं, क्योंकि ये तो मजीब साहब को भी पता है और मुझे तो 100% पता है कि मैं इतने सालों से डेनिश सियासत में हूँ, ये तो मुझे 100% यकीन है कि हर कम्यून के अंदर ऐसे बजट रखे जाते हैं जो मुख्तलिफ जो फॉरनर्स है उनकी बेहतरी के लिए, उनके कल्चर के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनकी फाइनेंस के लिए, उनकी मीटिंग के लिए पैसे दिए जाते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं।
1: मजीब साहब, आपने शाह साहब की बातें सुनी। मजीब साहब, एक सिस्टम तो होना चाहिए। आज पुराने वक्तों की अगर आप बात देखें तो काउंसलर बड़े मेहनत करते थे, अब भी करते हैं, अब नहीं, ये नहीं कि अब नहीं करते, करते हैं, सारे अपने अपने तरीक़ेकार से करते हैं, बाज का नज़र आता है, बाज कर रहे होते हैं लेकिन उनका काम नज़र नहीं आता, बात तो वैसे आपकी रिकॉर्ड चलती रहती है। लेकिन मजीब साहब, नौजवान बच्चे हैं, यहाँ पैदा हुए, उनको भी कानूनी राइट्स हैं, उन्हें भी ज़रा एहतियात करनी चाहिए, और चूंकि ये यहाँ पैदा हुए, इनकी सोच जो है वो दूसरे बच्चों की, ये हमारी तरह तो सोच नहीं है, ये अपने आप को डेनिश समझते हैं, डेनिश शहरी समझते हैं, तो हकूक लेकर देना सियासतदानों का काम होता है, आप क्या कहेंगे?
2: मैं आपको सबसे पहले एक बात बताऊं, जैसे मोहतरम शाह साहब ने कहा है कि किसी जमाने में इंसान हुआ करती थी, मैं एक यहाँ पे एक ग्रुप है, एल्ड्रा ग्रुप जो, जिसका नाम है सीसा, और वो जो 67 ईयर्स के बाद जो जो लोग हैं उनका, उस अबव जो लोग हैं उस उनका ये एक ग्रुप है। और उसमें तकरीबन अगर नैरो ब्रो में देखा जाए तो ये खाली जो है फॉरनर्स लेडीज जेंट्स मुख्तलिफ ममालिक के, कोई वो 60 से ऊपर उनके मेंबर हैं। वो हर ट्यूसडे को बैठते हैं काफी के लिए बातें करने के लिए, हर महीने में एक दफा वो या 2 महीने में एक टूर लगाते हैं चुवाली का, या मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ किसी और जगह का। ये पिछले दिनों बोनो को गए हुए थे, ये बैरा रूप में कोई म्यूजियम में उनको बाहर लेके जाते हैं, फिर कभी कभी उनको खाने के लिए लेके जाते हैं, फिर उनको कभी कभी फिल्म के लिए लेके जाते हैं, कभी कभी उनको थिएटर में लेके जाते हैं। यानी कि मैं कहने का मतलब ये है कि फ्रेनिंग्स तो हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे शाह साहब ने कहा है कि हमें इंफॉर्मेशन दी जाए जी ऐसी आप फ्रेनिंग बनाए और ऐसे कामों के लिए वो चीज है, और उसके लिए आपको आखिर उनको बजट मिलता है तो वो खाना भी देते हैं, काफी भी पेश करते हैं, फ्रूट भी देते हैं, मीटिंग्स भी करते हैं, लेके भी जाते हैं। तो ये पुलिया हर जगह मौजूद होता है, हर कमून में होता है, लेकिन मसला ये है कि हमारे में वो बात आती है कि वो जो चुदराहट है ना हमारी, वो हमारे में लेके डूब जाती है। अगर शाह साहब से गुजारिश करूंगा कि अगर वो इंसान की तरह को फ्रेनिंग बनाए तो क्या होगा, पीछे दो बंदे खड़े हो जाएंगे, ना जी शाह साहब उसे क्यों बढ़ा दीजिए, असि आप बढ़ा लीजिए, शाह साहब की तरह मुझे आ गए। मैं आपको खाली ये बता रहा हूँ कि हमारी मेंटेलिटी इतनी खराब हो चुकी है कि अब लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। मैं भी ये कहूंगा सबको, कोपेनहेगन कमून वाले कोपेनहेगन में, एल्बर्टसोन वाले अपनी अपनी एक फ्रेनिंगे बनाए और फ्रेनिंगे बना के बैठने की जगह लें, आपस में बैठ के बातचीत किया करें, कानून को आपस में शेयर किया करें, अपनी दूसरी जो तरजीहात हैं उस पर बैठ के बात किया करें। तो ये एक हमारे लिए
1: मजीब
2: जरूरी है।
1: साहब, दूसरे लफ्जों में अगर मैं आपसे कहूं, चूंकि आप खुद भी सियासतदान हैं लेकिन आप ज्यादा सियासत जो है वो डैनल सियासत करते हैं, तो मजीब साहब आप सियासतदान आपस में बैठना ही नहीं चाहते। पहले लोग सियासतदान सारे बैठते थे आपस में, ये बड़े लोग देखे ना कि ये सारे आपस में बैठते हैं, जो नीचे होते हैं उनको नहीं, ये आपस में इकट्ठा बैठे, ऐसे हालात बना देते हैं कि लोग एक दूसरे को जो है ना वो सियासी दुश्मन तसव्वुर करते हैं।
2: लेकिन मैं समझता हूँ कि नीचे वाले जो लोग होते हैं ना, जैसे कॉन्सुलर रीजन में लोग हैं, उनको मिनिस्टर की तरफ नहीं देखना चाहिए, पार्लियामेंट की तरफ, उनको अपना एक ग्रुप बनाना चाहिए। बार पिछली दफा भी हम कितनी दफा कह चुके हैं कि कम से कम जो हमारे कैंडिडेट मुंतखब हो ये अपना एक ग्रुप बनाए, इस ग्रुप में मतलब लोगों को शामिल करें, पढ़े लोगों लोगों को शामिल करें, उसमें एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन दें, कोई कानून आता है उसके अंदर डाल दें। लेकिन जो मैं फ्रेनिंग की बात करूं, मैं बता रहा हूं कि वो फ्रेनिंग क्योंकि उस जो सिस्टम है उसका जो जो ग्रुप है ना उसका मैं उस भी सिलसिले में हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि उनको फंड भी मिल रहा है, उनको हर चीज मिल रही है और वो चला भी रहे हैं, और उनका मतलब के लोग जो है उसके अंदर आते हैं बैठते हैं। जाहिर सी बात है यहाँ पे तनाई है और लोग जो मतलब के इस उम्र में चले जाते हैं वो चाहते हैं कि हम बैठे हैं आपस में कोई बातचीत करें, कोई मुल्की हालात देखें, कोई वैसे बातचीत।
1: जी शाह साहब, इसको जरा आप क्लोजिंग की तरफ लेके जाते हैं, आखिर में कोई शाह साहब हाल भी होना चाहिए, हमारे पास 5 मिनट
0: जी, जी इसका हाल बस यही है कि लोग सामने आए और आकर खुलकर बात करें।
2: बिल्कुल
0: ये जो मजीब कुरैशी साहब बात कर रहे हैं ना, ये देखें कि हर फ्राइडे को वहां पे मुख्तलिफ फाइनिंग जो है, किसी का फ्राइडे को है, किसी का ट्यूसडे को है, किसी का वेडनेसडे को है, उडनसे के अंदर, इसी तरह दूसरे शहरों के अंदर ये सारे बैठे हुए हैं। लेकिन वहां पे प्रॉब्लम यह है, वहां किसी में, जैसे मजीब कुरैशी साहब ने बोला, किसी में चौधराहट नहीं, सारे मुल्कों की, कोई टर्किश है, कोई मराको का, कोई अल्जीरियन है, कोई अफ्रीका का, सब भाइयों की तरह है और खाना भी खा रहे हैं, लेके भी आ रहे हैं, किसी के जुम्मे ये चीज है, वो कोई कॉफी बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वियतनामीज भी है, सब इकट्ठे मिलके, और ये सुबह से लेके शाम तक ये इकट्ठे बैठते हैं, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट से लेके, तो उनमें काफी
1: कन्वर्सेशन। अपने पाकिस्तानी सियासत में मुलव्वस तो नहीं होगा
0: राजा साहब, राजा साहब उसके अंदर काउंसलर भी आगे बैठते हैं, जो वहां पे इलेक्टेड काउंसलर है ना, वो भी आगे बैठते हैं, वो भी उनसे बात करते हैं, वो उनसे पूछते हैं कि भाई आगे मसाइल क्या है, आप बताएं, आप फलाने जगह के
2: बैठ के नाश्ता करते हैं, जुटे बैठ के सारी बातचीत होती है।
0: तो अगर यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे तो कौन जाएगा, कौन?
1: तो शाह साहब यहाँ आकर जो पाकिस्तान में मुजीब साहब बेहतर समझते हैं, जो जिनके लिए हम डिवाइड हो जाते हैं, वो हमें आकर क्या देते हैं?
2: वो आपकी बात दूर है, लेकिन राज साहब देखे, मैं अभी जो सिस्टम की बात कर रहा था ना, उसका एक न्यारब्रो का ग्रुप है, एक उसका सूद है,
1: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि आप जाते हैं, आपके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है,
2: और उसके बाद एक आमा का ग्रुप है। अभी अभी अगस्त के आखिर में एक नॉर्थ वेस्ट का ग्रुप वो शुरू कर रहे हैं वहां, हालांकि आमा में और सूदान में ज्यादा लोग नहीं है, सबसे बड़ा ग्रुप नहर, लेकिन वो मुख्तलिफ लोग हैं बैठते हैं मुख्तलिफ, लेकर सारे फार्मर और 67 से ऊपर आपस में बैठते हैं बातचीत करते हैं, थोड़ा सा दो से तीन घंटे का प्रोग्राम होता है वो, दो से तीन घंटे, तो दो से तीन घंटे तो कम से कम लोग बाहर तो निकलते हैं ना, बाहर निकल के ये बड़ी जरूरी घरों से बाहर निकलना होता है, क्योंकि जब आप सीनियर सिटीजन हो जाते हैं तो आपके बहुत सारे मसाइल ऐसे होते हैं कि आपको घरों में बैठ के बीमारियां लगती हैं, तो बेस्ट तरीका होता है कि आप बाहर निकले। तो मेरा ख्याल है इस पर सबको काम करना चाहिए अपने अपने कम्यूनों के अंदर, और जो कम्यूनों के अंदर मुंतखब हुए हैं उनको थोड़ी सी अल्लाह ताला हदायत दे दे, और उनको पता होना चाहिए कि हमारी वोटों से वो मुंतखब हुए हैं, वो कम अज कम इन चीजों के लिए अप्रिशिएट आगे आए और कहें जी आए 15-20 बंदे इकट्ठे हुए हमें ट्रेनिंग बनाते हैं, फिर उसमें आस्था से लोग बढ़ते जाएंगे। तो उसमें एक ही चीज होगी कि भाई चौधराहट किसी की नहीं है, ये सबकी ट्रेनिंग है, और सब आए बैठे काफी पिए बातें करें दो तीन घंटे मखसूस हो हफ्ते में एक दिन, सबका दिल भी खुश हो जाए और सब अपना आके एक दूसरे के साथ बेशुमार चीजें शेयर कर सकते हैं। हम टेलीफोनों पर भी शेयर करते हैं, जब एक दूसरे को देखेंगे तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा।
1: बड़ी अच्छी तजवीज है शाह साहब, आप क्लोज कीजिएगा।
0: जी बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। एक्चुअली बात यह है कि इंसम का मतलब होता है कि जो आप बहुत ही समफोन में बिल्कुल माशरे में अकेले रह जाते हैं, आप उनके साथ जाके बैठ सकते हैं और उनके साथ ट्रेनिंग में मेंबर बन सकते हैं, और गवर्नमेंट जो है ये कम्यून जो है वो उसकी सपोर्ट करती है, उसके पैसे वो देते हैं। जितने ज्यादा मेंबर आपके बनेंगे उतने ज्यादा मेंबर लेडीज हो जेंट्स हो ये उनके लिए वो करते हैं। मसला भी यहाँ पे ये है कि कई लोगों ने, जिनका मुझे इल्म है कि कई लोगों ने ऐसी फेनिक्स बनाकर वो पैसा अपने तीन चार बंदों में चौधराहट में बांट लेते हैं, और उसके बाद मसला जो है वो वही का वही रहता है। वो नहीं चाहते कि कोई और आदमी जो है वो जंप करके इस तरह की चीज बनाए, उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। काउंसलर क्योंकि उन लोगों के अपने होते हैं वो उनको आगे नहीं आने देते, और इस तरह की फाइनिंग नहीं बन रही। लेकिन अब क्योंकि ये फेसबुक पे भी आ रहा है ये, तो ये इस चीज को डैलिश जो है सियासतदान वो भी ये चाहते हैं कि इंटरग्रेशन जो है ये स्टॉप हुई हुई है इन वांदा की तरफ से, इसको बहाल करना चाहिए। और ये इसको बहाल करने का यही तरीका है कि हमें ज्यादा से ज्यादा फोनिक्स बनानी चाहिए जिसके अंदर डैलिश भी आए, दूसरे भी आए, अपने लोग भी आए। ठीक है आप उनका टेबल, आधा टेबल पर वो बैठे हैं, आधा टेबल पर आप बैठे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इससे ज़हनी तौर पे जैसे मजीब कैशी साहब ने कहा, आप बहुत अपने आप को हल्का और चुस्त महसूस करेंगे, और ये आपका सिलसिला बन जाता है। अब हमें ये सोचना छोड़ देना चाहिए कि यहाँ से हम फोनियों के नाम पे पैसे लेके पीछे महल बनाए, इनको अब खत्म होना चाहिए। अब हमें यह काम करना चाहिए कि हमारे आने वाली नस्लें जो हैं वो हमें गालियां देने या बदवाएं देने की बजाय हमें यह कम अज कहें कि हमारे बड़ों ने हमें ये जो चीजें हैं, ये जो बयानात हैं, ये जो लॉज है ये हमें बता कर गए थे, और इससे हम फायदा जो है उन यूट हम कर सकते हैं।
2: जी राजा साहब, मैं एक चीज मेंशन करूंगा क्लोज करने से पहले, ये जो मैं सीसम ग्रुप की बात कर रहा हूँ, ये क्या इनका रोग व्यू आते हैं, ये आके आपको कमून का बताते हैं जी, आप कमून के अंदर आपको क्या क्या सहूलियात हैं, आप क्या क्या मदद ले सकते हैं। बकायदा एक प्रोग्राम होता है दो तीन घंटे का, फिर आपको बताते हैं कि आपके मेडिसिन में कैसे है, यानी कि जो काम हमारे काउंसलरों के हैं वो ये आके कमून से बंदे बुलवा के बकायदा हर चीज बताई जाती है कि ऐसे है ऐसे है ऐसे है, यहाँ तक कि आपने जो फुल मक देना होता है वो कैसे बनाना है वो कैसे करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आके ना वो इन ग्रुपों में आके देते हैं, जिससे लोग खुश होते हैं और लोगों को मजीद मालूमात मिलती है। तो ऐसी चीजों में और ऐसी ट्रेनिंग में हिस्सा लेने से इंसान को फायदा होता है, और मैं चाहता हूँ कि सारे इस पे मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं अक्टूबर के बाद मैं अगर एक ऐसे से मेरी मीटिंग हो जाए नैरोब्रो में, जो नैरोब्रो की हमारी क्रिस है, तो मैं उनसे कोशिश करूंगा कि आप इधर नैरोब्रो के अंदर ऐसी एक कोई इंसान को बनाएं कि जिसमें हम कम अज कम जो लोग हैं ना उनको इकट्ठा बिठा सकें और उसके ऊपर मुख्तलिफ चीजों पर बात कर सकें। मैं कोशिश करूंगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे सीसम है और इसलिए हो सकता है ज्यादा ना बन सके, लेकिन मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा और उससे नुकसान कोई भी नहीं है, बेशुमार आपको मालूम है।
3: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
4: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए, ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ساز دل جب صدا نہیں دیتا کوئی نغمہ مزا نہیں دیتا.

लाख पर्दों में रहूं भेद मेरे खोलती है, शायरी सच बोलती है। मैंने देखा है कि जब मेरी जबां डोलती है, शायरी सच बोलती है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
2: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। समय ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है। जिस तरह हमने सुबह ऐलान किया था कि आज हमारे मेहमान होंगे और हेल्पिंग इम्यूनिटी की जो टीम है वो भी हमारे साथ होगी, फोरमैन भी होंगी और नाइफरमैन भी होंगी। और हमने जो पहले हेल्पिंग इम्यूनिटी के फोरमैन थे साकिब तस्नीम, मैंने इस पिछले हफ्ते में 3-4 बार उनसे राबता किया लेकिन मेरा राबता उनसे नहीं हो सका, वो टेलीफोन उनका अंगेज हो जाता है। बहरहाल हमारी उनके लिए ऑफर है। मैंने टाइगर ग्रुप वालों को भी कहा था कि आप साकिब साहब को कहें, चूंकि वो आपके ग्रुप के हैं, तो उन्होंने कहा जी हम रابطہ करेंगे, वो भी फोन नहीं उठा रहे। बहरहाल उनके लिए अदारा आपकी आवाज का टाइम हाजिर है, आप उसमें शामिल होना चाहें, इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहें तो आप प्रोग्राम में अब भी वो शामिल हो सकते हैं। तो समाइन इस वक्त हमारे साथ आपके अपने अली जावेद, सबा नवाज और नायला वसीम जो हमारे साथ मौजूद हैं। हम सब मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं।
3: शुक्रिया शुक्रिया।
2: अली आपको भी खुश आमदीद कहते हैं।
4: जी बहुत शुक्रिया अंकल आपका और तमाम सामईन को। अस्सलाम वालेकुम।
2: आपको भी खुश आमदीद कहते हैं।
3: बहुत शुक्रिया।
2: तो हम आपसे सबा शुरू करते हैं। मैं चाहूंगा अली आपसे आज आप स्टार्ट करें।
4: जी बहुत शुक्रिया अंकल। जिस तरह आपने अभी जिक्र किया कि हमने पिछले हफ्ते भी जो हेल्पिंग ह्यूमैनिटी के साबिक चेयरमैन थे साकिब साहब, उनको राबता करने की कोशिश की और आज भी आपने राबता किया। हमारी ख्वाहिश यही थी कि वो भी शामिल होते तो गलतफहमियां या जो भी लोगों के जहनों में सवाल है, खासतौर पर जो डोनर्स हैं उनके जो सवाल हैं जो हमें भी आए और आपको भी आए और बहुत सारे इनके हेल्पिंग ह्यूमैनिटी के जो सोशल मीडिया का पेज है उसके ऊपर भी आए, तो वो उनको जवाब दे सकते हैं। मगर बहरहाल जब उनके पास टाइम हो, जिस तरह भी आपने कहा कि वो हमें कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी आपकी आवाज उनके लिए अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं एक दफा फिर खुश आमदीद कहूंगा सबा नवाज को और नायला वसीम को, हमारे लिए बड़ी काबिल मोहतरम है। तो सबसे पहले सबा आपसे हम ये पूछेंगे कि पिछले हफ्ते जो आपने हमें बताया, उस पिछले हफ्ते से लेके आज तक कोई आप लोगों की कोई इम्प्रूवमेंट हुई है, कोई आपके मामलात आगे की तरफ बढ़े हैं, खास तौर पे जो आपकी 1.2 मिलियन की अमाउंट बैंक के अंदर स्टक है उसके बारे में थोड़ी सी मालूमात दीजिएगा, क्योंकि अब लोग जिन्होंने डोनेशन दी हुई है और वो समझते हैं कि 1.2 मिलियन में उनकी भी अमाउंट है, तो वो आप उनको कैसे मैसेज देंगे या सेटिस्फाई करेंगे।
3: जी अली भाई शुक्रिया। मैं आपको ये बता दूं कि पिछले वीक आपसे बात करने तक अभी तक ये हुआ है कि थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में मुझे जाना पड़ेगा और मैं आपको बताऊंगी कि हमारा पुलिस का जो रिपोर्ट हुई थी मुझे 11 मार्च को, पाकिस्तान उस टाइम में बैठी हुई थी जब मुझे पुलिस का फोन आया।

0: चीज को मामले को क्लियर कर सकें। एनीवेज उसका ये हुआ कि पुलिस वाले ने पूरा जब मेरे से आधा पौना घंटा बात की उसने, और फिर उसके बाद एक मेल आती है मुझे साकिब तस्नीम की तरफ से जिसमें वही पुलिस वाला अटैच है और साथ इन सामलिंग ने जहां पे हम हमारा केस चल रहा है वो भी अटैच है और साथ इख्तिशाम भाई जो कि हमारे कैशियर हैं वो भी साथ अटैचमेंट में है सीसी में है, और उन्होंने क्या नाम है ये मेल सबको भेजी जिसके अंदर उन्होंने एक वो हिसाब किताब जो था ना 2017 से लेके 2020 तक का वो उन्होंने भेज दिया, और उन्होंने लिखा कि इसके जो बैंक के रिकॉर्ड्स है ना वो आपको कैशियर या चेयरपर्सन जो है वो प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब ये है कि पुलिस का प्रेशर, जहां तक मेरा ख्याल है क्योंकि मेरी बात नहीं हुई है किसी से, कि पुलिस ने उनको प्रेशर डाला था कि ये आपका काम है आप कोई चीज उनको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो आप दें। एनीवेज वो चीजें जब भेजी गई वहां पे क्या नाम है उनको, तो उसके बाद क्योंकि मैं एज अ चेयरपर्सन मैंने वो इनसमिंग निम्न को मेल किया पिछले वीक और मैंने उनसे पूछा कि क्या आप उन चीजों को यस करते हैं ताकि मैं आगे से भेजूं, क्योंकि मुझे पता था कि वो यस नहीं करेंगे। अली भाई उसकी मेन वजह, जब आप इनसमिंग निम्न से इजाजत नामा लेते हो तो उस इजाजत नामे में ये होता है कि आपकी अगर 50,000 से कलेक्शन बढ़ जाती है ना एक साल की, तो आपने क्या करना होता है कि आपने वो रिवीजर की रिपोर्ट वो मांगते हैं जो कि एक रिवीजर बनाता है, ठीक है, उसके बाद जो सीसी मेंबर्स होते हैं वो उसके ऊपर साइन करते हैं, उस जो रिपोर्ट बनती है उसके ऊपर आपके साइन होते हैं सारे मेंबर्स के कि हाँ जी ये ठीक है। उसके अलावा एक होता है कि अगर आपने वो 50 लेट्स सपोज कि हमने 1,00,000 करोड़ जमा किया, अगर हम वो 1,00,000 करोड़ उस साल के अंदर और उस जिस पर्पस के लिए जमा किया गया है वो वहां पे नहीं यूज कर सकते हैं, मतलब एक साल के अंदर वो उस कलेक्टिंग ईयर में नहीं हुआ है यूज वो पैसे, तो वो अगले साल में अगर जाता है तो आपको दोबारा फिर उस साल की रिपोर्ट बना के भेजना पड़ता।
1: थोड़ा सा आपको कट करूंगा सभा माजरत के साथ, मुझे ये बताइएगा क्योंकि हमने तो देखा है बल्कि एक अच्छी रिपोर्ट सी थी हमारी सबकी नजर में हेल्पिंग ह्यूमैनिटी की, क्या आप लोग अपने हर साल का, जब से हेल्पिंग ह्यूमैनिटी लॉन्च हुई है आपने अपने हर साल की जो है वो रिपोर्ट्स फाइनेंशियल रिपोर्ट्स रिवीजर के थ्रू सबमिट नहीं की? अगर तो की होंगी तो फिर तो आप लोगों के पास रिकॉर्ड होना चाहिए, अगर प्रीवियस चेयरमैन के पास नहीं है तो फिर आप वो कॉपी जो है रिवीजर से निकलवा सकते हैं, अगर तो आपका सारा डाटा डॉक्यूमेंटेड है तो फिर तो मेरे ख्याल से इतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए थी सिवाय इसके जो लास्ट।
0: जी बिल्कुल, मैं आपको एक इस सवाल की तरफ मैं आती हूँ, मैं इसको जरा वो दूसरे को ना गौने कर लूं। उसमें ये हुआ कि जब मैंने उनको लिखा तो उन्होंने पिछले हफ्ते मुझे मेल आई है इनसमिंग निम्न की जिनमें उन्होंने आउवीज कर दिया है कि हम जो साकिब तस्नीम ने हमें चीजें भेजी हैं वो हमारे लिए उनको आउवीज करते हैं हम ना, अब हम दोबारा से एच एच एजेंसी है वो बनवा रही है रिवीजर से ये चीजें। जो आपने अभी सवाल पूछा ना, आपको याद होगा कि हम हमेशा हर चीज में कहा करते थे कि हमारे स्टेट्स रिवीजर है जो कि हमारी रिपोर्ट्स बनाता, और ये अगर आप एच एच के पेज पे भी जाके देखें तो वो लगी हुई है रिपोर्ट्स, लेकिन उन रिपोर्ट्स में और जो इनसमिंग निम्न की रिपोर्ट्स हैं इनमें फर्क है। इनसमिंग निम्न की रिपोर्ट में आपने लिखना होता है आपने कितना कलेक्ट किया, आपने कितना यूज किया, उसमें से एडमिनिस्ट्रेशन के जो थे खर्चे मतलब जैसे बैंक के गब्बिया हो गया या फिर कलेक्टिंग बॉक्स हमने बनवाए या कुछ भी ऐसे, वो एडमिनिस्ट्रेशन के गब्बिया निकाल के उसके बाद आपने कितने पैसे थे जो आपने इकट्ठे किए और वो कहाँ पे भेजे गए, जिस पर्पस के लिए इकट्ठे किए गए उसमें, वो रिवीजर की रिपोर्ट कभी भी नहीं बनी और इस चीज का हमें बिल्कुल इल्म नहीं था। डे वन से लेके मैं आपको बताती हूँ आज से 3 महीने पहले शायद मुझे पता चला है, और वो भी इसलिए मुझे पता चला है कि मेरी एक्सेस हुई है क्या उसको कहते हैं एच एच के ई बॉक्स में, ठीक है, जब एच एच के ई बॉक्स में मेरी एक्सेस हुई है तो मुझे पता चला कि एच एच तो पुलिस ही अनमेल हो चुकी है, और वो किस लिए हुई है क्योंकि साकिब तस्नीम ने 2017 से लेके 2020 तक कोई एक भी रिवीजर की जो होती है जो वो बनाता है क्या नाम है, क्योंकि हमारे ऑफ कोर्स 50,000 से ऊपर हमारी हुई है ये क्या नाम है, अगर उसने भेजी भी है तो वो मंजूर नहीं हुई है, लेकिन उसने कभी भी रिवीजर की रिपोर्ट बना के नहीं भेजी है।
1: तो ये नहीं कि अब ये जितनी भी आप स्टेटमेंट या आप रेडियो के ऊपर अपना मैसेज दे रही हैं तो ये आप बकायदा जो

0: 2040 में आप लोगों का केस चल रहा है, तो आपने ये रिटर्न उनको स्टेटमेंट दी है या देंगे कि ये इस तरह हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं
1: जी
0: है
1: बिल्कुल
0: ये सर?
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखें अली भाई, मैं आज जो कुछ भी यहाँ पे कह रही हूँ, पहली बात रमजान का मुबारक महीना है, दूसरा हम रोजे में है, तीसरी बात ये किसी पे पर्सनल अटैक नहीं है, ये बहुत प्रोफेशनलिज्म है, क्योंकि अगर देखा जाए तो हम तो इस चीज को छोड़ के बैठ सकते हैं। मैंने पुलिस से पूछा अगर आज मैं रिजाइन दे दूं, तो उसने कहा तो तुम्हारा इसमें कोई हाथ नहीं रहता है, ठीक है, हम तुम्हें चार्जेस नहीं कर सकते क्योंकि तुम रिजाइन दे दोगी। मसला ये है अली भाई कि हम अगर ये चीजों को अभी चल रहे हैं और एक मैं औरत होने के बावजूद ये पुलिस चार्जेस ये सब कुछ मेरे पे हो चुके हैं, तो आप ये सोचें कि हम किस लिए कर रहे हैं कि हम इस चीज को बचा सकें, इस जो 1.2 मिलियन लोगों का है वो किसी तरीके भी हम उसको बचा के सेव करके, क्योंकि 1.2 मिलियन में से अब जो हमें रिवीजर की रिपोर्ट्स बनवानी पड़ेंगी उसका भी काफी भारी खर्चा होगा, ठीक है, क्योंकि रिवीजर जब आप ऐसे मुसीबत में फंसे होते हो, आपको पता है हमने रिवीजर से हमारी जो जितने कैशियर थे ना पुराने, उन सब की टीम बैठी हुई है इस टाइम ये रिपोर्ट बनाने के लिए।
0: हमारी तो अभी भी यही ख्वाहिश है, हमने शुरू में भी कहा के क्योंकि ये एक बड़ी रिनोन और बड़ी इसकी अच्छी रिप्यूट थी हेल्पिंग ह्यूमैनिटी की, तो साकिब साहब जो हैं वो अभी भी चाहे बाद में भी नेक्स्ट वीक में भी जब भी, ताकि ये मामला जो हैं वो बड़े खुश असलूबी से हल हो जाए, क्योंकि हम सब लोगों का इसमें स्टेक हो या ना हो, मगर वो जिन लोगों ने इतने पैसे दिए जो देना चाहते हैं या जो अभी तक दे रहे हैं उन लोगों को डेफिनेटली कंसर्न है। अभी आपने एक जिक्र भी बल्कि किया कि कुछ एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस भी आप लोगों के इसमें होते हैं, मगर जहां तक हमने कुछ आप लोगों की प्रेजेंटेशंस को पास्ट में देखा था तो उसमें तो ये था कि शायद आप लोगों की जीरो जो है वो कॉस्ट होती है एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस की, अगर मैं मुझे सही याद पड़ता है, तो आप इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस ये किस चीज के हैं, क्योंकि जो जिस तरह मुझे पता है कि शायद आप लोगों के कोई एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं होते थे, ऑलमोस्ट नहीं होते थे।
1: जी मैं आपको बताती हूँ अली भाई, ऐसा है कि ये जो मैंने आपको बताया ना एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस की ये बात हो रही है, इसके एक और भी मैं आपको बड़ा एक और भी फैक्ट बताते हैं, लेकिन अगर जो बात मैंने की और आप उस पर सवाल पूछ रहे हैं उसमें ये होता है कि जब आपने इन समनिंग निर्णय को अपनी रिपोर्ट पेश करनी होती है ना, उसमें ये रिपोर्ट बनती ऐसे है कि अगर आपने कितना पैसा इकट्ठा किया उसमें से कितना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए गया, एडमिनिस्ट्रेशन ये रिपोर्ट की बात हो रही है, ये हमारे एचएच की एडमिनिस्ट्रेशन की फीसिस की बात नहीं हो रही, लेकिन वैसे आपको बता रही हूँ कि जो उनसे एडमिनिस्ट्रेशन की बीच में से काट के उसके बाद कितना पूरा मुनाफा हुआ और उस मुनाफे को आपने किस जगह पे यूज किया, ये रिपोर्ट मांगती है, ठीक है। लेकिन जहां तक आप बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के चार्जेस की, तो ये वाकई सही बात है कि एचएच हमेशा से उसका पूरा फोकस रहा है कि वो मिनिमेल करे, और इसी बात पे जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुए साकिब तस्नीम के साथ, उनमें से एक वजह ये भी थी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस की, कि कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस आ रहे थे जहां पे मेरे पास वो एसएमएस भी हैं, हमने आपको याद होगा COVID-19 ये जब शुरू हुआ था तो हम लोगों ने 2020 में एक कंपेन चलाई थी फूड पैकेज की, और उन फूड पैकेज में जिस अदारे को साकिब तस्नीम की और हमारी वहां से थोड़ी सी बहस स्टार्ट हुई, मेरी मोस्टली हुई, कि वो जो अदारा था वो अपने 500 रुपीज चार्जेस कर रहा था सिर्फ वो पैकेज डिलीवर करने का, और मेरा यही, और ये मेरे पास एसएमएस पड़े हुए हैं जो हमारी बात होती रही है, ये पिछले रमजान की बात है जहां पे मेरा यही मौकफ था कि आप जब लोगों से 220 करोड़ ले रहे हैं, ये मैंने रिटर्न लिखा हुआ है, तो आप लोगों को बताएं कि आपका 20 करोड़ जो उनसे 500 करोड़ है ना वो आपके एडमिनिस्ट्रेशन पे जा रहा है।
0: थोड़ा सा मुझे बताइएगा, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, क्या आप लोगों का पाकिस्तान में खुद से भी तो छोटा मोटा कोई सेटअप था या कोई आपने कोई छोटा सा ऑफिस बनाया हुआ था, तो क्या ये सारे जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इनकी आप जिक्र कर रहे हैं, तो क्या ये वहां पे आपकी अगर कोई अपनी टीम थी मैं क्योंकि गेस कर रहा हूँ, तो क्या वो खुद नहीं हैंडल कर सकते थे या आप किसी?
1: नहीं, ये हमारी अपनी टीम नहीं थी, हमारा एचएच का हमेशा से दूसरे लोगों के साथ हम लोग काम करते रहे, जैसे अखुवत का, हाँ ये है कि अखुवत का हमारा एक गुजरात में एक वो था क्या उसको कहते हैं, कर्ज हिस्सा का एक छोटा सा ऑफिस हम लोगों ने वहां पे स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन उसका ये फूड पैकेज के साथ, क्योंकि देखें जी जब फूड पैकेज जाने होते हैं तो वो पूरे पाकिस्तान के सारे सूबों में हमारी कोशिश होती है कि सारी जगहों पे जाए, सिर्फ एक इलाके को उसका वो ना मिले ना। तो ये एक और अदारा था जिसपे इन्होंने वो 500 रुपया एक पैकेट को डिलीवर करने का लेते थे। और मेरा साकिब तस्नीम से ये सवाल था कि जब 220 करोड़ एक बंदा पैकेज का दे रहा है, आप रिक्लेम कर रहे हो कि सारे पैसे गरीबों को जाएंगे, लेकिन क्या आप उनको बता रहे हो कि आपके 20 करोड़ वो सिर्फ पैकेज डिलीवर करने के लिए ले रहे हैं? 500 रुपीज अली भाई एक अमाउंट है, आप सोचे ना, अगर हमारे 2400 पैकेट थे ना,
2: 2300
1: हमारे 2300 पैकेज हमारे गए थे, आप सोचें 500 रुपया एक पैकेज के पीछे अगर हम, क्योंकि तकरीबन 200 पैकेज के बाद आई थिंक कि मैंने 400 पैकेज के बाद मैंने सवाल खड़ा कर दिया कि जी ये 500 रुपया एक पैकेज के पीछे है, आप हिसाब लगाएं 20,000 रुपया बनता है अगर ऐसे, या 20,000 बनता है मेरे हाल में उसका 500 रुपए का। तो मेरा ये सवाल था कि सिर्फ पैकेज डिलीवर करने के ये इतने ज्यादा चार्जेस ले रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये इट इज टू मच ना। और वहां पे हमारी एक समझें कि इतनी रात को रोजा खोलने के बाद मेरी बहस शुरू हुई और वहीं पे सहरी हो गई थी, जिसमें ये मैंने कहा था कि 500 रुपया आप लोगों को या तो बताएं कि आपके 20 करोड़ हैं जो उनसे वो एडमिनिस्ट्रेशन पे जा रहे हैं, और अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर हमें कोई ऐसा अदारा ढूंढना चाहिए जो कि अल्लाह के लिए फी सबील अल्लाह काम कर रहा हो।
3: मैं सवा आपको रोक रहा हूँ, एक बात को जरा क्लियर कर दें, कितने पैकेज, अगर एक पैकेज पे 500 रुपया जाता है तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा हिसाब किताब हम जरा करेक्ट कर ले, कितने कितने हजार पैकेज आपने दिए थे?
1: 400 पैकेज उस अदारे को गए थे, जिसके बाद मैंने ये सवाल उठा दिया था कि 500 रुपया टू मच है मतलब पैकेज के लिए। उसके बाद हमारी ना वोटिंग स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि मैंने
3: अगर इतना आप प्रेशर कहें कि 400 पैकेज गया था तो 500 करें तो ये तकरीबन बहुत सारे पैसे बनते हैं।
1: जी बिल्कुल एग्जैक्टली,
3: ये तकरीबन 2 लाख के करीब बनते हैं।
1: हाँ जी,
2: उस टाइम के मुताबिक ये तकरीबन 1.5 लाख बना था, जिसपे हमें बहुत ज्यादा एतराज था कि यही 1.5 लाख गरीबों के 5,000 3,000 के पैकेजेस चल रहे हैं, कितनी फैमिलियों के घर
0: दिए जल जाते हैं। 2400 पैकेज यानी के पूरा बांटते तो इसका मतलब है कि 1.2 मिलियन नहीं, अगर आप
1: जी एग्जैक्टली
0: आपको 1.2 मिलियन आपका उधर चला जाना था, तो ये तो मैं चले थोड़ा नाइला भाभी को भी लेते हैं इसके कन्वर्सेशन में। तो मैं ये पूछ रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के पास, जैसा आपने बताया कि पिछले साल से आप लोगों की, आप प्रेसिडेंट थी और बॉडी चेंज हो चुकी थी, तो क्या ये जो तंजीमी मामलात हैं जिसमें खासतौर पर डिसीजन मेकिंग है, ये तो आप लोगों की जो है वो एग्रीमेंट से या आप लोगों के सिग्नेटरी होनी चाहिए कि जी अगर कोई तंजीम ने कोई फैसला किया तो जब तक प्रेसिडेंट या नायब प्रेसिडेंट या जो जो फाइनेंस सेक्रेटरी है वो इस बजट को अप्रूव नहीं करेगा तो ये नहीं हो सकता, आगे नहीं जा सकता। तो ये कैसे मुमकिन हुआ कि आप प्रेसिडेंट हैं या आपकी दूसरी टीम और चेंज हो चुकी है, उनको पता ही नहीं और वहां पे जो है आप इतना पैसा जो है वो दे रहे हैं या आपका प्लान है 1.2 मिलियन देने का, ये कैसे पॉसिबल है?
2: जी मैं आपको ये वाजे कर दूं कि ये प्रेसिडेंट बनी है सभा और मैं नायब प्रेसिडेंट बनी हूं जुलाई में, और ये बात चल रही है पिछले रमजान की, जबकि फॉर्मर प्रेसिडेंट साकिब तस्नीम साहब ही थे और कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई थी और ये सारी बातें शुरू हो गई थी। उसमें फिर हमने, इन्होंने जो फैसला किया था जिस तंजीम के साथ, ये सारे पैकेजेस उधर देना चाहते थे, और जब हमने अंदाजा लगाया कि टोटल हमारे 3300 पैकेजेस डिलीवर हुए हैं पिछले साल रमजान पैकेजेस, ठीक है, तो इन्होंने कहा कि सारे देने हैं, लेकिन इन्होंने 400 तक का उनको यस कर दी थी इदारे को, जिनके जो 500 करोड़ रुपए ले रहे थे, सॉरी, ठीक है। हमने उधर जाके कॉन्फ्लिक्ट शुरू की कि हम वोटिंग करेंगे, हम फिर ऐसा इदारा ढूंढने जाते हैं जो बिल्कुल डिलीवरी फीस ना हो, ठीक है, हम यानी कि वो फीस अभी लीला करें। फिर हमने 2300 पैकेजेस अकूवत को आई थिंक, और तकरीबन 1000 पैकेजेस कजाली को ये हमने भेजे बाद में, जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन फीस जीरो थी। तो ये क्योंकि उन्होंने जिद लगा ली थी हमसे और उनका यही मौकफ था कि नहीं जी हमने उन्हीं को भेजने हैं, इस बात से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई, ये मार्च की बात है। और ये जो आप कह रहे हैं, हम जब
0: मेरा कंसर्न तो यही है, चलें पिछले भी जितने भी सालों से आपकी तंजीम चल रही है, तो यहाँ पे तो यही सवाल उठता है, तो क्या जो इतने मामलात होते रहते हैं या होते रहे हैं खासतौर पे फाइनेंशियल, तो क्या आपकी पूरी टीम में इसकी जो अप्रूवल नहीं ली जाती थी, खासतौर पे जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं कि जी हम ये करने लगे और हमारी ये कॉस्ट है जो अब हम डिलीवर करने लगे हैं, तो क्या ये नहीं ली जाती आपसे पहले?
2: देखिए, शुरू में हम लोग काउंसिल का हिस्सा नहीं थी, ठीक है, तो हमारे सीसी के मामलात होते थे, ये काउंसिल में डिस्कस होती थी चीजें। हम लोग काउंसिल में आई है लास्ट 1.5 साल से, जब तकरीबन इनके रिजाइन देने से 1 साल पहले हम काउंसिल में आई है। जब से हम काउंसिल में आई है तब से हमने सवाल करने शुरू किए। एक बात आप गौर कीजिएगा, ऑर्गेनाइजेशन जब से बनी है ना, साकिब तस्नीम साहब ही उसके प्रेसिडेंट रहे हैं। अब जब वो चीजें लोग उनसे राब्ता करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग या जो भी, वो हमें तो नहीं करते थे ना, वो पीआर मैनेजर को या जनरल सेक्रेटरी को तो नहीं करेंगे, वो तो उन्हीं को करते थे राब्ता। इनका सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि इन्होंने हमें शेयर ही नहीं की, ना कैशियर किसी के साथ, ना किसी जनरल, मतलब कोई टीम में ये बात शेयर ही नहीं हुई, जिसकी वजह से मामलात खराब हुए। जैसे ही सभा बनी है प्रेसिडेंट, तो उनके पास जब एसएस आई, पहले तो उनके पास एसएस ही नहीं थी, ठीक है, एचएच के ई बॉक्स से जैसे ही उनके पास आई तब ये सारे कट्टे खुले हैं ना कि इन्होंने 2017 से पेपर वर्क खराब किया हुआ है। मसला ये था कि वो अपने आप को माशाल्लाह बहुत पढ़ा लिखा और एक अच्छा मंझा हुआ डेनमार्क का कारकुन समझते हैं, वो मेरे ख्याल में हमसे शेयर इस वजह से नहीं करते थे कि उनकी ये जो नालायकी हुई है या जो पेपर वर्क खराब हुआ है वो सबके सामने आएगी तो लोग कहेंगे ही इज नॉट अ गुड लीडर एंड नॉट अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, तो फिर तो उसकी जगह नहीं बनती है।
0: नहीं मतलब मेरा उनसे तो चले थोड़ा सा वो इस बारे में जिस आप बता रही हैं इख्तलाफ हम कर सकते हैं, मगर मेरा इख्तलाफ तो उस वक्त की जो आपकी सीईसी के मेंबर थे, आप तो चले साल दो साल पहले आई हैं, तो उन लोगों से भी उतना ही बनता है कि क्या उन लोगों ने उस वक्त की टीम ने कभी इस बारे में पूछा ही नहीं, जिक्र ही नहीं किया कि ये सारे डिसीजन आप खुद ले रहे हैं, क्योंकि जवाब दे तो जिस तरह भी आप पुलिस में जो है वो सभा जवाब दे हैं या आप लोग हैं, तो इस तरह तो वो लोग भी हो सकते हैं कि बैंक के बैंक में अगर फाइनेंस सेक्रेटरी का कोई नाम है तो वो अगर उसके अकाउंट से ट्रांजैक्शंस होती हैं या उसके नाम से होती हैं, तो ये सारी चीजें तो एक कलेक्टिव टीम का हिस्सा होना चाहिए। तो मेरा तो कंसर्न फिर उनसे भी बनता है जो पुरानी टीम के सीसी के लोग थे कि उन लोगों ने ये सवाल उस वक्त क्यों नहीं उठाया कि हमें ये बातें शेयर क्यों नहीं की जाती अगर नहीं की जाती थी तो।
2: अच्छा अली भाई, इसका जवाब मैं दूंगी। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि हम थे 18 लोग जिन्होंने स्टार्ट किया था, जिसमें दूसरे कैशियर भी आए, दूसरे लोग भी आए, ठीक है, ये चीजें शेयर होती रही। और जिन जिन लोगों से ना ये साकिब तस्नीम इस दायरे को छोटा करता गया, ये कुछ लोगों को साथ लेके अपने साथ चलता गया और हम लोग ब्लाइंडली उस पे ट्रस्ट करके चलते रहे। जहां पे हमारी गलती है वो है हमारा ब्लाइंडली ट्रस्ट उस बंदे पे, हम उस पे चलते रहे क्योंकि हमें वो इन्वॉल्व रखता रहा। हमारे यहाँ था वोटिंग का सिस्टम, ठीक है, हम उसके पीछे लगे हुए वोटिंग पे यस करते रहे। और पैसों के मामले में अगर आप कहें ना कोई गड़बड़ हुई है, मेरी एक्सेस नहीं है अकाउंट में, मैं आपको देख के नहीं बता सकती हूँ, लेकिन ये बात छोटी है कि उसमें कोई ऐसा नहीं हुई। जब भी कोई फिनेंस का चीज हुई है ओके, तो वो ये हुआ है कि हमारा एक प्रोजेक्ट आया, प्रपोजल आया, हमने उसको चलाया, जितना पैसा आया है वो सारा अगर हमें डोनेशन इकट्ठे हमने किए हैं वो साकिब तस्नीम को किए हैं, अकाउंटों में डाले हैं, वहां से वो जितने पैसे की रिपोर्ट बन के आई है वो साकिब तस्नीम मोस्टली बनाता था, क्योंकि वो कहता था कैशियर्स को कि आप लोग जो उनसे आप लोग कैशियर का रोल ले लो, मैं साथ आपके पूरी हेल्प करूंगा। जब वो बन के आते थे हमारा ब्लाइंडली ट्रस्ट था, अच्छा जी इतने पैसे आए ये हमने भेजने हैं, हम लोग गुक हैंड किया करते थे और वो जाया करते थे। दायरा छोटा होता गया क्योंकि जो लोग सवाल उठाना शुरू हुए ना, उनको इतना कुछ जिच कर दिया गया कि एंड में वो लोग दिल लगा के काम नहीं किया करते थे।
0: देखिए बात मेरा चले एक और सवाल इसमें से निकला है, बात ये है कि जब आप लोगों ने वोटिंग के थ्रू ही हर चीज को ओके किया और आप लोगों को अकाउंट की एक्सेस ही नहीं है, तो अगर मेरे अकेले के पास अकाउंट की एक्सेस है और मैं जो है आपको ये बताता हूँ कि जी फर्ज करें 1 लाख करोड़ आया है और शायद इससे ज्यादा हो या कम होगा, मगर मैंने कागजों में 1 लाख की आपको रिपोर्ट दे दी और पता ही नहीं है कि कितने जो है वो इसके ऊपर पैसे आए हैं, तो आप लोगों ने ब्लाइंडली उसके ऊपर साइन कर दिए, तो फिर तो जब एक बंदे के पास रिपोर्ट
1: अली भाई साइन की बात नहीं है, साइन की बात नहीं है। एक बंदा बता रहा है हमारे पास 1,00,000 करोड़ आया, क्योंकि कुछ चीजों का तो हमें साथ साथ पता होता था, जैसे डोनर्स, स्पॉन्सर, टिकट्स की सेल, ये तो हमें सारी बात है, रिपोर्ट हम दिया करते थे, इन चीजों का हमें पता होता था। अब वो जो बड़ा डिब्बा लेके हम घूम रहे होते थे, हमें तो नहीं पता कि उसमें 10,000 है या 50,000 है, ठीक है। तो चैरिटी का जो बेसिकली काम होता है वो एक ट्रस्ट पे होता है। आप ये नहीं कह सकते कि चैरिटी का काम, क्योंकि देखे मुझे कोई 10,000 रुपया दे गया, ठीक है, 10,000 करोड़ दे गया, तो साकिब तस्नीम को तो नहीं पता कि वो मुझे 12 दे के गया या 10 दे के गया। ये तो चैरिटी का काम तो है ही, ट्रस्ट पे है, जो देता है उसका भी ट्रस्ट होता है, जो लेता है उसका भी ट्रस्ट होता है, और जो आगे से भेजने वाले हैं उन पे भी ट्रस्ट होता है। ट्रस्ट के बगैर तो चैरिटी चल ही नहीं सकती अली भाई।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें देखें हमारा इसमें कोई अल्लाह माफ करे
1: जी, मैं आपको एक चीज कंप्लीट करना चाह रही हूँ। ये जब फैसले होते थे ना अली भाई, तो जू जू लोगों को इसने जिज करना शुरू किया और लोग छोड़ के बैक ऑफ। आज लोग जो कुछ मर्जी के, हम 18 से जब टीम रहेगी ना 5 या 6 की, जब लास्ट हमारे 3-4 लोग निकले ना, उस दिन मुझे याद है कि मैंने बड़े क्लियर अल्फाज में इनको कहा था कि ऐसा मत करें, ये ऑर्गेनाइजेशन डूब जाएगी, वो नहीं काम करते हैं लेकिन कम से कम मीटिंग्स में आते हैं, करते हैं, आप लोग खुदा रहा है ये बंदों को मत निकाले। उन्होंने कहा मैं तो नहीं निकाल रहा हूँ, वो खुद रिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनका था कि इसको बिल्कुल छोटा करने का। कॉन्फ्लिक्ट पता है कहाँ से स्टार्ट हुआ कॉन्फ्लिक्ट अली भाई? आज मैं आपको बताती हूँ कि शहरयार खान अफरीदी 2019 में आया, आई थिंक, या मैं उस टाइम पे बीच में शामिल नहीं उस इवेंट में हो सकी थी, मेरी मदर बीमार हो गई थी। मार्च में हमारी मीटिंग हुई है या फरवरी में 2020 की ये बात है, ठीक है, उस दिन मेरी हुई है। तो मैंने वहां पे गए, हम बात कर रहे थे, तो बच्चों का रमजान का वो शुरू हो चुका था कि बच्चों ने, यंगस्टर ने स्टार्ट करना है। तो वहां पे मैंने इनको कहा कि साकिब भाई आप मुझे बता सकते हैं कि आप बच्चों की एक टीम को, आप कहते हैं इस टीम ने हमको आगे लीड करना है, ये कॉन्फ्लिक्ट का पहला वो मैं आपको बीज बता रही हूँ, आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा से बहुत एचएच में भी इस चीज के लिए रही हूँ और सब लोग मुझे कहते हैं, मैं बहुत ब्लंट हूँ, मैं मुंह पे बोल देती हूँ जो कुछ मैंने, और इस बात को साकिब भाई कब भी बहुत अप्रिशिएट किया करते थे, लेकिन जो उन पे सवाल उठना शुरू हुए तो उन्होंने वो कर दिया। इससे पहले नायला से मैं रस्ते में जाते हुए बात कर रही थी, नायला ये मेरा इश्यू है, इसने कहा अगर तू बात करेगी ना तो समझ ले साकिब तेरे खिलाफ है। मैंने कहा हो जाए लेकिन बात तो मैं करूंगी। बात ये हुई कि मैंने कहा कि आप बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चे आगे लेके इसको भरेंगे एचएच को, आपने बच्चों को ये चीज भी नहीं सिखाई कि उन्होंने सीरिया, फलस्तीन और यमन, अफगानिस्तान, ये सारे मुल्कों को उन्होंने रखा है गमतैन मिते में, पाकिस्तान कहाँ है? क्या हमारे मुल्क में भूख नहीं है? तो इसने जब मैंने ये सवाल पूछा तो वहां पे एक बहस छिड़ गई, आप इतनी क्यों हैं, क्या नाम है, अफगानिस्तान के खिलाफ? मैंने कहा भाईजान मैं अफगानिस्तान किसी और के लिए खिलाफ नहीं हूँ, मेरा आपसे सवाल है कि पाकिस्तान को आप क्यों भूले? अगर आप बच्चों को नहीं सिखाएंगे कि पाकिस्तान को, तो हम तो बच्चों के हाथ में नहीं दे सकते हैं ये चीज, क्योंकि आपने बच्चों को बताना है, वो हमेशा से उनका अरब ममालक की तरफ हो गया है। आप उनको बताएं कि कश्मीर को भी इस, क्या नाम है, फलस्तीन जितनी जरूरत है। यहाँ पे एक बात करके मैं समझी कि मैंने अपने दिल की बात कर दी और मैं घर आ गई, लेकिन वो ग्रज भाई के दिल से नहीं गई, साकिब तस्नीम ने वो ऐसी ग्रज बांधी कि उसके बाद हर चीज पे जब भी मैं कोई बात कहती थी ना वो मुझे एकदम स्टॉप लगाते थे। उसके बाद दूसरी मेरी इनसे बहस हुई ये रहमा के पैकेज पे 500 रुपए पे, तीसरी मेरी उनसे रमजान के अंदर ही बहस हुई कि इन्होंने पहले रमजान मिते को किया ऑनलाइन, उसके बाद इन्होंने रमजान मिते जब नंबर 2 किया तो मुझे किसी ने फोन करके पूछा ये नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने बीच में ग्रुप में लिखा सीसी में कि हम कैसी सीसी हैं कि हमें पता ही नहीं है कि, उसके बाद ये फरवरी या मार्च की बात है, फरवरी और मार्च के बाद साकिब तस्नीम ने हर चीज का फैसला खुद करना शुरू कर दिया। उसने कहा वाटर प्रोजेक्ट्स, मैंने कहा किधर से वाटर प्रोजेक्ट्स आ गए और किसने कहा कि आपने फलां अदारे को, उसी अदारे को, उस अदारे पे एक्सट्रीम का रुख जाना है साकिब तस्नीम का, और मुझे नहीं पता है, हालांकि उस अदारे की वजह से हमारे पाकिस्तान में भी साकिब तस्नीम को मुख्तलिफ सियासी और क्या नाम है समाजी शख्सियात ने उसको वार्न किया था कि ये अदारा ठीक नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका पता नहीं क्या उस अदारे में रुझान है। मैंने कहा ये वाटर प्रोजेक्ट्स के पैसे कब आए और आपने कब फैसला किया कि रहमा को देना, नहीं ये नायला ने बात की थी, और वहां पे साकिब का तूफान बदतमीजी शुरू हो गया, उसने इतनी बुरी लैंग्वेज शुरू कर दी, और फिर जाहिरी बात है हम सब आ गए कि आप फैसले कर रहे हैं और अपने बिना पे कर। ये मार्च के बाद जब मेरे अफगानिस्तान की बात हुई और बच्चों की बात हुई ना, उसके बाद अली भाई ये एक्सकलेट करता रहा, और ये इतनी बड़ी स्टोरी है कि मैं आपको बताऊं तो आपके मेरे ख्याल में अगले महीने के पूरे चैनल वो कहना मैं बुक है इस चीज के लिए, लेकिन छोटी छोटी छोटी चीजें।
0: और हम चलो हमारी देखें यही ख्वाहिश है और पूरी कम्युनिटी की भी यही ख्वाहिश है कि ये मामला खुश असलूबी से हल हों। अगेन यानी कि कोई ऐसा वो नहीं है कि इसमें साकिब साहब को पूरा टाइम नहीं दिया गया है, उनसे आपकी कॉल से पहले भी रब्ता किया गया।
1: मैं अभी
0: वही होगा, मगर दबंग जिस दबंग तरीके से आप लोग यानी कि हर चीजों को हैंडल कर रहे हैं, हम समझ सकते हैं कि आपके ऊपर पुलिस के भी चार्जेस हैं। तो बल्कि अभी मैंने, मुझे किसी ने भेजा भी था मीडिया के थ्रू, ये चीजें पता चलती हैं कि फेसबुक के ऊपर शायद उन्होंने अपनी फेसबुक के ऊपर कोई मैसेज भी लिखा था कि शायद आप उनके काम के हवाले से जो है कि लोग जो है वो एक प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। तो अगेन हमने उन्हें पूरा टाइम दिया है, तो जो लोग उन्होंने बल्कि शायद आप लोगों की तरफ पॉइंट करके भी कह के आप लोग अपने मैसेजेस को डिलीट करें, वरना वो पुलिस को इस सिलसिले में रابطہ करेंगे। तो क्या आप लोगों ने अपने मैसेजेस डिलीट कर दिए हैं, या कोई प्लान है आपका, या आप किस तरह इस चीज को देखेंगे जो उन्होंने आपके लिए मैसेज लिखा है?
1: भाईजान मैंने तो उनको पैगाम भेजा था कि भाईजान आप फ्राइडे का इंतजार ना करें, आप अभी करें, मैं आई एम सो रेडी। मैं मेरे पे आगे अगर एचएच की वजह से पुलिस चार्जेस लग गए हैं, उनको क्या लगता है, वो मुझे असल में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं पिछले 5 साल से पुलिस क्या, कि मुझे उनको पता है कि मुझे कोई चीज डरा नहीं सकती, अगर डरा सकती तो इतना हमने इस जगह पे नहीं बैठा। हाँ कुछ लोगों को उन्होंने प्रेशराइज किया है, वो लोगों ने डिलीट किए हैं मैसेज, और फिर दोबारा आके उन्होंने लिखा भी है कि जी हमें अपने फ्रेंड्स के थ्रू क्या नाम है ये डिलीट करवाए गए हैं। तो
0: जिस माशरे में हम लोग आप लोग रहते हैं, क्या इस माशरे में इनका कानून, डेनमार्क का कानून इतनी भी आजादी नहीं देता कि आप अपनी पॉइंट ऑफ ओपिनियन या आपका ओपिनियन उसे आप शेयर कर सकें, या आप फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसके उसको मलहूजे खाते रखते हुए आप किसी भी सोशल मीडिया के फेसबुक के ऊपर कॉमेंट या कुछ भी आप या किसी के ऊपर आप कॉमेंट कर सकें, क्या इनका कानून इतनी भी इजाजत नहीं देता जिस तरह का मैसेज वहां पे शेयर किया गया?
2: जी अली भाई देखिए कानून तो बिल्कुल इजाजत देते हैं, हमें भी पता है आप भी यहाँ के शहरी हैं, हम भी यहाँ के शहरी हैं, यहाँ पे जितनी आजादी है अपनी बात कहने की आई थिंक कहीं भी नहीं है। बात यह है कि सबसे बड़ा सबूत ही यही है कि आप देखें कि वो हमें थ्रेट कर रहे हैं एचएच के अपने पेज पे कि एचएच ये ना करे, हमने उनको सोचना चाहिए, इतने समझदार पढ़े लिखे आदमी है, हमने एचएच के पेज के ऊपर ये इंफॉर्मेशन दी, वो भी इस वजह से कि लोग हमें कह रहे थे कि आप इवेंट क्यों नहीं कर रहे हैं रमजान शरीफ में, हमें बहुत सारे मैसेजेस इनबॉक्स में आ रहे थे, लोग फोने भी करते थे, अब ये जरूरी हो गया था कि हम अपने पेज के ऊपर ये इंफॉर्मेशन डाले। तो आप देखें कि जब वो इंफॉर्मेशन डाली गई और उसमें कुछ लोगों ने जब ये लिखा कि ये अपने कमेंट्स दिए साकिब के खिलाफ, तो उन्होंने उधर जाके उनको थ्रेट करके अपने, उनका पता है क्या काम है, वो जहां भी कोई प्रेशराइज बंदा उनको मिलता है ना, किसी का चाचा, किसी का दोस्त, किसी का पप्पा, किसी का कोई ससुराली, वो उनसे कह के वो प्रेशर डलवा रहे हैं कि वहां से आप साफ करें। देखिए उन्होंने साफ कर दिए, लेकिन आप इससे बड़ा और सबूत मीडिया के आगे क्या होगा, कि आप आज भी जाके देखें उन्होंने लिखा हुआ है कि मेरे से प्रेशराइज करवा के ये हटवाया गया है और मैं अब दोबारा ये लिख रहा हूं। तो आप बताएं इसे, अब मतलब औरतों को देख के कि वो स्टैंड ले रही हूं और वो खड़ी है इंसाफ के साथ, जो आपने इतना गंद किया उसको वो साफ करने की कोशिश में है, वरना हम भी आराम से रिजाइन दे के बैठ जाएं। मगर वो जो 1.2 है जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आती है ना, मैं हैरान हूं साकिब तस्नीम कैसे सो जाता है, कि उसको पता है कि उसके दौर में ये सारा कुछ खराब काम हुआ है, तो वो सो जाता है और कम्युनिटी को कह रहा है कि आओ दोबारा मुझे ये डोनेशन दो। मतलब इतना बेवकूफ कैसे बना सकता है वो किसी को, कि जिसका सवाल कम्युनिटी उनसे नहीं करे कि पहले आप 1.2 का तो हमें जवाब दें, आपको क्या इतनी जल्दी थी कि आज आप डीएमएड की बिसाखी लेके दोबारा उन इवेंटों पे खड़े हो रहे हैं और आप एचएच के सारे प्रोजेक्ट चुरा के,
1: सारे प्रोजेक्ट अली भाई
2: हजूर का प्रोजेक्ट एचएच का था ये चुरा के, इन्होंने हमारा डेटा चोरी किया, इन्होंने हमारी मेंबरशिप चोरी की क्योंकि एसएससी इनके पास थी, तो क्या ये चार्जेस कम है इनके ऊपर?
1: आप खुद सोचिए इन चीजों को कि कम्युनिटी को फिर उनकी आंखों में आप वो झोंक रहे हैं कि जी मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ सेल्फ फेम के लिए। अगर आपके दिल में इतनी ही अल्लाह की मोहब्बत थी और एच एच का आपको काम इतना ही पसंद था तो आप पहले एच एच को आरे लगाते, उसके मामला सही करते, फिर बेशक आप अपनी फेम के लिए एक नई ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करते। तो ये सवाल कम्युनिटी का भी बनता है कि उनसे पूछे कि उनको नींद कैसे आती है, वो 1.2 लोगों ने जो पैसा दिया वो उनसे सवाल क्यों नहीं करते हैं कि आप वो पैसे के जवाब दे हैं, हम नहीं है वो।
0: डेफिनेटली जी, ये मामलात अगर उनसे मंसूब हैं तो उन्हें इस चीज की पूरी क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए, क्योंकि फेसबुक के ऊपर या और सोशल मीडिया के ऊपर तो क्लैरिफिकेशन वो दे के लोगों को मुतमईन कर लेंगे, मगर जो निज़ाम इंसाफ है जिसमें आप भी आप लोग जिसको फेस कर रहे हैं उसके लिए तो बाकायदा एक एक चीज एक एक पाई जो आप लोगों के अकाउंट में आई और कितनी गई तो वो तो आपने उनको देनी होगी, तो आप क्लियर होंगे।
1: मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ कि आप जितने भी सामीन सुन रहे हैं और आप लोग जहां तक ये कर सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि हम लोग इस चीज में अगर पिस रहे हैं तो किस चीज के लिए पिस रहे हैं? क्या वो 1.2 मिलियन मेरी जेब में जाना है या नायला की जेब में जाना है, या कि ये अल्लाह की रजा के लिए है? हमारा कोई ईगो, हम अपने ईगो को फीड नहीं करते हैं। मेरा अपना ये पर्सनल ओपिनियन है, एच एच से हटके साकिब तस्नीम एक बहुत ईगो पसंद बंदा है, वो अपने ईगो को करता है क्या नाम है फीड कर रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि क्योंकि आप जब किसी इंसान के साथ 5 साल गुजारते हो आपको उसकी खूबियों का भी पता होता है, आपको उसकी खामियों का भी पता होता है। और मेरे लिए ये चीज आज बहुत क्लियर है कि ये इंसान अल्लाह के लिए काम नहीं कर रहा, ये इंसान अपने ईगो को फीड करता है।
0: चलें, हमारी यही दुआ है अगेन, क्योंकि अभी आपने बताया कि साकिब साहब फिर कोई अपना अपना कर रहे हैं जो आज के दिन में हमारी जो है वो इस सिलसिले में नेक तमन्नाएं हर किसी के साथ हैं, क्योंकि यहाँ पे बीसियों तीसियों ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो चैरिटी का काम करती हैं पाकिस्तान में। बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आती है देने वाले के ऊपर कि वो खुद पहले तसल्ली करे कि वो जिसको पैसे दे रहे हैं किसी एक शख्स को या ऑर्गेनाइजेशन को या किसी इदारे को, क्या वो काबिल एतमाद है, यानी आपका पैसा सही मुस्तहिक लोगों तक पहुंचता है या नहीं, ये लोगों को देखना चाहिए। हमारे साथ क्योंकि कुछ और लोग भी शामिल होना चाह रहे थे इस कॉल में, इस ग्रुप में, मगर टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वो शामिल नहीं हो सके, हो सकता है बाद में रब्ता हो तो इंशाल्लाह वो भी करेंगे। तो इसके अलावा अभी आज के लिए आप कोई कम्युनिटी को मैसेज देना चाहेंगी अपनी तंजीम के हवाले से?
3: तो मैं एक बात करना चाहता हूँ अली।
0: जी जी
3: अली, देखें जिस तरह सबा ने बड़ी तफसील से बताया, नायला ने भी बताया कि ये जो 500 रुपया एक पैकेट पे लगता था, उस पैकेट में होता क्या था जिस पैकेट के लिए 500 रुपया दिया जाता है? दूसरा ये जो वो जो साकिब तस्नीम साहब जो कहते थे नहीं इसी तरीके से भेज रहे हैं हमने पैसे, वो कौन सा अदारा था जिसको 500 मिलते थे, वो कंपनी कौन सी? दूसरा ये जो आप कह रहे हैं कि वाटर पंप, ये वाटर पंप कौन सी कंपनी लगाती थी और एक वाटर पंप कितने का लगता था?
1: भाई क्या नाम है, इस चीज के बारे में मुझे कितने का लगता है, मेरे हाल में 5 to 6,000 हमारे पास 1,00,000 करोड़ उस प्रोजेक्ट का पड़ा हुआ है जो वाटर पंप का है, ठीक है, और वो वही कंपनी है जो के जिसपे साकिब तस्नीम की बहुत मेहरबान है, उसका नाम रहमा इस्लामिक रिफंड आई थिंक। और क्या नाम है उसका, ये मसला है कि वो जब साकिब तस्नीम पाकिस्तान अपने टूर पे गया था इससे पहले तो ये बहुत लोगों ने उस पर वाजा किया था कि ये चीज नहीं है। उसके बाद हमारी कुछ वहां पे ऐसी शख्सियात थी जिनको साकिब तस्नीम ने स्पेशल रिक्वेस्ट किया, वो मैसेज भी मेरे पास है जिसमें उसने उनको रिक्वेस्ट किया है कि आप प्लीज ये रहमा का टैक्स के जो इशू है आप उनको किसी तरीके हेल्प कर सकते हैं क्लियर करने में। मुझे समझ नहीं आती साकिब तस्नीम का ऐसा क्या, क्योंकि हमारे लिए तो जितने भी इदारे होते हैं वो काम करने वाले होते हैं, हमारे लिए तो इस चीज का, और पाकिस्तान में एनजीओ का सिस्टम कुछ और है। जो आप बात कर रहे हैं ना कि उस पैकेट में क्या था, उस पैकेट में यही जो जरूरी चीजें होती हैं, दाल, घी, रूह अफजा, खजूरें, चीनी, चावल, और वो कह रहे थे कि जी हम आटा नहीं दे सकते हैं क्योंकि आटा बहुत भारी होता है, तो हम ऐसे करेंगे उनको 1200 रुपया दे दिया करेंगे। उस बात पे भी मेरा कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि आपने 500 रुपया लेना, तो आपसे 12 किलो मतलब 20 किलो आटा नहीं आप पहुंचा सकते उठा के, आपने लेने किस चीज के पैसे हैं? क्योंकि हमारा शुरू से था कि कैश किसी के हाथ में नहीं देना क्योंकि कैश मिसयूज हो सकता है। तो इस वजह से ये भी कुछ बातें थी कि जिसके बारे में था हमारे कंसर्न थे। वाटर प्रोजेक्ट्स का जो उनसे जारी बात है, मैंने आपको जैसे कि बताया मैं इतना डीपली अभी अकाउंट के अंदर जा ही नहीं सकी क्योंकि ये 5 साल का वो था कि मुझे पता चल सके। अभी भी क्या नाम है, पुलिस को भी जैसे मैंने बताया कि आप अपने डाटा से चेक कर सकते हैं कि तब 2 महीने पहले मुझे एक्सेस मिली थी बॉक्स की। सोचिए मैं जुलाई 2020 में चेयरमैनशिप में ली है, और अभी आके आप सोचे अगर 3 महीने पहले जनवरी में तकरीबन 8 महीने बाद मुझे ई बॉक्स के अंदर एक्सेस मिली है। सोचे आप, जब भी उसको रिक्वेस्ट भेजनी, उसने आगे से कैशियर को वो बना देता था, क्या नाम है, कैशियर से थोड़ी बहुत तब उसकी बातचीत थी, उसको वो बना देता था मिडल मैन के तौर पे, मतलब किसी भी चीज का एडमिन बनना है कुछ भी करना है उसने उसको बना देना है, लेकिन मुझे नहीं वो बनाता था।
4: ये जो आप वाटर प्रोजेक्ट की बात करें ना, ये भी उसी कंपनी ने लगाने थे और उन्हीं के साथ इनका MOU जो है वो साइन हुआ हुआ था, और हम लोग इस बात पे परेशान थे कि साकिब तस्नीम तो किसी को 1 मिनट की फेवर देने वाला नहीं है, हम जितना उनको जानते हैं, तो ये उसके ऊपर इतना मेहरबान क्यों है जबकि सब लोग उसको कह रहे हैं। उस वक्त उनके पास नहीं थी वो सर्टिफिकेट की जिसकी वजह से वो बाहर का पैसा ले सके, तो हम लोग इस बात के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई। हम लोग परेशान थे कि ये तो इस चीज को पहले कहते हैं कि ये हमारे लिए हर्डल है क्योंकि हमारा पैसा अगर पाकिस्तान गया वो फ्रीज हो जाना है। तो बहरहाल ये एक मामला तो नहीं है ना, कितने मामले, अफगानिस्तान के लिए पैसे जमा करना, अपने बच्चों को ये ना बताना, ये इस कंपनी के साथ काम करना, अपना मतलब ईगो इतनी कि मार्च में उन्होंने हमें लिखा कि जब तक मैं प्रेसिडेंट हूँ इस कंपनी के साथ ही काम होगा, ये हमारे पास रिटर्न है, इस कंपनी के अलावा कोई भी चीज काबिले कबूल नहीं होगी, यानी उन्होंने खुद फैसला कर लिया था।
1: उसके बाद मार्च के बाद ना, मार्च 2020 से जुलाई जब तक मैं नहीं बनी हूं, उन्होंने हर चीज में वो कहते हैं ना कि मैं आपको शो करूंगा कि मैं हूं, मेरा यहाँ पे वो चलता है, मतलब उन्होंने फिर उसके बाद ना इस चीज को बहुत ज्यादा करना शुरू कर दिया।
4: बहरहाल देखें, अब हम तो खड़े हुए हैं और इंशाल्लाह हक के लिए खड़े रहेंगे। ये अमानत थी, अमानत लोगों की है जो हमारे पास है, हम नहीं भाग सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इसको फॉलो करें और आप लोगों को भी हम अपडेट रखें इस चीज से कि आप क्या हो रहा है और आप मामला कहाँ तक पहुंचे हैं।
3: सबा और नायला, मेरा दोनों से सवाल है कि साकिब तस्नीम तो बड़ा जेंटलमैन और बड़ा हार्ड वर्कर, और मतलब पेपर वर्क वो बहुत अच्छा करते थे, खासकर वो ड्राफ्टिंग जो मिनट्स लेते हैं वो बहुत अच्छा लेते हैं। साकिब की ऐसी तो रेपुटेशन नहीं थी जिस तरह की अभी सामने नजर आ रही है। मैंने साकिब को पिछले 3-4 दिनों में फोन भी किया है, मैं अभी भी साथ भी साकिब को मैंने फोन किया है, कॉल तो जा रही है लेकिन वो अटेंड नहीं कर रहे। अगर अब भी जो साकिब को एक तीसरा चांस है, अगर अब भी वो आपके साथ डिबेट करना चाहें तो आप उनको चांस देने के लिए तैयार हैं?
4: मोस्ट वेलकम। ये कोई हमारा पर्सनल काम नहीं है, ये एक एनजीओ का और ये एक कम्युनिटी की अमानत है जिसमें हम दोनों जवाब दे हैं, और हम दोनों को अपनी बात कहनी चाहिए। अकेले अकेले बात कहने का आई डोंट थिंक सो कि वो इंसाफ रहता है, तो हम तो मोस्ट वेलकम कम्युनिटी को कहेंगे वो आके बात करें हमारे साथ।
1: मैं भी इसी चीज को कहूंगी कि मेरा हमेशा से ये रहा है कि वो अपनी उनकी अपनी कोई, क्योंकि हमेशा कहते हैं कि दोनों साइड की आपको सुननी चाहिए, मेरा खुला उनको इस चीज के लिए दावत है, वो आए हमारे साथ बैठें, डिबेट करें, हमारी जो पेपर्स हैं वहां पे हमें बताएं कि जी ये पेपर्स गलत नहीं थे, मैंने ये पेपर्स भेजे, मुझे ये तब से पता था या नहीं पता था, वो हमें बताएं कि उन्होंने किस फोरम पे हमें कब इतला दी थी, और उनके पास भी जारी बात है इस चीज का सबूत होगा अगर उन्होंने किया होगा तो मेरा उनसे खुली इस चीज के लिए, क्योंकि मुझे जहां तक है कि मेरा अपना पेपर वर्क एज अ चेयरपर्सन बिल्कुल मुकम्मल है, मैंने कब उनको ईमेल्स भेजी, कब मैंने उनको रिक्वेस्ट की, कब मैंने उनको पर्सनल मैसेज किए, कब मैंने सवाल उठाए, कब उनके कैसे जवाब आए। मेरे ख्याल में इस चीज में कोई भी नहीं है कि वो 1.2 मिलियन पुलिची एनमिल से हमारे पास है, बैंक के बंद होने का हमारे पास है। मैंने बैंक को पिछले दिनों मैसेज लिखा कि मुझे बिल्कुल ताजा स्टेटस चाहिए कि हमारे पास कितने पैसे हैं, और बैंक ने वही लिखा 1.2 मिलियन और 1700 समथिंग, इवन ओरे भी लिखे। वो मैंने इसलिए लिया कि मेरे पास एक नया स्टेटस हो, ताकि अगर मुझे कल को किसी को दिखाना पड़े तो मुझे पता हो कि मैंने बैंक को मेल करके ये किया है। आप ये देख सकते हैं कि मैंने किस किस जगह पे किस किस बैंक में अप्लाई किया, उनके रिप्लाइज, उनकी चीजें, साकिब तस्नीम के कब मेरे साथ आए, कब कब मैंने साइन करवाए, किस चीज के लिए करवाए। इनका दोस्त इवन जो कि हमारी फोइनिंग में क्या नाम है एचएच में साकिब तस्नीम, मेरी पहली मीटिंग एक सिर्फ मीटिंग हुई थी, उसके बाद साकिब तस्नीम ने रिजाइन कर दिया था। उसमें साकिब तस्नीम, मैंने आपको बताया, तीन नाम लेके आए थे, एक अपने दोस्त का, एक अपने बेटे का, एक एचएच की वो क्या नाम है जो कि अब इनकी है यंगस्टर का, और एक एक्टिव मेंबर का, चार लोगों का। बेटे का उन्होंने निकाल लिया क्योंकि मेरा उस पे ये था कि आपके फैमिली के बहुत लोग हो चुके हैं एचएच में, और ये एक जो हेल्थी होती है ना ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए अच्छा नहीं होता है। उन्होंने वो ये बाकी तीन नाम थे इनके दोस्त का, एक यंगस्टर का जो कि अब इनकी यंगस्टर टीम में है, और एक क्या नाम है एक्टिव मेंबर का जो कि हमारी एक्टिव थी, और इनमें से इनके दोस्त को सिलेक्ट किया गया मेजॉरिटी के वोट्स के साथ। और इनके दोस्त ने जब छोड़ा है मेरी क्या नाम है फोइनिंग, बहुत अच्छे भाई हैं, उन्होंने एचएच के लिए बहुत काम किया है। उन्होंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम की किल्लत की वजह से सॉरी बहना मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके, फाइन भाई। और उन्होंने कहा एचएच को कभी भी मदद की जरूरत पड़ी तो मैं करूंगा। लेकिन अब आप ये उनकी सितम जरीफी देखें कि आज वही लोग उनके क्या नाम है सीसी में बैठे हुए हैं जो उन्होंने नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। उसके अलावा आप ये देखें कि हमारे ही प्रोजेक्ट्स वो लोग कर रहे हैं, मतलब कम ऑन। आपने ये तो फिर ईगो को, अगर आप एचएच को बचाना चाहते तो यही ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी चल सकती थी। इवन जिस दिन साकिब तस्नीम ने रिजाइन दिया है, उस दिन हम एक बहुत बड़ी मीटिंग में बैठे हुए थे एक्टिव मेंबर्स की, और वहां पे मैंने कहा था साकिब भाई, तब भाई होते थे साकिब भाई, क्योंकि उन्होंने अपनी रिस्पेक्ट खुद लूज कर दी। मैंने कहा आप आए, आप बैठ के हमारे साथ बात करें, आप जैसे कहेंगे हम इसको इकट्ठे लेके चलेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम है मेरे प्रेसिडेंटशिप, क्योंकि मैं तो बनना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि ये चीज अच्छे तरीके से हो, लेकिन उनको था कि वो जैसे एक बंदा अकड़ में नहीं रिजाइन देता है, या हो सकता है कि उनको वो सारी डिटेल्स पता हो कि पुलिची अनमिल हो चुकी है, बैंक अकाउंट का मसला हो रहा है। बैंक अकाउंट तब बंद हो चुका था जब उन्होंने रिजाइन दिया।
5: ये दुख ही हमें इस बात का कि उन्होंने बैंक अकाउंट बंद होने के बाद क्यों,
1: तीन दिन बाद उनका रिजाइन।
0: अच्छा चले, ऐसा है कि अभी हमारे साथ अंकल मुनीर मियां मुनीर साहब भी शामिल हैं, मगर मुझे कॉल स्विच करनी पड़ेगी, तो हो सकता है थोड़ी सी आवाज उतनी क्लियर ना हो जितनी मेरी आपको आ रही है। वो कमेंट करना चाह रहे हैं इसके ऊपर, तो फिर वो आपसे शायद कोई सवाल भी पूछें। तो जी अंकल, अभी आप ऑनलाइन है।
6: जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम अली, आपको, अली को और नायला बेटी और सबा को।
1: वालेकुम अस्सलाम।
6: मैं पिछले हफ्ते से ये सुन रहा हूँ, और सबसे पहले नायला और सबा, सच्ची बात यह है कि मैं इसका गवाह हूँ कि आप लोगों ने मिलकर एक बड़े अच्छे, बहुत बड़े काज के लिए बड़ी एफर्ट की। आपने अपनी फैमिलीज को, अपने बच्चों को साइड पर करके, मैं भी आपको पता थोड़ा बहुत हिस्सा डालता रहा हूँ आपके एचएच में, और आप, मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो आप अब तक आप लोग करते रहे। अब मसला ये है कि ये सारी चीजें जिस तरह निकली हैं, मुझे भी बहुत सारे लोगों ने पिछले हफ्ते से रब्ता किया। पिछले दिनों मेरे ही उधर वर्कशॉप में हमको 20-22 लोग बैठे थे, तो आपके इस हवाले से काफी तफसील से ख्वाजा आसफ साहब ने भी कुछ बातें बताई थी। अभी मैं बात लंबी नहीं करना चाहता, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इसलिए कि ऐसे काजज जो है उनको हमने कंटिन्यू रखना है, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ अली इन बच्चियों को, इसमें मेरे फैमिली मेंबर भी शामिल हैं, इनको पता है, मेरी छोटी बहन इनके साथ है, चाचा साहब, इन्होंने इतना वक्त दिया है और एक अच्छे काज के लिए इन्होंने इतना यानी कि एफर्ट करके अपने उन जो नीडी लोग हैं पाकिस्तान के अंदर और दुनिया में, उनके लिए ये लोग कुछ करना चाहते थे। अनफॉर्चुनेट गलत सोच की वजह से, गलत एटीट्यूड की वजह से, और गलत यहाँ के कानून और कायदे को ना समझ के ये कुछ चीजें जो है वो नुकसान हुआ है, और आगे भी हो सकता है। कम से कम ऐसी चीजें अगर कंटिन्यू नहीं रहेगी तो हमारे बहन भाइयों का बहुत नुकसान होगा। अब सबा और नायला, बात यह है कि मैं आपको ये बताऊं और ये सुनने वाले सुनेंगे कि मेरा भी तलक यानी कि इस तरह है, साकब तस्लीम को मैंने देखा, जो भी कोई अच्छा काम करना चाहे, राजा गफूर हो, मैं हूँ, पाकिस्तान सोसाइटी हो, हमने हमेशा पीछे खड़े होकर सपोर्ट करने की कोशिश की है। हमें बहुत खामियां हो सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ ये जरूर कहता चाहूंगा, क्योंकि ये बातें अभी आपने की हैं, मैं आपकी बात की तायद करते हुए ये कहता हूँ कि जब से मैंने आपको पता कि आपके साकब तस्लीम पहले ये पीटीआई में आए थे, आज से कोई 8-9 साल पहले, वहां जब ये थे और वो साल डेढ़ जो है वो यानी कि मेरे ही ऑफिस में, आप मेरे ख्याल में शायद आपको पता हो, थोड़ी बहुत ही चीजें ऐसे रही कि वहां उठते बैठते थे हम मीटिंग्स में, वहां इस आदमी का इको जो है, इसका एटीट्यूड जो है वो इस तरह था कि वो एक, और मैं नहीं बात करना चाहता आपको लंबी चौड़ी किसी सियासी पार्टी में, का इस काज के ऊपर ही रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस इंसान ने वहां पर ही अपने सोच अपना तरीकेकार से बहुत सारी चीजों को कम से कम यानी कि जिनका लिंक पाकिस्तान से था, मुराद सईद आया वो बेचारा बड़ा, या मैं क्या कहूँ कि बड़ा खराब होकर गया और हमारी तरफ देखता रहा, लेकिन हम मजबूर थे जैसे आप मजबूर रही हैं इनके आगे। अब बेटे बात यह है जो मैंने आपसे करनी है, मैं आपको वैसे भी फोन करके करना चाहता था, थोड़ा सा रहा हूँ अपने सेहत की वजह से मसरूफ रहा हूँ इन दिनों। अब बात यह है कि मैं आपको ये अलग कहता हूँ, किस तरह की सपोर्ट आपको चाहिए। मैं टैक्सेशन का सिस्टम जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ चीजें थोड़ी सी अपने जरूरत के मुताबिक भी जानता हूँ, जिस तरह की सपोर्ट आपको चाहिए मेरी जाती हैसियत में, ये अदारा आपके पर आपकी आवाज आ रही है और पाकिस्तान सोसाइटी की तरफ से जिस तरह की सपोर्ट भी आपको चाहिए, जो भी आपके यानी कि हम मदद कर सकते हैं इस अच्छे काज को कंटिन्यू रखने के लिए और आप लोगों की हौसला अफजाई के लिए और इस काम को आगे, हमने देखे ये काम पता नहीं कहाँ से चलता आ रहा, आज अब्दुल साद एदी इस दुनिया में नहीं है लेकिन वो एक अदारा चलता आ रहा है, हमने हम देखते थे, मैं भी देखता, ये अली भी मेरे ख्याल में उसमें हम देखते थे कि एचएचए एक बहुत अच्छी तंजीम बन गई है। मैंने सभा लोगों से, आप गवाह हैं इस चीज की, मैंने लोगों को, वो फैमिली आप जानती हैं ब्रॉनबी वाली, मैंने उन लोगों से पैसे दे देकर, मैं आप अमाउंट कहने का बताने का नहीं हूँ, आदि नहीं हूँ, मैंने लोगों से पैसे दे देकर आपके ये साकब तस्लीम भाई इनके हाथों दिए और वो सारा, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ पिछले हफ्ते से कि इतनी बड़ी रकम जो है, एक तो वो शायद जाया हो जाए, हम कोशिश करेंगे जाया ना हो, और फिर ऐसे काम करने वाले लोग और उसमें ये बच्चियां जिसमें हम इतने खुश थे कि इतनी बड़ी तादाद में आप बच्चियां अपने, जैसे मैंने पहले कहा, अपने घर को अपने बच्चों को छोड़कर तो ये इस काज में काम कर रही थी, आज आप भी इतनी दिस आ रहे, बल्कि आप हर कानूनी नक्ते नजर से यानी कि ये बद अखलाकी है साकब तस्लीम की कि वो खुद फेस नहीं कर रहे चीजों को, उन्होंने ये चीज जो है किसी टेक्निकल तरीके से आगे फेंक दी है कि जो खसमा नु खाओ जो मर्जी होए मैं सेफ हो जाऊं और अपनी अपनी दूसरे नाम पर शुरू कर दी है। मैं बस यही कहना चाहता था अली, एक्चुअली मुझे ये बात का एहसास इसलिए हुआ, मैं भी एक छोटा मोटा सोशल वर्कर हूँ, हमने भी अमानते जो है यहाँ चाहे कश्मीर जाकर दी या और लोगों का जिस तरह भी हम हाथ बढ़ाते हैं, मैं अपील करता हूं अपने तमाम बहन भाइयों से इस शहर के अंदर, इस मुल्क के अंदर जो भी हमें सुन रहा, कि हमें ऐसे अदारों को एक तो सोच कर चलना है, देख कर चलना है, और ऐसी बच्चियां जो मैं सुन रहा हूं और मैं पहले भी जानता था, मैं इनके दरमियान रहा हूं, इनको पता दोनों को जितना भी है, क्योंकि ये हमारी बेटियां, मैं दोनों के वालिदैन को जानता हूँ, अल्लाह ताला जो यानी कि सबा के वालिद इस दुनिया में नहीं है, नायला की वालिदा इस दुनिया में नहीं, मैं इनसे पर्सनली कुछ चीजें भी जानता हूँ, अल्लाह ताला इन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, इन्हें हिम्मत दे, और मेरी वीडियो हम आपके साथ है, ये मुनीर
7: अंकल आपकी इस बात में ना हमारा हमारा जो मौकफ है और वो जो आपकी इस बात ने जो सपोर्ट आपने हमें की ना ये कभी नहीं भुलाई जाएगी, क्योंकि जिस टफ टाइम में हम अकेली खड़ी हैं और हम जो कर रही हैं और जिसके लिए कर रही हैं वो भी आप जानते हैं, इसमें कोई पर्सनल इशू नहीं है। इसमें एचएच जो हमारी तंजीम 5 साल जिस पौधे को हम पानी पिलाती रही, और पहली वो लेडीज थी जो आगे आई और इस बंदे का हमने इमेज बनाया और वाकई इस बात सच है, ब्लाइंडली ट्रस्ट किया, और ये ऑर्गेनाइजेशन अब ऐसी जगह पे पहुंच चुकी थी कि मतलब सोचा भी नहीं जा सकता था। और हमने कोशिश भी की साल कि किसी तरीके इसको हम बचाएं, और अभी भी लगे हुए हैं। हमारा ये कम्युनिटी से जाहिर है हम वो जवाब दे है नहीं, वल्ला आलम अल्लाह को जवाब देगा। हम जवाब दे हैं, जितनी चीज की हम जवाब दें हम उतना जवाब जरूर देंगे और आपको अपडेट भी करते रहेंगे
6: इंशाल्लाह। बस मैं भी यहाँ बात को खत्म करना चाहता हूँ कि मैं इंशाल्लाह विद इन डे टू आपसे रابطे में हूँ, अगर खुद करूंगा, और जो जिधर भी हमने टैक्सेशन का मामला हो, तंजीमी मामला, मैं कुछ समझता हूँ तालिब इल्म हूँ, लेकिन जो कुछ भी मिलकर हम कर सकते हैं अल्लाह ताला के फजल करम से हम आपके साथ हैं। मुनीर अकेला नहीं, और भी लोग हैं, हमने ये आपस में सलाह की है, हम आपको सपोर्ट करेंगे। ये सारा निजाम जो है जिसमें ये अल्लाह ताला के दीन की खिदमत है, पाकिस्तान की खिदमत है, और उन लोगों की खिदमत है जो जो इसके जरूरतमंद है, ये सिलसिला हमने जारी रखना। अल्लाह ताला आपको खुश रखे।
7: बहुत शुक्रिया।
3: सबा नायला, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये आप सबका एक नोबल काज है, इस नोबल काज के लिए देखें, इससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा, कम्युनिटी का नुकसान होगा। अदारों में जब बात जाती है तो सब जो हमारी पर्सनैलिटी है, सबकी पर्सनैलिटी डैमेज होगी, खासकर एज ए फॉरनर जो हमारी पर्सनैलिटी डैमेज होगी। मैंने साकिब साहब को फोन भी किया है, साकिब साहब को मैसेज भेजा है, उन्हें कहा आप अगले हफ्ते आना चाहते हैं तो आपके लिए हमारा टाइम हाजिर है। साकिब एक बाज़ार तो जो नज़र हमें आते हैं वो एक जेंटलमैन है, डेफिनेट वो इसको फेस करेंगे, पढ़े लिखे हैं। आगे भी सभा मैंने आपको कहा है कि मैंने आपको अगले हफ्ते की हम दावत देते हैं, और ऑन एयर जो है वो साकिब को भी दे रहे हैं, मैंने साकिब को लिख के भी मैसेज कर दिया है, उनको मैसेज जो है वो डिलीवर भी हो गया है, तो अगले लिए अगले इतवार को आप तैयार हैं?
7: जी बिल्कुल। हम इस कॉज के लिए अपना टाइम, अपना हर चीज देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये एक अमानत है और इस चीज को हमने सही लेके आगे चलना है। अगर हम इन रिश्तों में और रिलेशनशिप में फंस के ये सारी चीजें प्रेशराइज होके खत्म कर देंगे तो क्या हमारा इमेज और क्या जाएगा, जैसे कि आपने खुद कहा फॉरनर्स यहाँ पे ऐसे हैं।
3: चलिए अली अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करें।
0: जी बिल्कुल, एक मिनट है, बल्कि हम ये भी कर सकते हैं अंकल कि अगर साकिब साहब को ये लगता है कि वो अकेले नहीं आना चाहते, अपने पूरे पैनल डॉक्यूमेंटेशन के साथ आना चाहते हैं, तो हम जिस तरह आज ग्रुप कॉल कर रहे हैं, हम वीडियो कॉन्फ्रेंस या अगर स्टूडियोज में आके वो करना चाहें, ताकि ये लोगों के पैसे हैं, इस मामले को बेहतर तरीके से हल किया जाए, इसमें किसी की कोई दिल आजारी या किसी की कोई वो आप कह लें कि वो हम किसी की शख्सियत को सबोताज नहीं कर रहे, कहने का मकसद सिर्फ ये है कि किसी के आने जाने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इदारे जो है वो चलते रहना चाहिए, और खास तौर पे इस नोबल कॉज में। तो हम एक दफा फिर आपका नायला भाभी और सबा आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आज आपने फिर टाइम निकाला, और अंकल मनीर आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाला और इस नोबल कॉज में जो भी डिस्कशन है इसको सॉल्व करने के लिए अपनी जो है वो ऑफर सर्विस ऑफर की है। तो इंशाल्लाह हम लुक फॉरवर्ड करते हैं कि इसको हम बेहतर तरीके से हल करें। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का,
7: बहुत शुक्रिया आपका अली भाई, मियां मनीर साहब,
0: बहुत शुक्रिया,
3: सामाइन आपके साथ थे आपके अपने होस्ट अली जावेद और सबा नवाज थी हेल्पिंग कम्युनिटी की जो नई सदर हैं, और नायला वसीम थी जो कि नायब सदर हैं, मियां मनीर साहब थे जो कि एक सोशल वर्कर हैं। सामाइन हमने कोशिश की कि जो भी मालूमात थी वो हमने आपके साथ शेयर की, अब फैसला आपने करना है, हम कोई पुलिसमैन नहीं है, हमारा काम है इन्फॉर्मेशन देना अपने सामाइन को। साकिब को मैंने पहले भी कहा है कि मैंने टेलीफोन भी किया है, मैंने बिलाल के थ्रू मैसेज भी जो है पहुंचाया, कोशिश की, बिलाल ने मुझे कहा कि मेरा रابطہ नहीं हो सका, मैंने खुद भी साकिब साहब को मैसेज लिखा है। साकिब साहब का एक नाम है एलपी कम्युनिटी में, ये जो 1.2 मिलियन डेनिश क्रोन पड़े हुए हैं ये लोगों की इमानत है, उन हकदारों तक उस इमानत को जो है वो पहुंचना चाहिए। बाकी जब पैसे जो हेल्पिंग इम्यूनिटी के थे, जिस तरह बेदर्दी से 500 करोन जो 500 रुपये जो है एक पैकेट पे अखराजात, इस तरह के अखराजात, किसी के पैसे को जो है वो बड़े एहतियात से खर्च करना चाहिए, इमानत जो होती है उस पर जो अपने पैसे से भी ज़्यादा उस पर जो एहतियात करनी चाहिए। साकिब आप एक पढ़े लिखे हैं, आपका जहन यहाँ डिवेल्प हुआ है, आपका एक नाम है, आप अपनी ईगो को छोड़ें, आपने अच्छी आपकी रेपुटेशन है, और आप इस मसले को जितना जल्दी हो सकता है इसको हल करने की कोशिश करेंगे। آپ ہمارے پاس آئیں, اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آئیں, اپنی پوری ٹیم کے ساتھ شامل ہوں. ہمیں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے, ہمارا کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ ہم کوئی پارٹی ہیں یا کوئی فریق ہے, ہم دونوں کے لیے برابر ہیں. یہ ادارہ آپ کی آواز جو ہے, آپ سب کی آواز ہے, ہم آپ کے لیے برابر ہیں. ثاقب, آپ یہاں ہمارے پاس آتے رہے, آپ نے ہمارے ساتھ بڑا کام کیا ہے, ہمارے دل ہمارے لیے, آپ کے دل کے لیے ہماری بڑی عزت ہے, آپ کے لیے ہماری پوری ٹیم کی عزت ہے. لیکن یہ شاکیبل جب خبریں ملتی ہیں تو اچھا نہیں لگتا. اور آپ نے جو ہے, میں دوسرے لفظوں میں کہوں گا کہ کسی کو بھی کسی سسٹم میں جو ہے نا استعمال نہیں کرنا چاہیے. یہ کسی کا پیسہ ہے, اگر آپ کا ذاتی پیسہ ہے تو آپ کا رائٹ بنتا تھا. یہ جو پولیس کا کیس یا دوسرا تیسرا, میں نہیں سمجھتا کہ اداروں میں شکایتیں کرنا, اس طرح کی باتیں کرنا یا کسی چیز کو انوالو کرنا, یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے. یہاں تو آپ کو پتا ہے کہ یہاں قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا, جو بھی فیصلہ ہوگا وہ قانون کے مطابق ہوگا. آپ لوگ ساتھی تھے, صبا آپ کی ساتھی تھی, نائلہ آپ کی ساتھی تھی, وہ آپ کو بھائی کر کے جو ہے وہ بلا رہی ہیں, تو آپ لوگ اچھے طریقے سے بیٹھ کر ان معاملات کو حل کر سکتے تھے. اب جب آپ نے یہ تنظیم چھوڑ دی ہے تو آپ کا چاہیے تھا کہ آپ پیسہ بھی اسی تنظیم کو دیتے, اور آپ نے پولیس کے چکروں میں ساری چیزوں کو ڈال دیا. اب ریویزر کے پاس جو فیسیں ہوں گی, جو پیسے کو اخراجات ہوں گے, وہ بھی آپ کے ذمے یہ ساری چیزیں لگیں گی کہ آپ کی وجہ سے ہوا یا تنظیم کی وجہ سے ہوا. تو ثاقب, آپ پڑھے لکھے لو, آپ اگلی دفعہ آپ ہمارے مہمان ہیں, آپ کو ہم دوبارہ دعوت دے رہے ہیں کہ آپ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ہمارے مہمان بنے. سمائی نے ہمارا کام تھا انفارمیشن دینا, جہاں تک ہم انفارمیشن دے سکتے ہیں, ہم کوئی پولیس مین نہیں ہے, ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. اگلے مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.
8: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.
9: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.